0: बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मल्लिका बनर्जी का गायन, राग है ललित।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल

0: शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The notification comes after concerns were raised over possible

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी के विचारों पर आधारित चिंतन।
1: आज हम बात करेंगे उस महान लेखक, विचारक और राष्ट्रभक्त की, जिनकी कलम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारत के इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी लेखनी तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नयहाटी में हुआ था। उनके पिता यादव चंद्र चटर्जी एक सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही बंकिम चंद्र पढ़ाई में बहुत तेज थे और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी।

0: कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वे भारत के पहले ग्रेजुएट्स में शामिल थे। बाद में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान सरकारी नौकरी नहीं बल्कि उनकी लेखनी बनी। सरकारी नौकरी करते हुए भी बंकिम चंद्र का मन साहित्य में ही बसता था। उन्होंने महसूस किया कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना बहुत जरूरी है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और लोगों के मन में डर और निराशा थी। बंकिम चंद्र ने तय किया कि वे अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाएंगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जैसे दुर्गेश नंदिनी, कृष्णकांत का वसियतनामा, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध बना उनका उपन्यास आनंदमठ। आनंदमठ और क्रांति की शुरुआत। 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि ये एक क्रांति थी। इस उपन्यास में उन्होंने सन्यासियों के एक समूह की कहानी लिखी जो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए संघर्ष करते हैं। इस कहानी ने पूरे भारत में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी और इसी उपन्यास में जन्म हुआ उस गीत का जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। जी हां श्रोताओं, वो महान गीत था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र ने इस गीत को मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान के रूप में लिखा था। वंदे मातरम का अर्थ है मां मैं तुम्हें नमन करता हूं। यह गीत जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बन गया। जब भी स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन करते, जेल जाते या अंग्रेजों का सामना करते, वे वंदे मातरम गाते थे। ये गीत लोगों में साहस, जोश और देशभक्ति भर देता था। इस गीत और उनकी लेखनी से अंग्रेज सरकार काफी डर गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तलवार से ज्यादा खतरनाक है जागरूक जनता। वंदे मातरम को कई जगहों पर गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन देशभक्तों ने इसे गाना बंद नहीं किया। ये गीत आजादी की पहचान बन चुका था। बंकिम चंद्र सिर्फ लेखक ही नहीं थे बल्कि वे एक महान विचारक और राष्ट्रभक्त भी थे। वे मानते थे कि देश की ताकत उनके लोगों में होती है। अगर लोग जाग जाएं, तो कोई भी ताकत देश को गुलाम नहीं बना सकती। उनकी रचनाओं में तीन बातें हमेशा दिखाई देती हैं, देशभक्ति, संस्कृति और परंपरा, और आत्मसम्मान। उन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरविंद घोष और अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र की रचनाओं से प्रेरित थे। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। यह गीत सुनते ही लोगों के दिलों में आजादी की ज्वाला जल उठती थी, और आज भी जब भी ये गीत बजता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कलम ने जो आग जलाई थी, वो 1947 में भारत की आजादी बनकर सामने आई। जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो उसमें उनकी लेखनी का भी एक बड़ा योगदान है। बंकिम चंद्र चटर्जी हमें ये सिखाते हैं कि एक कलम भी देश बदल सकती है। उन्होंने हमें सिखाया, देशभक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, विचारों में भी होती है। आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर कहें वंदे मातरम।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के विचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 6:45 होने को है। आइए सुनते हैं रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 49।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्री राम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ

अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: विजयस्य एका अबाधिता सिद्धि ही वर्तते। मोदिना प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत् ते द्वियंत्र सर्वकारस्य नेतृत्वे संचालितानां अभ्युदय सुशासन नीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति संपूर्ण कोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्ररूप्यकाणाम् अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रभावी भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखंड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्याय प्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमामतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिकादेशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदि। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। ये नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी भी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वे केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में

0: रत्ना महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। एटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टकनपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The notification comes after concerns were raised over possible charges on UPI payments following the passage of Taxation and Other Laws Amendment Act in Parliament that proposed changes to the legal framework governing payment systems. However, the notification states that transactions up to 2,000 rupees will remain charge-free, leaving scope for off-levying charges on transactions above this threshold limit. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has described the mechanism developed by the Supreme Court and High Courts to address complaints against judges as robust, very responsive and timely. Delivering keynote address at 6th Ram Jethmalani Memorial Lecture in New Delhi, he stressed the need for continuous reform and greater transparency in the judiciary.
3: that the mechanism which Supreme Court and the High Courts have developed is one of the robust, very responsive and very timely also. Given a choice, a judicial officer when passes an interlocutory order or if he adjourns a case or when he passes a final decree, at every stage he will invite a complaint. I will leave it to public domain and it's a very seriously debatable issue that should those complaints, every complaint be brought to on a platform, on a website, or you need to have an internal very strong mechanism which must with complete objectivity, dispassionate approach and in a very responsible manner must deal with it.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 5th edition of Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Thursday. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions, 12 state government pavilions and a dedicated startup pavilion. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said the people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government. This will not only propel the state to new heights of progress but also strengthen the government's resolve to bring prosperity to the lives of every individual, he added. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that Vietnam is a key partner in India's Act East policy in Vision Mahasagar and in its outlook of the Indo-Pacific. The minister said this while co-chairing the 19th session of the India-Vietnam Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technological Cooperation in New Delhi. Dr. Jaishankar said that Vietnam is an important partner in the framework of its comprehensive strategic partnership with the ASEAN. US President Donald Trump has said Russia and Ukraine have agreed to stop attacking each other's energy targets without giving a start date, duration, or enforcement details. In a social media post, Trump said Ukraine had agreed not to hit Russian energy targets and Russia had agreed to do likewise. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR in connection with the death of Disha Salian, who was the manager of late actor Sushant Singh Rajput. Salian died on 8th June 2020 after falling from the 12th floor of a building. The FIR was registered following a Bombay High Court order. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match last night. Despite the early loss of Sanju Samson, Abhishek Sharma played a blistering innings of 82 off 32 balls supported by Ishan Kishan's 42 as India chased down target of 157 set by Afghanistan for the loss of 3 wickets in 13.4 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 20 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे सुखप्रीत कौर द्वारा शब्द का। आपके साथ संगत कर रहे हैं सितार पर खालिद मुस्तफा, सरोद पर दानिश असलम, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और तबले पर शिवित भारद्वाज।

सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे सुखप्रीत कौर द्वारा शबद। आपके साथ संगत कर रहे थे

सितार पर खालिद मुस्तफा, सरोद पर दानिश असलम, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और तबले पर शिवित भारद्वाज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हो चुका है 7:32 और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। सुबह की एक और खूबसूरत मुलाकात के साथ आपका स्वागत करती हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। और आज हम कुछ खास बात करेंगे, बहुत अच्छी सी बात करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही गीत भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए इस गीत को, क्योंकि ये है हमारे कार्यक्रम का आगाज। बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म हेलीकॉप्टर इला से।

जी हाँ दोस्तों, आज हम किसी इंसान की बात नहीं करेंगे, किसी जगह की बात भी नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो हमारे आसपास बिल्कुल चुपचाप रहती हैं। जी हाँ, चीज़ों की। आप भी सोच रहे होंगे कि अरे भाई, चीज़ों की भी कोई कहानी होती है क्या? तो मेरा जवाब है, होती है जनाब, बहुत सारी होती है। बस फर्क इतना है कि चीजें बोलती नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो वो हमें बहुत कुछ सुना जाती हैं। अब जरा अपने घर के बारे में ही सोचिए, वो पुरानी दीवार घड़ी जो शायद आज भी उसी जगह टंगी है जहां उसे सबसे पहली बार टांगा गया था, वो चाय का कप जिसका हैंडल थोड़ा सा टूटा है लेकिन आज भी आपके किचन में उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो पुराना फोटो फ्रेम जिसकी तस्वीर अब थोड़ी धुंधली हो चुकी है लेकिन आज भी वो आपके घर में महफूज है, वो अलमारी का एक कोना जहां सालों पुरानी चीजें रखी होती है, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आपके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चीज नहीं है जनाब, वो है एक कहानी जो उसके साथ, उस चीज के साथ जुड़ी हुई है।

जी हाँ, एक पुरानी घड़ी को देखिए, दूसरे इंसान के लिए वो सिर्फ एक घड़ी है जो आपके घर में है, आपके घर की दीवार पर टंगी है, लेकिन क्या आपके लिए वो मायने रखती है? क्या मायने रखती है? शायद हो सकता है वो किसी दादा दादी की निशानी हो, शायद पापा ने पहली नौकरी की कमाई से उसे खरीदा हो, या शायद शादी के वक्त किसी ने गिफ्ट की हो। घड़ी की कीमत दुकान पर कुछ और होती है दोस्तों, लेकिन यादों में उसकी कीमत अनमोल होती है, और यही तो कमाल है चीजों का। जी हाँ, समय के साथ चीजें पुरानी होती जाती हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें अक्सर और गहरी होती जाती हैं।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ चीजें हम फेंक नहीं पाते हैं? जी हाँ, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी फेंक नहीं पाते हैं। वो चाहे कपड़े पुराने हो गए हों, फिर भी संभाल कर उन्हें रखती हैं हमारी मम्मियाँ। पुरानी डायरी फिर भी अलमारी में है, स्कूल की कोई छोटी सी चीज आज भी किसी डिब्बे में रखी है आपके घर के किसी कोने में। पुराना ग्रीटिंग कार्ड जिसमें शायद अब तारीख भी मुश्किल से पढ़ी जाती हो, लेकिन हम उसे फेंकते नहीं हैं। एक जमाना हुआ करता था ग्रीटिंग कार्ड्स का जनाब, आज भी है, लेकिन एक था जब वक्त जब वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में होते थे। वही ग्रीटिंग कार्ड्स शायद कहीं आपके घर के अलमारी के किसी कोने में छुपे हुए रखे हैं, लेकिन हम उन्हें फेंकते नहीं है क्योंकि हम उस कागज को नहीं संभाल रहे होते हैं। दोस्त, हम संभाल रहे होते हैं उस वक्त को, जो उस वक्त हमने महसूस किया होता है उसे कागज पर कलम से उकेर कर उसमें अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी बातें हैं, अपने एहसास आते हैं, उन्हें कहते हैं ना कि सिक्योर

कर लेते हैं, उन्हें सजा देते हैं शब्दों के रूप में उस कार्ड के ऊपर। तो उस कार्ड को आप कैसे फेंकेंगे? नहीं, हिम्मत ही नहीं होती फेंकने की। और कहते हैं ना कि शायद इसीलिए कुछ चीज़ों पर धूल भी जम सकती है, लेकिन उनकी यादों पर नहीं, क्योंकि चीज़ें अगर बहुत वक्त तक आपके पास रहती हैं तो वह जाहिर सी बात है उन पर धूल भी लगेगी, लेकिन चीज़ों पर धूल लगी होती है, उन यादों पर नहीं।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। वक्त हो चुका है यहाँ पर ऑलमोस्ट 7:45 और बात यहाँ चल रही है गीतों के साथ कुछ पुरानी चीजों की पीछे छिपी कहानी के बारे में। अब आप जरा सोचिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसे बाकी लोग शायद बेकार समझें, लेकिन आप उसे कभी फेंकना नहीं चाहेंगे। किसी पुराने रेडियो की बात हो सकती है, वो किसी की दी हुई प्यार भरी चिट्ठी या शिकायत भरी चिट्ठी की बात हो सकती है, वो कोई प्यारा सा पुराना खिलौना हो सकता है, वो कोई पहली बहुत पहली ट्रॉफी हो सकती है वो जो आपको कभी मिली हो, कोई पुरानी तस्वीर भी हो सकती है दोस्त वो, या फिर रसोई का कोई ऐसा बर्तन जिसे देखकर आपको अपनी नानी या दादी का घर याद आ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं चीजों की और उनके पीछे कहानी जो होती है छिपी उसके बारे में। चीजों की कीमत नहीं पूछ रहे हैं दोस्त आज हम उनकी कहानी की बात कर रहे हैं।

जी हाँ, आप भी समझिए उस चीज के पीछे की कहानी जो आपके घर में आज भी मौजूद है। हालांकि उसका कोई काम नहीं है आपके घर में, लेकिन फिर भी आपके घर में मौजूद है। अब एक मजेदार बात बताऊं दोस्तों आपको। कई बार हमारे घर की चीजें हमारे परिवार की अनऑफिशियल हिस्ट्री होती है। जैसे कि एक पुरानी फोटो, एक तस्वीर में पूरा परिवार खड़ा है। तस्वीर छोटी सी है, लेकिन उसमें कितने सारे रिश्ते जो है ना वो समाये हुए हैं। किसी के चेहरे पर बचपना है, तो किसी के चेहरे पर जवानी है, और किसी की मुस्कान देखकर आज भी वही पुराना घर याद आ जाता है। एक तस्वीर और उसके पीछे पूरा एक दौर। इसलिए शायद तस्वीरें सिर्फ चेहरे को नहीं बताती, चेहरों को ही नहीं बचाती, वो समय को भी बचाती है, वो उन यादों को भी बचाती है जो उस वक्त आप सजोकर एक तस्वीर के रूप में उसे रख लेते हैं।

दोस्तों, चीजों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उनका रिश्ता सिर्फ यादों से नहीं होता, उनका रिश्ता हमारी भावनाओं से भी होता है। किसी की दी हुई किताब को पढ़ते हुए अचानक वही इंसान याद आ जाता है, किसी पुराने गाने की कैसेट या सीडी देखकर बचपन याद आ जाता है, किसी खास खुशबू वाले परफ्यूम से कोई पुराना कमरा याद आ जाता है, और कभी किसी पुराने कपड़े को हाथ लगाते ही हम कई साल पीछे पहुंच जाते हैं। यानी यादों को हमेशा तस्वीर की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी एक चीज ही काफी होती है उसे महसूस करने के लिए।

तो दोस्तों अब जब आप सुबह उठ गए हैं तो जरा एक नजर अपने घर में दौड़ाइए, देखिए कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा कहानी सुनाती है, और अगर वो चीज बोल पाती तो वो आपको क्या बताती। शायद वो कहती, प्लीज मुझे फेंकना मत मेरे अंदर तुम्हारा थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा बचपन रखा है। या शायद कोई पुरानी तस्वीर कहती, मुझे देखते ही मुस्कुरा देना क्योंकि मैं तुम्हारा वो समय याद दिलाती हूँ जब जिंदगी थोड़ी अलग थी।

जी हाँ, आप भी दोस्ती कर लीजिए उन सब चीजों से जो आपके घर में, आपकी अलमारी में, शायद किसी कोने में छिपे पड़ी है, आपकी प्यारी खूबसूरत छोटी मीठी खट्टी मीठी बहुत प्यारी प्यारी यादों के साथ।

ये कार्यक्रम, आज का टॉपिक, आज की जो बातें हैं, आज के जो गीत हैं, वो बेहद पसंद आ रहे होंगे। और आगे भी इसी तरीके से और कार्यक्रमों के साथ आपसे मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, और हमें यूं ही सुनते रहिए। जल्दी मिलूंगी आपकी मैं ये दोस्त अर्चना गुप्ता इसी वादे के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय दिस।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है।

0: समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: 2 दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8 अरब 66 करोड़ से घटकर वर्ष 2025-26 में $7 अरब 95 करोड़ रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
6: Given a choice, a judicial officer,
7: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने

न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिनभर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।
एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉर्ट

0: गन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. More from our correspondent.
4: According to the gazette notification issued by the Finance Ministry, no bank or system provider can impose any direct or indirect charge on a person making or receiving payments through RuPay-powered debit cards and UPI. The notification specifically categorized RuPay-powered debit cards and UPI transactions of up to 2,000 rupees as electronic modes of payment. The Ministry has notified the changes under the Payment and Settlement System Act to clarify the rules regarding charges on UPI transactions. Last month, the government clarified that consumers will not be charged for making payments through the UPI, while any future merchant discount rate will be limited to select transactions.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक की अदायगी बैंक चार्जेस से मुस्तस्ना रहेगी। आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। भारत और कनाडा ने मुजवजा तजारती मुआहदे पर अगले दौर की बातचीत शुरू की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जजों के खिलाफ शिकायत से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का तैयार करदा निजाम मजबूत और इंतहाई मुअसर है। सीबीआई ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा टी20 बैन अलाक्वामी मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने ऐलान किया है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर कोई चार्जेज आयद नहीं कर सकते। इसमें रुपए डेबिट कार्ड्स के जरिए 2000 रुपए तक की अदायगी भी शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजारत खजाना की तरफ से जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर इन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से अदायगी करने या रकम वसूल करने पर किसी भी फर्द पर कोई बराह रास्त या बिलवास्ता चार्ज आयद नहीं कर सकता। वजारत ने अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक कानून के तहत ये तब्दीलियां मुतारिफ कराई हैं ताकि यूपीआई लेन देन पर आए चार्जेस के ताल्लुक से जवाबित को वाजे किया जा सके। इस नोटिफिकेशन में खासतौर पर रुपए डेबिट कार्ड्स और 2000 रुपए तक की यूपीआई लेन देन को अदायगी के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के जुमरे में रखा गया है। गुज़श्ता माह हुकूमत ने वाजे किया था कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी पर कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा और मुस्तकबिल में कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट

0: MDR एक मखसूस हद से ज्यादा मुंतखब अदायगियों तक महदूद रहेगा। वजारत खजाना ने यह भी बताया कि तमाम फर्ज से फर्द के दरमियान होने वाली UPI अदायगी मुफ्त रहेंगी। ये वजाहत अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक कानून 2007 में की गई हालिया तरमीम के बाद UPI सार्फिन पर चार्जेज आयद किए जाने के इम्कान के ताल्लुक से तशवीश के दौरान सामने आई है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
1: बावकार आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम WCEF 2026 गुजरात के गांधीनगर में वाक़ महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जनूबी एशिया में पहली बार मुनक़िद की जा रही है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल मुश्तरक तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी लोगों और खुशहाली के लिए मुंतकली के मौजू के तहत मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में 65 से ज्यादा मुल्कों के 200 से ज्यादा शराकतदार हिस्सा लेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार है। ये जनूबी एशिया में पायदारी इक्तिसादी तब्दीली के फरोग के जानिब एक अहम संगे मेल है। फोरम का मकसद दोबारा इस्तेमाल, मरम्मत और रिसाइकिलिंग पर जोर देते हुए आलमी सर्कुलर इकोनॉमी को फ़रोग देना है, ताकि अशिया और साजो सामान को दोबारा काबिल कदर माशी वसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दो रोज़ा फोरम के दौरान 4 मुकम्मल इजलास और 16 मौजूआती इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। इनमें मस्नूई जहानत, AI, माहौलियात के लिए साजगार तवनाई, पायदार मालियात, गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे अहम मौजूद शामिल होंगे। इसके अलावा 125 से ज्यादा नुमाइश कारों पर मुश्तमिल एक बैन अलावामी एक्सपो भी मुनक़िद होगी, जिसमें सर्कुलर बिजनेस मॉडल के लिए जदीद और अमली हल पेश किए जाएंगे। इस आलमी प्रोग्राम का मुश्तरका इनेकाद माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत, आलूदगी की रोकथाम की मरकजी बोर्ड, फिनलैंड के इनोवेशन फंड सितारा और हुकूमत गुजरात कर रहे हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर मुमलकत कीर्ति वर्धन सिंह और फिनलैंड के माहौलियात के वजीर सारी मुल्ताला कल इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में मुनक़िद होने वाले 80 रफ्तार बढ़ाने वाले इजलास होंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में मुजवजा जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे के लिए चौथे दौर के मुजाकरात का आगाज कर दिया है। दोनों ममालिक का मकसद 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। 5 रोजा मुजाकरात जो कल शुरू हुए 18 सितंबर तक जारी रहेंगे। इनमें अशिया और खिदमात की तजारत और तकनीकी तजारती रुकावटों समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत में 8.22% की कमी हुई है और ये 2025-26 में 7.95 अरब अमरीकी डॉलर रही, जबकि 2024-25 में ये 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी। कनाडा को भारत की अहम बरामदात में अद्वियात, लोहा और स्टील, समुद्री गजाई अशिया, सूती मलबूसात, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स शामिल हैं, जबकि भारत कनाडा से बुनियादी तौर पर दालें, जवाहरात और बेशकीमत पत्थर, कोयला, खाद, कागज़ और खाम तेल दरामद करता है। कनाडा को भारत की अहम खिदमात शोबे की बरामदात में टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज और दीगर कारोबारी खिदमात शामिल हैं। कनाडा में 4,25,000 से ज्यादा भारतीय तलबा और भारत निजाद अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है। CEPA मुजाकरात का तीसरा दौर जुलाई में कनाडा के शहर ओटावा में मुनक़िद हुआ था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजों के खिलाफ शिकायत से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की जानिब से तैयार किए गए निज़ाम को मजबूत, मौसर और बरवक्त करार दिया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा छठे राम जेठ मलानी यादगार लेक्चर देते हुए उन्होंने अदलिया में मुसलसल इस्लाहात और ज्यादा शफाफियत की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस्लाहात को मामूल का हिस्सा रहना चाहिए और कोई भी इदारा जुमूद का शिकार रहने पर फख्र नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदलिया ने खुद भी तनकीद की अहमियत को तस्लीम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस मौकफ को दोहराया कि इदारा तनकीद

ईद से ना तो गुरेज करता है और न ही उसे करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती निज़ाम के मुनसिफाना, बाखबर और तामीरी जायजे के लिए तनकीद एक दरख्शां आईनी जमहूरियत की जायज और ज़रूरी खसूसियत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई अदालत खुद को अवामी जांच पड़ताल से बालातर रख कर अवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। इसके बजाय उसे जाँच, सवालात और ज़रूरत पड़ने पर तनकीद के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। उन्होंने अवामी एतमाद और अवामी मंजूरी के दरमियान फ़र्क भी वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि हकीकी अवामी एतमाद उस वक्त कायम होता है जब मुकदमा हारने वाले अफराद भी ये यकीन बरकरार रखें कि अदालती अमल मुनसिफाना था। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक FIR दर्ज की है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। ये FIR बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज की गई है। इस FIR में कई अफराद के नाम शामिल हैं, जिनमें साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सिक्योरिटी अहलकार डीनू मौर्या, रोहन राय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अफसरान सचिन वैज और परमबीर सिंह शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा जुमेरात को नई दिल्ली के यशोभूमि सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम 600 से ज़्यादा नुमाइशकारों, 300 बैन अल-अक़वामी कंपनियों और 40 से ज़्यादा ममालिक के वफूद को यकजा करेगा। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरका तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरी मुकामी बलदियाती इदारों के इंतखाबात में BJP की कामयाबी के बाद राजस्थान के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी की कामयाबी झूठ की बाजगश्त पर सच की फतह का सबूत है। जनाब मोदी ने कहा कि राजस्थान के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो डबल इंजन हुकूमत के तहत अच्छी हुक्मरानी और तरक्की की पॉलिसियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारतीय कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI कौमी शाहराहों पर सफर करने वाले लोगों को तेज़तर और बेहतर इमदाद फराहम करने की खातिर अपनी मौजूदा नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करेगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बताया कि इसे मसनूई ज़हानत, बरवक्त लोकेशन ट्रेकिंग और हंगामी हालात में मदद फराहम करने से मुतालिक जदीद निज़ाम के इस्तेमाल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इससे कॉलर की लोकेशन का पता लगाने, अलग अलग जबानों में मौसूल होने वाली कॉल्स को समझने और किसी मुकाम पर फौरी मदद भेजने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के तवानाई की तनसीबात पर हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अगरचे सदर ट्रंप ने इसके आगाज की तारीख, मुद्दत और इस पर अमल दरामद से मुतालिक तफसील फराहम नहीं की, ये बात सदर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही है। क्रेमलिन ने रूस की ईंधन की पैदावार से मुतालिक तनसीबात पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप की यूक्रेन से अपील का खैर मकदम किया है। यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने सऊदी अरब पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। इस दौरान यमनी हुक्काम ने कहा है कि ग्रुप ने बुहरे अहमर के करीब मुल्क के मगरबी साहिल से मुत्तसिल मुकामात पर अपनी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी है। इस दौरान खलीजी अरब मुल्कों ने ईरान के साथ होने वाली तयशुदा बातचीत मुलतवी कर दी है। इससे खदशात बढ़ गए हैं कि मशरक वस्ता में जारी तनाज़ा मजीद फैल सकता है और आलमी सतह पर तेल की सप्लाई को खतरा लाहिक हो सकता है। हौसियों ने कहा है कि उन्होंने जनूबी सऊदी के खमीस मुशैत में एक फौजी फजाई अड्डे पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे। इनके मुताबिक हमलों में तैयारों के हैंगर्स, रडार सिस्टम, रनवेज और असलहा जखीरा करने वाले इलाकों को निशाना बनाया गया।
मर्दों के क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल्क्वामी मैच में अफगानिस्तान का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को फिलहाल सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इतवार को खेले गए पहले T20 बैन अल्क्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। अफगानिस्तान ने मुकर्रा 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए।

0: थे। भारत ने 13 ओवर्स 4 गेंदों में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया था। एशियाई ट्रैप चैंपियन सबीरा हारिस की क्यादत में 20 रुकनी भारतीय शूटिंग दस्ता आज से इटली के पोरपेटो में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन में हिस्सा लेगा। ये टूर्नामेंट इस माह की 19 तारीख को खत्म होगा। भारत की टीम 5 मेडल मुकाबलों में हिस्सा लेगी, जिनमें मर्द और ख्वातीन के ट्रैप और स्कीट मुकाबलों के अलावा मिक्स्ड टीम ट्रैक मुकाबला भी शामिल है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप लिखता है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इसी अखबार ने वजीर आजम के इंसानी पहलू पर मबनी किताब मोदी कथा के 17 सितंबर को इजरा से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर मुनाकिद होने वाली खसूसी प्रोग्राम में इस किताब का इजरा किया जाएगा। वजीर ख्वाजा डॉक्टर एस जय शंकर के ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के हवाले से इस बयान को कई अखबार ने अहमियत के साथ शाये किया है कि इस तकरीब ने साबित किया है कि एक इंतहाई मुनकसम दुनिया में भी इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है। ओमान के साहिल के करीब तिजारती बहरी जहाज MTL गाइया पर हमले के बाद 13 भारतीयों को बचाए जाने की खबर को भी अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर जगह दी है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। UPI के जरिए 2,000 रुपए तक की अदायगी बैंक चार्जेस से मुस्तस्ना रहेगी। आलमी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। भारत और कनाडा ने मुजवजा तिजारती मुआहदे पर अगले दौर की बातचीत शुरू की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जजों के खिलाफ शिकायत से निमटने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का तैयार करदा निजाम मजबूत और इंतहाई मुअसर है। CBI ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज की है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा T20 बैन अलाक्वामी मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 17 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे युगल गायन, भीमप्पा भजंतरी एवं एहसान द्वारा। राग रहेगा राग नट भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे भीम अप्पा भजंतारी और एहसान द्वारा राग नट भैरव में युगल गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 9:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, उसके जुड़ी समस्याओं के बारे में, और उसमें जो वर्तमान अनुसंधान है वो किस तरह से उपयोगी हो रहे हैं, हो सकते हैं, उनके बारे में। हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित वर्मा। आप भारत के प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर जेनेटिसिस्ट हैं, और पिछले करीब 20 वर्षों से अधिक का अनुभव इनका है इस क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार करने का। डॉक्टर अमित वर्मा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एक नई पद्धति है कैंसर के ट्रीटमेंट की। ये बहुत पुरानी नहीं, लगभग 10 से 15 साल पुरानी एक डेवलपमेंट है, और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं एम्स के टाइम से, जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स के अंदर कैंसर मेडिसिन में करी। और उसके बाद उसके अंदर हमने काफी कुछ रिसर्च करी कैंसर के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है जीनोमिक लेवल पे। उसके बाद हायर स्टडीज करने के लिए मैं MD एंडरसन कैंसर सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास, जो वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर सेंटर माना जाता है, वहाँ पे हम लोग और फर्दर रिसर्च करने के लिए गए, और हमने देखा कि कुछ ट्रीटमेंट संभव है अगर हम कैंसर को बहुत डीप में समझ पाए तो।
2: बहुत अच्छा। जब हम कैंसर की बात करते हैं, प्रायः हम सब लोगों ने अपने अध्ययन के दौरान सेल के बारे में सुना कि यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारे शरीर की रचना करता है, कोशिका बोलते हैं। तो आखिर ये कोशिका किस तरह से कैंसर की कोशिका में बदल जाती है, इसका विज्ञान क्या है, और अर्ली स्टेज में इसकी पहचान कैसे की जा सकती है?
3: कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में मेजर फर्क है वो जीन्स लेवल पे होता है। हर सेल के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल को कैंसर करने में मदद करता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर को रोकता है। अगर ये बैलेंस किसी कारण से नॉर्मल सेल में खराब हो जाए, या ऑन्कोजीन ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, या ट्यूमर सप्रेसर जीन वीक पड़ जाए, तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाता है। ये सिचुएशन जब चलती रहती है और जब कैंसर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, एक समय आता है कि वो कैंसर दिखना शुरू हो जाता है और उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत समय लगता है एक सेल को मल्टीपल सेल्स बनने में और कैंसर पूरा होने में। जहां तक की बात है सिम्टम्स की, सिम्टम्स कैंसर के आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वजन कम होना, जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है कि हमने खाना पीना कम नहीं किया फिर भी वजन कम हो रहा है। किसी को कोई कॉफ चले जा रहा है, खांसी चले जा रही है, उसमें खांसी के अंदर ब्लड आ रहा है, बगल में या जांघों में गांठें हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं कि शायद कैंसर ना हो। किसी को कॉन्स्टिपेशन या

0: डायरिया रिपीटेडली हो रहा है या बॉडी में कोई ऐसा दर्द है जिस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मस्कुलर पेन नहीं है, तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो आदमी को तंग करते हैं, फीवर इज ऑल्सो अ सिम्टम फॉर कैंसर। सो अगर ये सब चीजें किसी को कई हफ्तों से चल रही हैं, तो एक बार डॉक्टर के पास जाके पता करवाएं कि भाई ये चीज कैंसर तो नहीं है। और स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद ये कैंसर की संभावना जब बढ़ती है तो आदमी को ज्यादा जागरूक होना जरूरी है।
1: तो हम अपने सुनने वाले के लिए चाहेंगे कि आप बारी बारी से विभिन्न तरह के जो थेरेपीज हैं उनके बारे में बताएं कि आपके अनुभव से जो हाल के वर्षों में इम्यूनोथेरेपी इसने कैंसर उपचार को किस तरह से बदला है या एक नई दिशा दी है।
0: मैं शुरू करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से। अगर कैंसर एक लोकल जगह पे है, इसको बोलते हैं लोकलाइज डिजीज, तो हमारे पास क्योर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारे पास क्योर करने का तरीका सिंपल सर्जरी होता है। सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं तो क्योर हो जाता है। तो जो कैंसर दिखता है उसको सर्जरी से निकाला जाता है। और कुछ सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डिजीज, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग लोकल रेडिएशन देके या कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो बॉडी में जा चुके हैं ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू, उसको हम लोग कीमोथेरेपी देके कंट्रोल करते हैं। ये तो था लोकलाइज डिजीज का सिलसिला। अब आता है कि बीमारी ऑलरेडी अपनी जगह छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जा चुकी है, इसको बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर। ऐसे सिचुएशन पे हम लोग सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम हर जगह से ट्यूमर को नहीं निकाल सकते, ना ही लोकल रेडिएशन देना पॉसिबल है, क्योंकि बीमारी बहुत जगह फैल जाती है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो बचता है वो होता है सिस्टमिक थेरेपी, जिसके अंदर कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल आता है। कीमोथेरेपी सारे मल्टीप्लाइंग सेल्स को मारती है, टारगेट थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स को मारती है, और इम्यूनोथेरेपी क्या करती है जो आपका सवाल है, कि वो हमारे इम्यून सेल्स को कैंसर के अगेंस्ट एक्टिवेट कर देती है। तो कैंसर बॉडी में कहीं पर भी होगा तो वो मर जाता है। ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। इसके जो रिस्पॉन्सेज है वो 80% से ऊपर होते हैं, अगर कुछ पेशेंट को फेवरेबल क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। और देखा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी देने से पेशेंट की लाइफ बढ़ती है, कैंसर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल रहता है, साइड इफेक्ट्स कम आते हैं, और ये आज के जमाने के हिसाब से लेटेस्ट पद्धति है कैंसर ट्रीटमेंट की।
1: इसके अलावा एक होता है व्यक्तिगत उपचार, जो पर्सनलाइज्ड थेरेपी या जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात आप लोग करते हैं, ये किस तरह की है जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है पर्सनलाइज्ड थेरेपी में, और कुछ देशों ने इसमें कुछ सफलताएं हासिल की है तो उनकी सत्यता क्या है।
0: पर्सनलाइज्ड थेरेपी का मतलब है कि हम पेशेंट के ट्यूमर को डीप स्टडी करते हैं, जीन्स लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे पेशेंट को भी स्टडी करते हैं कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जैसे वो पैदा हुआ है, इस दो इन्फॉर्मेशन के साथ मिलकर हम एक डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट के ट्यूमर के अंदर कोई म्यूटेशन पॉजिटिव है, जैसे लंग कैंसर पेशेंट के अंदर EGFR म्यूटेशन के होने से उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जिसके पास EGFR म्यूटेशन नहीं होगी उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हम पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं कि ये दवाई इसको काम करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो देने के हम ना तो टाइम वेस्ट करते हैं ना पैसे वेस्ट करते हैं। सही तरीके से इलाज होना, इसको पर्सनलाइज थेरेपी बोली जाती है।
1: आपने पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की बात की, तो एक जो ट्यूमर की आपने चर्चा की थी कि ट्यूमर के रूप में बढ़ने लगता है, तो जो एक ट्यूमर हेटरोजेनेटी की बात करते हैं, ये क्या एक उपचारक को, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को, आपके जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट को किसी तरह के निर्णय लेने में, खास करके क्लिनिकल या अन्य बार, आप लोग कैसे उसका निर्णय लेते हैं।
0: कैंसर जब अपनी जगह से मल्टीप्लाई करना शुरू करता है तो जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल वो अलग अलग होते हैं। अब जो डॉटर की भी डॉटर होंगे तो और अलग होंगे, तो एक समय आता है कि सारे के सारे सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक से दूसरे से मैच नहीं करता, और ये सारा का सारा जीनोमिक लेवल पे होता है। देखने में वो सेम कैंसर होता है माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन जेनेटिक लेवल पे उसके पास डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक ऑल्टरेशन होती है। इसको बोलते हैं ट्यूमर हेटरोजेनिटी। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा ट्यूमर हेटरोजेनिटी, एक ट्यूमर के अंदर मल्टीपल कैंसर सेल्स का होना, और एक होता है इंटर ट्यूमर हेटरोजेनिटी। अगर वही कैंसर लंग में पहुंचा है, लिवर में पहुंचा है, ब्रेन में पहुंचा है, स्टमक में पहुंचा है, तो अलग अलग कैंसर की जेनेटिक पॉसिबिलिटीज, तो उसे बोलते हैं इंटर ट्यूमर हेटरोजेनिटी। ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी, जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट करके पेशेंट के बॉडी में जहाँ पे भी ट्यूमर ग्रो हो रहा है और जो भी जेनेटिक ऑल्टरेशन उसके होंगे वो एक बारी में पिकअप हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंसर को एक ही तरह से देखें और ऐसा इलाज निकले कि जो मैक्सिमम क्लोन को, मैक्सिमम ऑल्टरेशंस को, मैक्सिमम ट्यूमर सेल्स को मार सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के लिए, लेकिन कुछ तरीके से हम इसको ओवरकम कर पाते हैं।
1: तो क्या कुछ और तरह तरह के ऐसे इनोवेटिव ट्रीटमेंट हैं जिन पर काम चल रहा है या और आगे किए जाने की जरूरत है जो आशाजनक हो?
0: टेक्नोलॉजी हर साल नई नई आती है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टारगेट थेरेपीज पैदा हो रही हैं हमारे वर्ल्ड ओवर में, और हमारे

0: पास नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनोथेरेपी डेवलप हो रही है, जहाँ पे हम इम्यूनोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन देते हैं और रिस्पॉन्स को एनहेंस करते हैं। और अब आके नया टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक वैक्सीन, जहाँ पे हम कैंसर के सेल को जेनेटिक लेवल पे समझ के उसके लिए स्पेशल एक mRNA वैक्सीन बनाते हैं जो पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होता है और वो पेशेंट को हेल्प करता है। और एक और टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं कार टी सेल थेरेपी। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत डीप रिसर्च चल रही है और आने वाले समय पे आप देखेंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से छोड़कर इन सब चीजों में चल रहा होगा। और ये बहुत अच्छी होप है, लेकिन बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत रिसर्च वर्ल्ड ओवर चल रही है इस समय।
1: आपको क्या लगता है कि कैंसर निदान और रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी हो सकता है या हो रहा है, खास करके वैक्सीन निर्माण के लिए? कैंसर के अगेंस्ट में कुछ वैक्सीन आ सकते हैं क्या, या कुछ आए हैं या उन पर कार्य चल रहा है?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारी रिसर्च के अंदर और आने वाले समय में ट्रीटमेंट के अंदर भी। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर बहुत मेहनत करके एक आंसर निकाल पाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को उसको स्पीड अप कर सकता है। हमारी जो मेहनत है रिसर्च करने की, पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च चल रही है उसमें से काम की चीज निकालने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वो काम कर सकता है। तो हम एक समय के अंदर ज्यादा पेशेंट को अच्छा इलाज पहुंचा सकते हैं, पहली बात। सेकेंड बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अच्छे प्रिडिक्शन कर सकता है, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर ड्रग्स। जैसे आपने वैक्सीन का नाम लिया, जहाँ पे हमारे को ट्यूमर के जीन्स को समझना है, तो उस चीजों पे वो हमको हेल्प कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्रग डेवलपमेंट। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं। थर्ड कैटेगरीज ये हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा दी जाए, कौन सी डोज पे दी जाए और कब दी जाए। ये सारे फैक्टर्स बहुत नुआंस्ड हैं, मतलब कि बहुत ही बारीक हैं। ऐसे केस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को एक फास्ट स्पीड देता है, जिससे कि हर आदमी को बराबर इलाज मिले, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो किसी कोने में हो इंडिया के, उसको इक्वल इलाज मिल सके। वो इस चीज के लिए भी मोहताज ना हो कि बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास ही उसको अच्छा इलाज मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए हेल्थ केयर बराबर पैदा कर पाएगा।
1: आपने एक ड्रग डेवलपमेंट की बात की, तो आजकल कई जगह ड्रग रेजिस्टेंस के भी खतरे देखे जा रहे हैं और यह एक बड़ा चैलेंज है, खास करके स्वास्थ्य अनुसंधान और स्वास्थ्य जो विशेषज्ञों के लिए। तो इस क्षेत्र में कैंसर के उपचार में क्या ड्रग रेजिस्टेंस देखा गया है? अगर इस तरह की कोई चुनौती है तो क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपनाते हैं?
0: कैंसर बहुत स्मार्ट सेल होता है, जैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो उसको इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है और फिर धीरे धीरे दवाई का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, तो ये रेजिस्टेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर सेल में एक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं PGP। ये एक पंप की तरह काम करता है, दवाई को जैसे ही हम कैंसर सेल के अंदर पहुंचाते हैं, ये पंप दवाई को कैंसर सेल से बाहर निकाल देता है। तो दवाई पहुंच के भी, पेशेंट को मिलने के बाद भी कैंसर सेल के तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे बहुत तरह के मैकेनिज्म होते हैं कि जो कैंसर ट्रीटमेंट को नलीफाई कर देते हैं, उसको इनइफेक्टिव बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी चीजें कैंसर के मैकेनिज्म का पार्ट बनती हैं कि जहाँ पे दवाइयाँ शुरुआत में काम करती हैं बंद हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दवाइयाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड रेजिस्टेंस, शुरुआत से ही रेजिस्टेंट है, सभी देखा गया है। तो जो ऑन द वे रेजिस्टेंस डेवलप करती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, और जो शुरुआत से रेजिस्टेंट है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड रेजिस्टेंट। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास या तो हम दवाइयाँ चेंज करते हैं या दवाइयों के साथ दवाइयों को कंबाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाए, लेकिन हर समय जितना संभव नहीं हो पाता, ये हमारा रियल लाइफ का चैलेंज है, इसलिए कैंसर को हम 100% जीत नहीं पाए हैं।
1: एक आपने बात की अब चर्चा के दौरान mRNA, जो आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग जानते हैं, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताइए।
0: बहुत अच्छा आप बारीकी पे आना चाहते हैं, और मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में जो डिफरेंस होता है, नॉर्मली जीन्स लेवल पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है और कुछ जेनेटिक ऑल्टरेशंस होते हैं। ये जेनेटिक ऑल्टरेशंस क्या करते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ mRNA, जिसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर RNA, डेवलप करता है। उस डिफरेंट लेवल ऑफ मैसेंजर RNA से डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन पैदा होते हैं, जो हम कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो हम लोग ये जो वैक्सीन डेवलप करते हैं, जो चल रही है, रिसर्च चल रही है, उसमें उस यूनिक mRNA सीक्वेंस को जो कैंसर सेल्स में पाई जाती है, जो नॉर्मल सेल्स में नहीं पाई जाती, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आर्टिफिशियली बनाते हैं, और बनाने के बाद पेशेंट को वैक्सीन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में लगा दिया जाता है। फिर जब बॉडी में mRNA पहुंचता है, तो वो mRNA एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है, जिसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये वैक्सीन के रूप में काम करता है। वंस हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ट्यूमर कहीं पे भी बॉडी में होगा, उसके पास जाके इसको मारने की कोशिश करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉर्मल सेल नहीं है और कोई एबनॉर्मल सेल है, मीन्स कैंसर सेल है, उसको मारते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी mRNA टेक्नोलॉजी है। ये हमने देखी थी टेक्नोलॉजी जब हम कोविड टाइम पे, तो उस समय इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, सक्सेस बहुत अच्छे

0: अब उसी चीज टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है कैंसर के लिए, लेकिन हर आदमी की, हर पेशेंट की वैक्सीन अलग होगी। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन जो बनाई है वो हर आदमी को लग जाए, तो हर आदमी के लिए अलग बनानी पड़ती है। एक चैलेंज है इस समय।
1: तो आप अपने अनुभव से हमारे सुनने वालों को बताइए कुछ आशाजनक बातें कि जिनका ट्रीटमेंट सही सही हुआ, सफल हुए, उनकी आयु बढ़ी, गुणवत्ता भी मेंटेन किया जाए, तो उस सब के लिए भी किस किस तरह के कदम आप लोग उठाते हैं या सुझाव देते हैं ऐसे लोगों के लिए?
0: हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को देखा है और समझा है, और हमने पाया है कि स्टेज फोर कैंसर क्योर तो नहीं हो पाता, लेकिन इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है जैसे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होती है, उसको हम क्योर नहीं कर पाते, लेकिन पेशेंट बीमारी के साथ चलता रहता है और ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो ये अचीवमेंट हम लोगों ने देखी है। काफ़ी हमारे कैंसर पेशेंट इस समय ट्रीटमेंट के बाद बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू है और कई साल हो जाते हैं। ये सारा जो कुछ हमने समझा है जेनेटिक लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे, जब हम ट्यूमर को हिट करते हैं उसके रूट्स पर, क्योंकि जो कैंसर की रूट्स हैं वो जेनेटिक ऑल्टरेशंस होती हैं, उसको हिट करने के बाद हम देखते हैं कि कैंसर वाकई ही खत्म हो जाता है।
1: डॉक्टर अमित वर्मा जी, आपने कैंसर के कारण, उसके निदान के लिए जो विशेष उपचार हैं, टारगेटेड थेरेपी की बात की, पर्सनलाइज्ड थेरेपी की बात की, किस तरह से आप उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ड्रग रेजिस्टेंस के स्टेज में किस तरह की बातें की जाती है और किस तरह से AI इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है, निभा सकता है, इन सब बातियों पर विस्तृत जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

असी सुन रहे सी ए गीत ओ सुरुते सजन मिला दे सानू उम्मीद है कि तुसी अज दे प्रोग्राम मिट्टी दी महक नू माणिया होवेगा। तुहानू याद ही होवेगा कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम रोजाना इसे वक्त प्रसारित किया जाता है। सो अपने इस मनपसंद प्रोग्राम नाल जुड़ना ना भुलना। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम दा समा खत्म हुंदा है। हुण संदीप कौर नू इजाजत दियो।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक

0: Welsh capital Cardiff yesterday. The first ministers of the three semi-autonomous regions of the UK told Prime Minister Andy Burnham and his government to prepare for constitutional change and that their future lies with the European Union. However, Burnham's spokesperson dismissed the threat, saying that the Prime Minister strongly believes in the Union. The Inter-Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Keralam, Mahe, Punjab, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan during the next 2 to 3 days. And in sports, in men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. Team India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ अल्पना. ढेर सारे प्यारे प्यारे मेल आ चुके हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत लेकर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ. लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुन लेते हैं ये एक संदेश.
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे.
3: सो इजी.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: जी हाँ, बिल्कुल सतर्क रहिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत सुचारू रूप से चलाइए. देखिए, आज ज़िंदगी के और रिश्ते से जुड़े एक बहुत अच्छे एक टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ, लेकिन वो टॉपिक हम लेंगे एक प्यारे से गीत के बाद. और ये गीत सुनिए आप, आवाज़ है अरिजीत सिंह की और फिल्म का जो नाम है वो है सोनू की टीटू की स्वीटी. बहुत ही खूबसूरत गीत है सिर्फ आपके लिए.

हाँ साथियों, शुरुआत में हमने कहा था कि एक बहुत ही विषय पे आज हम अच्छी सी बात करेंगे। तो आज का विषय है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खास है जिससे आपने मन की सारी बातें, सारी उलझनें शेयर करते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका रिलेटिव हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर्स हो, कोई भी हो सकता है। कौन है आपकी ज़िंदगी में वो खास शख्स या जिसके साथ आप अपनी हर चीज़ साझा करना चाहते हैं? तो चलिए एक और संदेश ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो संदेश मिला है वो है हमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी का, और ये लिख रहे हैं, किस्मत एक दिन साथ दे सकती है लेकिन मेहनत हर दिन साथ देती है, मेहनत कश बने रहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात करी है। शुरुआत ऐसी इतनी अच्छी लाइनों से हो तो क्या बात है। और ये अगला जो संदेश है चंडीगढ़ से हमें मिला है, डीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप, शुभेंद्र, बजाज, साहिल और बिट्टा का कालका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं हमारे साथ श्री सुधाकर राजे और प्रशांत जुगताई और कुमार संचित जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये बहुत सारे संदेश हैं एक साथ आए हुए हैं, और ये हैं शिव मंदिर हकीकत मऊ से हैं मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, और धन्यवाद भेज रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से ही हमारे पास संदेश है। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश है वो है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार और भोपालगढ़ राजस्थान से ये हमें लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं अल्पना जी, हार्दिक नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपका दिन भी शुभ हो और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं और आगे भी सुनवाते रहिए। बिल्कुल सुनवाएंगी, अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है, और भी बहुत प्यारे प्यारे गीत आपके लिए संजोए हैं हमने इस माला में। और आपको पता है ना अभी हमने आपसे क्या कहा था, हमारा आज का टॉपिक है, कौन है वो खास आपकी ज़िंदगी में जिससे आप अपनी सारी बातें साझा करना चाहते हैं। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं केके की आवाज़ में, और आप हमें जल्दी जल्दी लिखकर भेजिए कौन है वो।

और साथियों देखिए, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमारी बात का जवाब देना शुरू कर दिया है। तो ये है जो संदेश हमें भेज रहे हैं सतीश अनेजा जी, ये मनाली हिमाचल से हमें संदेश लिख रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है दीपक ठाकुर, जिसे मैं खुलकर अपने दिल की बात बताकर हर बात बता देता हूँ और बिल्कुल वो सटीक सलाह देता है जिस पर मैं अमल करता हूँ और मेरे लिए कारगर साबित भी होती है। और उस दोस्त को मैं पाकर बहुत सब कुछ मैंने पा लिया है। परमात्मा ऐसे दोस्त को हमेशा खुश रखे। जी हाँ बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि जो है अच्छे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उन सबको खुश रखे परमात्मा और ऐसे लोग हमारे जीवन में बने रहें। और ये अगला जो संदेश है वो बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी का, परवान, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान और अब्बान और परिवार के, अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

और ये लिख रहे हैं, अल्पना जी हमारा सबसे अच्छा दोस्त रेडियो है जिससे हम हर बात साझा करते हैं और हर बात का समाधान भी बता देता है। क्या बात है, रेडियो तो आपका हमेशा से ही दोस्त रहा है और रहेगा, क्योंकि यहाँ तो आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जिसको जिससे आपको लाभ भी मिलता है और आप को उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। और ये जो अगला संदेश है, बसंत सिंह, राजकुमार और कुलदीप गांधी का संदेश हमारे साथ है और ये हमें लिख रहे हैं। इसके अलावा ये एक संदेश आया है राजेश जैन का, बिट्टू जैन और संजीव जैन का, ये मुलामपुर दाखा से संदेश है और ये लिख रहे हैं कि बहुत सारे, काफ़ी लंबा इन्होंने संदेश भेजा है और इन्होंने लिखा है कि उनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है और हमारे प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में आप इस तरह से टॉपिक्स लाते हैं वो भी इनको अच्छा लगता है। और ये एक संदेश जो हमारे साथ हमारे पास आया है वो है, ये भी सईद अब्बासी जी का संदेश है। देखिए अब्बासी जी, आपके कई संदेश हम ले चुके हैं, आप बार बार संदेश डालेंगे तो आपके कुछ साथियों के संदेश हम नहीं ले पाएंगे। ये है अनिल मोहन, उषा मोहन टिल्लू और मधु नायक जी हमारे साथ जुड़ी पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं बसंत अकेला जी और संदीप मक्कर जी हमें संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए ये एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिर हम अगला संदेश लेंगे और किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत है।

और ये जो अगला संदेश है वो है हमारे पास छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांग और रोशन लाल का और हेमलता डिंपल का। और आप लिख रहे हैं कि दिल की बातें सबसे तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जीवन साथी सच्चा मित्र परिवार के कोई सदस्य जो कि बेहद करीब हो उनसे हम अपनी बातें साझा कर सकते हैं, बिल्कुल जिन पे आपको पूरा भरोसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं अनिता मुखी, सिमरन और सुरेंद्र मुखी, और आप लिख रहे हैं कि हम तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स परिवार में ही शेयर करते हैं और उसका सोल्यूशन वहीं निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही, परिवार तो हमारा ही, जिसके साथ हमको हर चीज़ शेयर करनी ही चाहिए। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम को बहुत शौक से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हमारे साथ किसान सबका सबकाल और आशा, सोनिया, सईराज और विशाल जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी और भानु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि हम अपने दिल की हर बात साझा करते हैं, वो भी हमसे हर बात साझा करती हैं। जी हाँ मैडम जी, ये हमारी दोस्त अपने एक दोस्त की बात कर रहे हैं कि हम अपने दोस्त से अपनी सारी बातें साझा करते हैं। इसके अलावा दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, मति कुमारी और माया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। और इसके अलावा कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा हमारी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मधु किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से और लिख रही हैं कि मैं अपने शादी से पहले ये माँ से अपनी सारी बातें साझा करती थी, लेकिन शादी के बाद वे सासू माँ से अपनी सारी बातें साझा करती हैं और जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे संदेश आप लोगों ने भेजे हैं और अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम को और भी अच्छा बना देते हैं। और ये हरजिंदर सिंह भाटिया जी लिख रहे हैं, अल्पना जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल हरमिंदर जी। और ये जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ हैं अंजिल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया और

लिख रहे हैं आप, बहुत दिनों बाद हैं जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते रहते हैं, शायद आप ही बीच बीच में नहीं सुन पाए होंगे कार्यक्रम, और ऐसे ही हम आते रहेंगे और आप सुनते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। और इसके अलावा उदयपुर से हमारे साथ बाबू भाई और भारती देवी भी जुड़ी हैं, तो चलिए सुनते एक और भी प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी हाँ, छोटी छोटी बातें ही जो होती हैं वही तो याद रह जाती हैं, कभी खुशियों के रूप में, कभी गम के रूप में। और देखिए, ये जो संदेश आया है वो है हमारे पास टैगोर गार्डन नई दिल्ली से संदेश है, और ये लिख रहे हैं कि पत्नी से बेहतर हम सफर शायद ही कोई हो जिससे हम बेझिझक होकर सारी बातें कह लेते हैं। जी बिल्कुल, और गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी दुआओं में याद रखिए और हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। देखिए, हमने आपको शामिल कर लिया, रविंदर जी, इंद्रजीत और स्वीटी जी, और हमारे साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे श्रोता जुड़े हुए हैं, जिसमें गरिमा जुड़ी हुई है, नेहा जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, और आपके साथ हैं आयु और अवनी है हमारे साथ, और जय है, और विहान भी है हमारे साथ, और ये सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। और इनका कहना है कि दोस्तों से ज़्यादा राजदार कोई नहीं होता, क्योंकि दोस्त जो होते हैं उनसे हम कुछ भी साझा कर सकते हैं, वो कभी गम में भी हमारा साथ देते हैं और खुशियों में तो साथ देते ही हैं। और अगला जो संदेश है वो है हमारे पास किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का, और मुकेश कश्यप जी हमें नमस्कार भेज रहे हैं, इनके साथ जुड़े हैं शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्म, मोनी और बलवीर, मुरादाबाद से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और इसके अलावा हमारे पास देखिए, कई लोग एक बार में कई संदेश भेज देते हैं, जिस वजह से हम सारे संदेश बीच बीच में मिस हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है मेरी कि आप लोग एक एक दो दो संदेश भेजिए, क्योंकि आपके साथी भी तो चाहते हैं अपना नाम सुनना। तो ये छत्तीसगढ़ से कमल

कांत, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमने आपके लिए चुना है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। इससे पहले एक और संदेश ले लेते हैं। ये है छाया प्रयाश और दयावन जी और अनिल जी का, और ये महाराष्ट्र से, हमें नागपुर महाराष्ट्र से ही संदेश भेज रहे हैं। और चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, दोस्तों के नाम।

जो अगला संदेश हमें मिला है वो परभणी महाराष्ट्र से है। इसमें हमारे साथ जुड़े हुए रुपेश, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। और इसके अलावा गुंडवारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश और बेगम शबनम, नाजमा और सरिता गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लिख रहे हैं कि अगला संदेश नीटू मल्होत्रा जी का हमारे पास है पानी पथ से। और ये लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा लक्ष्य मल्होत्रा लाडो, कोयल पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का डुक्कू, भाविका भी हमारे साथ हमें संदेश भेज रहे हैं और नमस्कार भेज रहे हैं। नमस्कार आपको भी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, मणिकपुरी राज दास रानी और लिख रही हैं हमें।

संदेश भेज रही हैं कि ये भी लिख रहे हैं कि हमें अपने परिवार के साथ ही अपना सुख दुख साझा करना पसंद है। जी बहुत अच्छी बात है, और परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए समस्तीपुर से मीरा सिंह ज्योति, रोहतास बिहार से हैं सोनम सिंह, और अनामिका सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा पंकज शर्मा जी नमस्कार भेज रहे हैं, और इनके साथ प्रजापति किरण ठाकुर और संदीप सुधीर और करनाल से ये संदेश हमें मिला है। तो बहुत ही खूबसूरत संदेश आप लोग लिखते हैं, भेजते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, आवाज़ आशा भोसले सुरेश वाडेकर की, फिल्म परिंदा से हमने ये चुना है।

और साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मैं हूं आपके साथ अल्पना। और देखिए, एक और प्यारा सा संदेश हमें मिल चुका है शाहदरा दिल्ली से। ये संदेश है तुलसी मस्किन, वीना, आशीष डब्बू पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना रचित और केशव रिधान खुराना जी हमें संदेश भेज रहे हैं और लिख रहे हैं कि आप हमारे मेल का जवाब नहीं दे रही, कैसी नाराजगी, क्या है। देखिए, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं, और आपकी नाराजगी भी अब शायद दूर हो गई होगी ना। देखिए, और अगला जो संदेश हमें मिला है उत्तर प्रदेश से, ये संदेश है और जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद और रागनी रिया, रीनू और रोनिका यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कार्यक्रम सुन रही हैं। उनका कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उसके लिए शुक्रिया। और शोभापुर मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिव्यांशु, संजय, अनिल जैन, राधा और दर्शन भाई जो और कार्यक्रम सुन रहे हैं। पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुंदरी सुंदर प्रस्तुति लिख रहे हैं राजस्थान से, लालगिरी, हेमलता, हिना और हर्षित और खुशी गोस्वामी, शुक्रिया आपका कि आप इतने प्यार से कार्यक्रम सुनते हैं, हमें और भी अच्छा लगता है। जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए रमेश चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमांश, और इसके अलावा नमस्कार भेज रहे हैं हमें कृष्णा कॉलोनी हांसी से, हांसी से लिख रहे हैं सुभाष, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू और बबीता, और कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो अगला संदेश है वो है कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया और उमाकांत और कमलेश हैं, उनकी पुत्रवधु निशा हैं और प्रज्ञा, प्रतिमा और पूरा कटेरिया परिवार कार्यक्रम सुन रहा है और नमस्कार भेज रहा है और कह रहे हैं कि बहन सदा खुश रहें और खुशियां ऐसे ही बांटते रहें जीवन साथी के साथ। जो है ये लिख रहे हैं कि इससे बड़ा कोई नहीं होता जिसके साथ अपने जो हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो साझा की जाए। जी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीवन साथी हमारा परम मित्र होता है। और इसके अलावा तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्या मस्किन, मेगा मस्किन चंडीगढ़ से और राहुल खुराना रचित और केशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं किशोर, ये जो गीत है ये किशोर कुमार की आवाज़ और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ में है, तो चलिए सुनते हैं।

साथ ही ऑफिस रोड बक्सर से हमारे साथ जुड़े हैं जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता और संजना गुप्ता बक्सर से ही हमारे हमें सुन रहे हैं। आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आशी और सानवी। और देखिए हमारे कार्यक्रम का भी वक्त समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो चलिए एक और संदेश ले लेते हैं। कल्पित गर्वी और रमेश चंद चौहान जी जोधपुर राजस्थान से हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास झांसी से सुभाष और सुशील, बब्बू, राजू और बबीता जी का संदेश है। और चलिए संदेशों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल हमें वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम आपके साथ और जुड़े रहें, तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ मैं अल्पना। आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी और खूबसूरत गीतों के साथ और कार्यक्रमों के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी और सुनिए ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार, भूपेंद्र और सपना चक्रवर्ती की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कश्मीर दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबरस में हम लेकर आते हैं अलग अलग खूबसूरत गीत, पंजाबी गीत, गज़ल और आपको डिवोशनल गीत भी सुनवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पंजाबी गीत के साथ, आवाज़ गुरदास मान की।

इसी खूबसूरत गीत के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत लीजिए सुनते हैं गायन राग गुजरी तोड़ी में। तराना निबद्ध है मियाँ की तोड़ी में। कलाकार है उज्ज्वल नागर।

Sare gama da ni da ni da ma ga ma da ni da ni da ma da ni da ma da.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गायन राग गुजरी तोड़ी में, और तराना आपने सुना राग मियाँ की तोड़ी में। कलाकार थे उज्ज्वल नागर।

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे।

0: her an dedi.
1: नमस्कार। समय की सुई जब आगे बढ़ती है तो पीछे छूट जाती हैं कई यादें और साथ आ जाती हैं कई नई बातें। ऐसी ही कुछ पुरानी यादों और नई बातों को लेकर आज हम फिर आपके बीच हाजिर हुए हैं कार्यक्रम घर आंगन में। मैं हूँ श्रुति पुरी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल पर ये प्रसारण 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं वे ये कार्यक्रम AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया कहा करते थे कि काम ही पूजा है। ये छोटी सी पंक्ति अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। उनका ये भी मानना था कि धन नहीं बल्कि चरित्र की ऊंचाई ही असली बड़प्पन है। और आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा लिए हुए है। 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1959 में आज ही के दिन भारत में दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ था और कुछ सालों बाद नियमित प्रसारण आरंभ हो गया। सोचिए उस दौर को जब घर में टेलीविजन होना किसी उत्सव से कम नहीं था। छत पे लगा एंटीना मोहल्ले की शान हुआ करता था और शाम होते ही पड़ोसी टीवी देखने इकट्ठा हो जाया करते थे। एक छोटे से डिब्बे ने धीरे धीरे पूरे देश को अपने भीतर समेट लिया था। और अब समय है आज के प्रश्न का। जैसा कि आजकल आप सभी देख रहे हैं, बुखार, खांसी, वायरल और डेंगू जैसी बीमारियां मौसम बदलने के साथ पनप रही हैं। ऐसे में स्वच्छता अपने घर में, परिवेश में, यानी हर स्तर पर ज़रूरी है। तो हमारा आज का सवाल है आपसे ये कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपका क्या कर्तव्य है और आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com पर तुरंत लिख भेजिए और आनंद लीजिए अब इस गीत का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रॉकी में। श्रोताओं, आज का दिन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती है। आपका जन्म साल 1861 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत के महान इंजीनियरों में गिना जाता है। उनका नाम आते ही मन में सबसे पहले कृष्णराज सागर बांध और मैसूर की जल प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का ख्याल आता है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। और आज का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। हर नागरिक की आवाज़ मायने रखती है और लोकतंत्र की मजबूती जन भागीदारी से ही बनती है। और साहित्य की दुनिया के लिए आज का दिन बेहद खास है। बांग्ला के महान उपन्यासकार शरणचंद चट्टोपाध्याय की आज जयंती है। उन्होंने देवदास और परिणीता जैसी रचनाएं दी जो आज भी पाठकों के दिल में बसती हैं। और हिंदी साहित्य जगत के जाने माने डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म भी आज ही के दिन साल 1905 में हुआ था। वे हिंदी नाट्य साहित्य के उन स्तंभों में गिने जाते हैं जिनकी एकांकी विधा पूरी दुनिया में एक पहचान बन गई। श्रोताओं, आज ऋषि पंचमी भी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत सब

ऋषियों को समर्पित है। ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हड़ताल का तीज के बाद आता है। कई परिवारों में आज के दिन विशेष रूप से बिना हल जोते उगे अनाज का सेवन किया जाता है और घर की स्त्रियां सप्तऋषियों का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखती हैं। तो देखा आपने कैसे एक ही तारीख में विज्ञान, लोकतंत्र, साहित्य और आस्था चारों एक साथ मिल जाते हैं और एक नए उत्सव को जन्म देते हैं। और हम उस उत्सव में आपके साथ हैं इस गीत के साथ।

0: विरासत फिल्म में अभी आप कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण को सुन रहे थे। आकाश
1: वाणी, आकाश वाणी।
0: श्रोताओं, गणपति बापा मोरिया की गूंज पूरे देश में एक जैसी है और गणपति बापा घर घर में विराजित हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है, पर आपको पता है कि हर राज्य में गणपति बापा को मनाने का अपना ही अंदाज है। महाराष्ट्र में ये उत्सव अपनी पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। घर घर और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति स्थापना, ढोल ताशों की गूंज और भावभीनी विदाई के साथ। गोवा में इसे चवथ कहते हैं। वहां की खासियत है कि दूर रह रहे परिवारीजन भी विसर्जन से पहले घर लौट आते हैं। कर्नाटका में पहले गौरी पूजा होती है और फिर उसके बाद गणपति का स्वागत किया जाता है और साथ में कुडुबू जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग भी लगता है। हैदराबाद के खैरताबाद गणेश अपनी विशाल प्रतिमा के लिए देश भर में मशहूर हैं। यह परंपरा एक छोटी सी 1 फुट की प्रतिमा से शुरू हुई थी, जो आज 60 फुट से भी ऊंची प्रतिमा तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में इसे विनायक चतुर्थी या पल्लैयार चतुर्थी कहते हैं और कोझू कट्टई का भोग गणपति को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। कहीं ये 10 दिन का भव्य उत्सव होता है तो कहीं 12 दिन की सादगी भरी पूजा। पर बप्पा के लिए प्रेम हर जगह उतना ही गहरा है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भाषा अलग, रीति अलग, पर आस्था एक। और जब विदाई की घड़ी आती है तो हर प्रदेश में एक ही पुकार सुनाई देती है, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

शंकर महादेवन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म विरुद्ध में। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं और अब हम उनको शामिल भी कर रहे हैं। सबसे पहला मेल हमारे

पास आया है नवीन भाटिया जी का, मोतीनगर दिल्ली से। ये लिखते हैं कि कचरे वाली गाड़ी आती है डेली, उसी में कचरा डालते हैं और रोड पर लेकर नहीं जाते हैं। हमें चरणदास जी लिख रहे हैं, राजू अग्रवाल, केशव और प्रियांशी, ये सभी चौधरीवास हरियाणा से लिख रहे हैं कि नमस्कार। आपके नमस्कार कहते ही आवाज़ पहचान गया था। और साथ ही ये लिखते हैं कि हमारे घर में आगे एक बहुत बड़ा सा चौक है, हम रोज़ाना 30 मिनट वहाँ पर सफाई करके आते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप राजू अग्रवाल जी। अगर आप अपने घर के आगे के चौक की भी सफाई करते हैं तो आप अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखते हैं। और अफरोज शेख लिख रहे हैं कि घर का कचरा इकट्ठा ना होने दें, कपड़ों को भी इकट्ठा करने करके ना रखें क्योंकि इसमें भी मच्छर छुप जाते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मैले कपड़े होते हैं या धुले हुए कपड़े भी अगर बाहर पड़े हों तो उसमें भी मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये योगांशु कुमार जी लिखते हैं, योगांशु कौशिक जी, तो ये लिखते हैं, नमस्कार मैम, मैं आपका कार्यक्रम सुनता हूँ और मेरे पिताजी 1 सितंबर 2001 से जब से रिटायर्ड हुए हैं तब से FM गोल्ड सुनते हैं। और आगे लिख रहे हैं कि मैं स्वच्छता रखने के लिए कभी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डालता हूँ, उसे डस्टबिन में ही डालता हूँ और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। और आज जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो वहां पर भी जाकर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखता हूँ, लोगों को भी ये बताता हूँ कि साफ सफाई रखनी है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप योगांशु जी। हम सभी को इस मुतालिक ध्यान तो रखना ही चाहिए। अगला मेल हम ले रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, सदा खाओ स्वस्थ हो जाओ, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, मच्छर भगाओ बीमारी भगाओ। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। देखिए, आपने इस अंदाज में उसको तुकबंदी में लिखा है कि कितनी भी हम कोशिश करें, हमें मच्छर कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, लेकिन उनको भगाना हमारा कर्तव्य है। और इन्होंने आगे लिखा है कि न रखो घर में खुला पानी, फिर नहीं चले मच्छर की मनमानी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत अच्छा लिखा है आपने सुदर्शन मुखी जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और हमें एक राजेश्वर, डॉक्टर राजेश्वर राव जी का भी मेल आया है और उन्होंने लिखा है कि जो गार्बेज है वो लोगों के द्वारा ही जनरेट किया जाता है और ये कॉरपोरेशन तो इसको हमेशा जो है समेटने का ही काम करती है। तो माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को लेकर इन्होंने जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो सेग्रीगेशन है हमें करना चाहिए, गीले कूड़े का और सूखे कूड़े का स्टोरेज नहीं करनी चाहिए, टाइमली उसका एक सही जगह पर उसका निस्तारण भी हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने डॉक्टर राजेश्वर राव जी। आप भी हमें नियमित मेल करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। गौरी शंकर जी का मेल हमें आया है और इन्होंने लिखा है, राम राम बेटा, इस मौसम में मच्छरों की भरमार हो जाती है जिससे बीमारियां फैलती हैं, तो घर में पानी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए और बुखार में कई दिनों तक नहीं तो पीछा नहीं छोड़ता और ध्यान रखना जरूरी है। और ये गौरी शंकर जी नांगलोई से हमें लिख रहे थे। श्रोताओं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं और बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को भी ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए ना, अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको एक बार फिर से, मैं चाहती हूँ आपको बचपन में ले चलूँ क्योंकि बचपन में जो हम रेल का सफर करते थे ना, और उसमें अगर सीटी की आवाज सुनाई नहीं देती थी तो ऐसा लगता था कुछ अधूरा है। बचपन में स्टेशन पर खड़े होकर हम अक्सर उस सीटी की आवाज का इंतजार किया करते थे, मानो किसी जादुई पल की शुरुआत हो रही हो। और रेल की सीटी सुनते ही जैसे मन में एक अलग सा उत्साह भर जाता था। पर क्या आपको पता है कि सीटी सिर्फ इशारा भर नहीं बल्कि एक पूरी भाषा है। भारतीय रेल में हर सीटी का अपना एक तय संकेत कोड होता है। अगर चालक एक छोटी सीटी बजाता है तो इसका मतलब है कि उसे किसी और इंजन की मदद की जरूरत
नहीं है। और अगर वो

एक छोटी और एक लंबी सीटी बजाए तो इसका अर्थ है कि उसे पीछे लगे इंजन से सहायता चाहिए। जब ट्रेन खड़ी हो और चालक दो छोटी सीटी बजाए तो इसका मतलब है कि वो गार्ड से ट्रेन चलाने की अनुमति मांग रहा है। लगातार लंबी सीटी का मतलब है कि ट्रेन किसी स्टेशन को बिना रुके ही पार कर रही है ताकि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग सतर्क हो जाएं। कुछ खास मौकों पर रुक रुक कर बजने वाली सीटी ये संकेत देती है कि आगे रास्ता साफ नहीं है या पटरी पर कोई रुकावट है। और अगर कभी कोई आपात स्थिति बने, जैसे किसी यात्री ने चेन खींच दी है, तो उसका भी अपना अलग सीटी संकेत होता है। यानी जो सीटी हमें बचपन में सिर्फ एक रोमांचक आवाज लगती थी, वो असल में चालक और गार्ड के बीच में एक पूरा संवाद है। रेल की पटरियों के किनारे लगे जो पीले बोर्ड होते हैं ना, उन पर जो W का निशान भी होता है, वो भी चालक को यही याद दिलाता है कि आगे सीटी बजानी है। वाकई ये जानकारी दिलचस्प है ना। अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर खड़े होकर ये सीटी सुनेंगे तो शायद उसका मतलब समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। दोस्त फिल्म में अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, छोटे बच्चों की दुनिया बड़ी अनोखी होती है। आपको बताएं कि वे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं जो बड़े लोग बोलकर भी नहीं बता पाते, शब्दों में भी नहीं कह पाते। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि उनके भीतर पनप रही इस कोमल समझ को सही दिशा दें, उन्हें सहानुभूति और संवेदनशीलता के रूप में पल्लवित होने दें। आज के दौर में बच्चों की परवरिश की सब

सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कहीं संवेदनशीलता पीछे न छूट जाए। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है घर का माहौल। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर घर में बड़े एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से यही सीखता है। बच्चों को कहानियाँ सुनाना भी सहानुभूति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जब बच्चा किसी कहानी के पात्र के सुख दुख से जुड़ता है तो वो दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है। इसके अलावा पालतू जानवरों की देखभाल या पौधों को पानी देने जैसी छोटी जिम्मेदारियाँ भी बच्चों में देखभाल का भाव जगाती हैं। बच्चों से ये पूछना भी ज़रूरी है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और अगर वे किसी दोस्त की तकलीफ की बात करें तो उन्हें ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि उस दोस्त की जगह पर अगर तुम होते तो कैसा महसूस करते। इससे बच्चों में दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता विकसित होती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों की भावनाओं को कभी छोटा या नज़रअंदाज न किया जाए। जब बच्चों को ये भरोसा होता है कि उनकी भावनाओं को समझा जाता है तभी वो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए भी खुला रहता है। सच में सहानुभूति कोई पाठ्यक्रम नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे पलों से सीखी जाती है, और यही छोटे पल आगे चलकर एक संवेदनशील समाज की नींव बनते हैं।

आशा भोसले और गीता दत्त को अभी आप फिल्म सुजाता में सुन रहे थे। दोस्तों, आजकल तो हर किसी की कलाई पर या जेब में मोबाइल फोन में समय दिख जाता है और एक

में पता चल जाता है कि घड़ी में कितने बजे हैं। पर जरा सोचिए उस दौर के बारे में जब ना कलाई पर घड़ी होती थी न जेब में मोबाइल फोन। तब समय का हिसाब रखना अपने आप में कला हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग सूरज की परछाई देखकर समय का अंदाजा लगा देते थे। धूप घड़ी यानी सन डायल का इस्तेमाल तो प्राचीन भारत में भी होता था। इसके अलावा गांवों में मुर्गे की बांग होने से सुबह का पता चलता था। समय के साथ इंसान ने इस अनुमान को यंत्रों में बदलना शुरू किया। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास पहली यांत्रिक घड़ी बननी शुरू हुई, जो साल 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूनसेंग ने पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया, जो अपने समय की सबसे सटीक टाइम कीपिंग डिवाइस मानी जाती थी। यहीं से घड़ी के आधुनिक सफर की नींव पड़ी। और फिर आया दीवार घड़ी या टेबल घड़ी का दौर। पेंडुलम वाली घड़ियां हर घर की शान हुआ करती थी। उनकी टिक टिक की आवाज मानो घर में जीवंत होने का प्रमाण होती थी। हर घंटे बजने वाला घंटा पूरे मोहल्ले को ये याद दिलाता था कि समय क्या हुआ है। कलाई घड़ी का चलन आने के बाद तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गई। शादी में दूल्हे को घड़ी देना एक परंपरा बन गई थी और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पहली घड़ी मिलना किसी बड़े उपहार से कम नहीं होता था। महापुरुषों के जीवन में भी घड़ी का अपना ही अलग महत्व रहा है। आज के दौर में घड़ी का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच सिर्फ समय नहीं बताती है, बल्कि दिल की धड़कन नापती है, कदमों को गिनती है, फोन के संदेश तक दिखा देती है। फिर भी उन पुरानी घड़ियों के टिक टिक में जो सुकून था ना, वो आज भी बहुतों के मन में बसा हुआ है। ठीक कह रही हूँ ना? अपनी घड़ी देखिए और आंकिए वो किस जमाने की घड़ी है।

श्रोताओं, आज का ये सफर सच में बहुत रंगों से भरा रहा। बीता हुआ हर पल एक नई कहानी छोड़ जाता है और हर आवाज अपने भीतर कोई ना कोई संदेश समेटे रहती है। बस जरूरत होती है उसे सुनने, उसे महसूस करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं और आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम घर आंगन। मैं थी श्रुति पुरी, इजाजत दीजिए। जल्द ही नई दोपहर, नई बात, एक नए विषय और एक नई सोच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए हमारा ये गीत, अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की आवाज़ में, फिल्म त्रिदेव से।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: वित्त मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, ADITI हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रूपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken.

0: आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा यानी कि रैना तंवर का प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर। दोस्तों, हम चलेंगे मोहब्बत, शायरी, तहजीब और पुरानी हिंदी सिनेमा के उस दौर में जहाँ गीत सिर्फ गीत नहीं होते थे बल्कि दिल की आवाजों को बयां करते थे। वो ऐसा दौर, तो ऐसी फिल्म को लेकर आई हूँ आज मैं जहाँ साल 1967 की एक खूबसूरत फिल्म जिसको आपको गेस करना होगा। जी हाँ, इस फिल्म में है मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार। संगीत है रोशन साहब का और गीत लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने। और तो सोचिए, जब मीना कुमारी की अदाकारी हो, रोशन साहब का संगीत, साहिर साहब की शायरी एक साथ मिले तो कैसा जादू हो जाता है। आज हम सुनेंगे इस फिल्म के खूबसूरत गीत, उस फिल्म की थोड़ी सी संक्षिप्त कहानी और रोचक तथ्यों के साथ। और उससे पहले गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, लेकिन उससे पहले आपको हमें मैसेज करके बताना होगा कि आज का हम किस फिल्म को लेकर आए हैं और किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं। तो आप शुरू हो जाएं, मैसेज करें हमें फटाफट से इस मैसेज आईडी पर ipradiodelhi@gmail.com और बताइए हम किस फिल्म को लेकर आ गए हैं आज आपके बीच। तो सबसे पहले जो हमें मैसेज करेगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का होगा फेवरेट श्रोता। जैसे कि रहना होती है तो कभी तो कुछ ना कहना होता ही है, तो ये गेम शुरू हो चुका है इस गीत के साथ।

जी हाँ, हमने भी आपका इंतज़ार किया और आप सभी ने हमें बहुत बहुत मैसेज करके जवाब दिए। और सबसे पहले जिसने जवाब दिया, आज के जो हमारे फेवरेट श्रोता घोषित हुए हैं, वो हैं धर्मेंद्र छिप्पा जी राजस्थान से। उन्होंने भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा जी ने मैसेज किया और बिल्कुल सही जवाब दिया। आज हम जो फिल्म लेकर आए हैं वो है बहू बेगम। जी, 3 फरवरी 1967 में रिलीज हुई फिल्म बहू बेगम, और फिल्म का निर्देशन एम सादिक जी ने किया। कहानी लखनऊ के नवाबी माहौल और तहजीब के बीच बुनी हुई थी, और ये एक मुस्लिम सोशल ड्रामा है जिसमें प्यार, गलतफहमी और रिश्तों की परीक्षा ली जाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि फिल्म की जो नाजिमा जीनत जहां बेगम, जिसका किरदार निभाया है मीना जी ने, और जीनत को मोहब्बत है यूसुफ से, जिसका किरदार निभाया था प्रदीप कुमार जी ने, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जीनत की शादी नवाब सिकंदर मिर्जा साहब से तय कर दी जाती है, जिसका किरदार निभाया है अशोक कुमार जी ने। तो दोस्तों, कहानी पहुंची है उस मोड़ पर जहां पर जीनत की जिंदगी बदल जाती है। शादी का दिन आता है, जीनत का उम्मीद है कि उसकी शादी यूसुफ से होगी, लेकिन पता चलता है कि उनकी शादी नवाब सिकंदर मिर्जा से हो रही है। वो टूट जाती हैं, यूसुफ से मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन हालात दोनों को नहीं मिला पाते, शादी हो जाती है, मगर जीनत की डोली अपने पति के घर नहीं पहुंचती। परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये बात छिपाई जाती है और दुल्हन घर नहीं आई। जीनत की जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई जहां उसे अपने प्यार और समाज की उम्मीदों के बीच चुनाव करना है। इसी दर्द को महसूस करते हुए सुनते हैं ये लता जी की आवाज में खूबसूरत सा नगमा।

जवाब दें। जी हाँ, सभी ने हमें जवाब दिए, बहुत ही अच्छा लगा सबके जवाब हमारे पास आ रहे। सबसे पहले जो हमें मैसेज किया था, वैसे उन्होंने किया था स्वर्ण सिंह ने, लेकिन सही जवाब जो दिया था वो धर्मेंद्र छिपा जी ने दिया था। और हमारे लिए सभी श्रोता बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं। आपके मैसेज आते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, कार्यक्रम करने का मन करता है, दिल करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पेश करें। सुदर्शन शाह जी ने हमें मैसेज किया है, और उसी तरीके से हमें नितेश देवांगन जी ने, दुर्गा प्रसाद पराग पुना और कृष्णा देवांगन, संदीप मक्कर जी ने मैसेज किया है। और अब हम बढ़ते हैं, जीनत की हालत वो ऐसी हो जाती है कि वो अपने घर से दूर हो जाती है, उसे सहारा मिलता है नजीरन बाई के घर में, जिसका किरदार निभाया ललिता पवार जी ने। जीनत अब अपने पुराने जीवन से बहुत दूर है, उधर परिवार की इज्जत बचाने के लिए घर से वो दिखावा जारी है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जीनत के दिल में अपने प्यार की यादें हैं। और जब किसी के दिल में मोहब्बत बस जाए तो दूरी भी नहीं मिटा सकती। अब पेश है ये फिल्म बहू बेगम का ने खूबसूरत सा नगमा, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, हम इंसान दिल से क्या, मोहब्बत से क्या, हर जगह है उस इंसान को, हर नज़रें उसकी ओर ढूंढती हैं जिसे दिल में हम बसा लेते हैं। तो इस गीत को सुनकर आपको ये दिलकश नगमा जो हम मैं सुनाने जा रही हूँ, आपके दिल को ज़रूर छुएगा।

जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे की आवाज़ का ये खूबसूरत गीत जो हमने सुना, फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत रोशन साहब का था। इस जोड़ी ने फिल्म के संगीत में मोहब्बत, दर्द और शायरी का खूबसूरत मेल किया। दोस्तों, पुराने हिंदी सिनेमा में सावन का भी एक अपना ही रंग होता है, क्यों? सही कहा ना, झूले, सहेलियां, हंसी, मेहंदी और गीत सब मिलकर एक खूबसूरत सा माहौल बना देते हैं। अभी हमारा सावन गया और किस किस ने ये गाना सुना ये जरूर बताइएगा। सावन की फुहार हो, आंगन में झूले पड़े और चारों तरफ गीतों की मिठास, ये जो गीत है ना, फिल्म के दर्द भरे माहौल के बीच एक अलग ही रंग भरता है। इस गीत को लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया। दोनों बहनों की आवाजें एक साथ सुनना हिंदी फिल्म संगीत का ना एक खास खूबसूरती का एक माहौल रहा, क्यों? सही कह रही हूं ना। इसी तरीके से प्यार भरे मैसेज हमें भेजते रहिए और हम सुनाएंगे आपको बहुत ही सुहावने, दिल को खुश करने वाले ये गीत।

जी हाँ, झूले तो पड़ गए जी। जिन जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो ऑन किया है, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और लाइव इस कार्यक्रम की दोस्त कौन रहना तवर जी। और आज हम इस खूबसूरत सफर में लेकर आए हैं फिल्म है हमारी, जो कि 3 अप्रैल 1967 में रिलीज हुई थी, यादगार फिल्म बहू बेगम। बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो श्रोता है खुद सुदर्शन मुखी जी हैं, अनीता है, सिमरन है, शांति जी शांति नगर से, सोनीपत से हमें मैसेज कर रहे हैं, संदीप मक्कर जी ने हमें मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुरमीत जी जी हमें मैसेज करें साउथ एक्सटेंशन से, दिल्ली से, और इसी तरीके से संदीप मक्कर जी, कमलकांत गुप्ता पीपरिया से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, कृपया करके हमें संदेश भेजें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो अब इसी तरीके से अपने रैना मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी फागू राम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव जी ने हमें मैसेज किया है, और हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आप ही का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। अब वापस चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर जी। ये है कहानी जीनत की, और जीनत की जिंदगी एक बड़ा सवाल पैदा कर देती है, वो क्या कि क्या उसे वो प्यार मिल पाएगा जी। वही नवाब सिकंदर मिर्जा के सामने भी एक सच्चाई आती है, और वो समझते हैं कि जीनत का दिल कहीं और है। तो दोस्तों, यही से फिल्म का जो भावुक पक्ष है ना, वो सामने आ जाता है। वो क्या, एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ है इज्जत और त्याग। फिल्म की कहानी में रिश्तों की परीक्षा एक ऐसी यादगार को ना पेशकश पैदा कर देती है कि मोहम्मद रफी की आवाज और मन्ना डे की आवाज का एक शानदार गीत आपको सुनाते हैं, और आपको दिल खुश कर देगा ये गीत।

जी हाँ, ये एक गीत, एक कव्वाली, एक शैली का गीत है जो रोशन साहब की कव्वाली और शास्त्रीय रंग भर देती है संगीत में। क्यों, सही कहा ना, उनके संगीत एक खूबी बहू बेगम में दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब हम लौटते हैं अंतिम दौर पर, जहाँ भावुक चीज आती है। यूसुफ साहब वापस लौटता है, जीनत से मिलने की कोशिश करता है, दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता है और जीनत और यूसुफ एक दूसरे से सच्चा प्यार करती है। इस कहानी में ऐसा त्याग और ये सब देखने को मिला, लेकिन बहू बेगम की कहानी आज भी पुराने सिनेमा के प्रेमियों के लिए आज भी यादगार बन चुकी है। तो जाते आते हम एक गीत और सुनवा देंगे आप सभी को, लेकिन ये जो दर्द है ये हमेशा बना रहता है, वो दर्द नहीं रहना चाहिए। तो प्यार करते रहिए एक दूसरे से, और हमारे जब यदि मैं बता दूं कि हमारे जो श्रोता है नाराज ना हो कि समय की कमी के वजह से मैं शायद सबके नाम ना ले पाऊं, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। फागुराम यादव जी, पीएस नामस्कर, आर कुमार जी, जगाराम राव साहू, जहरजिंदर छिंदा और सुदर्शन मुखी, राजकुमार, इतने सारे मैसेज हमें आए हैं, इतना सारा प्यार। हिरमानी वर्मा, संजय ढींगिया, अनिल मोहन जी, सुवर्ण सिंह जी, धर्मेंद्र झिप्पा जी, इशक मोहम्मद, दिग्दर्शन गौर, हरजिंदर सिंह जी और गुरमीत सिंह जी, इशक मोहम्मद, बाबू सर, यशवंत, दिग्दर्शन, सुधाकर, लालगिरी जी, हरजिंदर सिंह, बिट्टू, गंगा और हीरामणि, संजय, बहुत सारे मैसेज आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जाते जाते बस इतना कहूंगी कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आपका अपना कार्यक्रम। ये कौन सा गे? ये गाना भी चला दो साथ साथ, ताकि आप कहें कि जाते जाते मैं गाना नहीं सुना रही हूँ। गाना भी सुना देते हैं और मिलते हैं अगले इसी 3 बजे, क्योंकि मैं मिलूंगी मैटिनी मेलेडी में। लेकिन जाते जाते यही कहूंगी, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने, दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट, ताकि आपके दिल को मिले सुकून एक अच्छे नागरिक बनने का वादा कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं 3 बजे आपके साथ मैटिनी मेलोडी में। रैना को दीजिए इजाजत, सुनते रहे आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक ही फिल्म से कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दिया खास खबरां। चौगिरदा जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधीनगर च वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं निरंतर विकास ढांचे च सर्कुलर इकोनॉमी दे सिद्धांत नूं शामिल करन प्रति भारत दी वचनबद्धता ते जोर दिता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा खोज अते विकास संगठन DRDO अते उद्योगों विचकार भाईवाली भारत नूं रक्षा उत्पादन दा आलमी केंद्र बनाउण च अहम भूमिका निभा सकदी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले च FIR दर्ज की थी। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है ते भारत ते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शामी 7:30 बजे दिल्ली च खेडा जाएगा। खबरां विस्थार दे नाल 10वां वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सम्मेलन अज गांधीनगर दे महात्मा मंदिर च शुरू हो गया है। चौगिरदा जंगलात अते जलवायु तब्दीली बारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अते गुजरात दे मुख मंत्री भूपेंद्र पटेल ने सांझे तौर ते इस दा उद्घाटन किया। इस सम्मेलन भारत च पहली बार हो रहा है। इस विच 65 तों वध देशां दे 2000 तों वध हिस्सेदार शामिल हो रहे ने। इस दा विशा सर्कुलर इकोनॉमी लोकां अते खुशहाली लई तब्दीली। उद्घाटनी समागम च केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निरंतर विकास के मुद्दे च सर्कुलर इकानमी के सिद्धांत नूं शामिल करन प्रति भारत की वचनबद्धता नूं उजागर किया। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ भारत ने मुड़ वरतों मुरम्मत अते संभाल वर्गे अपने प्राचीन तरीकों नूं समकाली नीतियां च शामिल करके उन्हां दा आधुनिकीकरण किया है। उन्हां कहा,
2: रिपेयर बिफोर रिप्लेस,
3: बदलने से पहले मरम्मत करें, फेंकने से पहले पुनः उपयोग करें और कचरे में डालने से पहले संसाधन का पुनर्चक्रण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए क्षेत्र विशिष्ट नियमों की समीक्षा करके कचरा प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को लगातार मजबूत किया है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, कचरे को अब किसी उत्पाद की यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए संसाधन चक्र की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: बट एज द बिगिनिंग ऑफ अनदर रिसोर्स साइकिल।
1: ब्रिक्स नवी दिल्ली ऐलाननामा भारत यूरोपी संघ EU सांझा ढांचा ते मिशन लाइफ वर्गियां विश्व व्यापी पहलकदमियां दा जिक्र करदे हां। उन्हां कहा कि सर्कुलर इकानमी दी शुरुआत भारत तों होनी चाहीदी है। इस मौके उत्ते गुजरात दे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, चौगिरदा, खुशहाली अते स्थिरता दा आपस च तालमेल होना चाहीदा है। उन्हां ने सर्कुलर इकानमी दे सिद्धांतां नूं भारत दे निरंतर विकास दी बुनियाद दस्सिया। दो दिना समारोह दौरान 4 मुख सैशन अते 16 विशा आधारित सैशन होणगे जिन्हां च आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, AI दी वरतों, साफ सुथरी ऊर्जा, शासन अते स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्गे अहम खेत्र शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा खोज अते विकास संगठन DRDO अते उद्योगों विचकार सांझदारी भारत नूं रक्षा उत्पादन दा संसार पदरी केंद्र बनाउण च अहम भूमिका निभा सकदी है। श्री सिंह ने नवी दिल्ली च DRDO इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 नूं संबोधन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिजाइलों तों लैके रडार, लड़ाकू जहाजों तों लैके पनडुब्बियां अते इलैक्ट्रॉनिक जंगी प्रणालियां तों लैके AI तक हर खेत्र च अपनी समर्था साबित की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों दौरान रक्षा खेत्र च किए गए सुधार बेमिसाल ने अते कई अहम फैसले लिए गए ने।
4: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडियाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, अदिति हो।

0: अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत की यकसर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना ताउन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दुरंदेश मनसूबा बंदी और काबिल अमल तरीके कार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर डैम तामीर किया, जो मैसूर के चीफ इंजीनियर्स के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा पानी का जखीरा है। उन्होंने 1908 के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे पानी के जखीरे भी डिजाइन किए। रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रात पर मबनी समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और खासतौर पर ओडिशा के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रिवायती त्यौहार नहीं है, बल्कि ये समाजी तकरीबात और दोस्तों अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुनबा जाति मेल जोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाज़ात से दो चार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामिया को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा। भारत का सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां योम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में यह ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 15 सितंबर 1959 को क्याम के बाद दूरदर्शन ने भारत के ब्रॉडकास्टिंग दौर की शुरुआत की। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले नशरिये का इफ्तिताह किया। 1975 तक यह ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहा। यकम अप्रैल 1976 के दिन एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब दूरदर्शन को अमली इख्तियार देकर ऑल इंडिया रेडियो से इलाहदा कर दिया गया। दिल्ली में एशियाई खेलों के इनेकाद के साथ 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद दूरदर्शन देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने आज यमुना नदी को साफ सुथरा करने और ताजा करने के किशाव कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर जल शक्ति के वजीर CR पाटिल, मरकजी दाखला सेक्रेटरी, पानी के वसाइल के मरकजी सेक्रेटरी और मुतालिक रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। अमरीका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उस नए कानून पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें गैर मुल्की तलबा और साफियों के क्याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले से बैन अल-अक़वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के नफाज से अमरीका की मईशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: यात्रियों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाव बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द ईपीआर मैकेनिज्म।
6: ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत ईपीआर प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न ईपीआर ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्

0: चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
1: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
2: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास पारिस्थिति समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। M विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ M विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि M विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
4: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर M विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी M विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से

0: अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
1: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही कलाकार, और आज हम एक ऐसे कलाकार को लेकर आए हैं जो कभी अकेला नहीं आया, बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड की फौज को अपने साथ सिनेमाघरों में उसने उतारा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक ही फ्रेम में सुनील दत्त साहब का रॉब होता था, धर्मेंद्र जी का एक्शन और जितेंद्र जी का डांस, और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा

साहब का खामोश गूंजता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में जिस कलाकार को लेकर आए हैं वो है सिनेमा के शहंशाह। जी हाँ दोस्तों, वो शोमैन जिसने बॉलीवुड को मल्टी स्टारर फिल्मों का असली मतलब सिखाया, जिन्होंने पर्दे पर जब इच्छाधारी नागिन उतारी तो पूरा देश थिएटरों में झूम उठा, और जब जानी दुश्मन की गुफा खोली तो सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड टंग गए। तो आज का ये पूरा प्रोग्राम है उसी एक्शन और फैंटेसी किंग राजकुमार कोहली।

जी दोस्तों, फिल्म नागिन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म नागिन से आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत। ये वही फिल्म नागिन है जिसने बॉक्स ऑफिस पर जो इतिहास रचा, उसने राजकुमार कोहली को रातों रात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े डायरेक्टर्स की कतार में खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको मालूम है ये फिल्म जब बनने वाली थी उससे पहले राजकुमार कोहली साहब का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जी हाँ, जब कोहली साहब ने नागिन की कहानी लिखी तो वो उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन की कहानी लिखी जो कि अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए एक एक करके इंसानों को मारती है और उनसे बदला लेती है। अब भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो ये कॉन्सेप्ट एकदम नया था, और जब कोहली जी अपनी स्क्रिप्ट लेकर हर बड़ी हीरोइन के पास गए, हर किसी के पास हो गए, चाहे वो सायरा बानो हो, मुमताज़ हो या फिर और कोई भी अभिनेत्री हो, लेकिन सब ने ये कहकर मना कर दिया कि भाई हमें कोई भी जहरीला सांप नहीं बनना है, हम हमारी रोमांटिक और ग्लैमरस इमेज में ही अच्छे हैं, हमें अपनी इमेज ख़राब नहीं करना है। कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। और उस दौरान जब हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था राजकुमार साहब को, लेकिन हाँ, उनको अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था, और आखिरकार में वो पहुंचे रीना रॉय के पास जो उस वक्त अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में थी। मतलब फिल्में मिल रही थी, बस एक दो फिल्में वो कर रही थी, और उस वक्त रीना रॉय को हर किसी ने सलाह दी कि भाई ये फिल्म ना करो, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रीना रॉय ने अपना भरोसा दिखाया कोहली साहब की इस कहानी में, भले ही वो कोई कैसा भी रोल हो, और मतलब कोई सिंपल रोल नहीं था, नेगेटिव रोल भी नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि वो ये रोल करके लोगों के साथ इमोशनली जुड़ेंगी, और ये भरोसे के साथ में वो कोहली साहब जी के साथ जुड़ गई और उन्होंने ये रोल स्वीकार किया। और देखिए, 1976 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और थिएटर्स के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी उस वक्त कि बस क्या ही कहना। और यही वो किरदार था जिसको हर किसी बड़ी हीरोइन ने ठुकराया था, लेकिन ये वही किरदार है जिसको निभाकर रातों रात रीना रॉय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की कतार में शामिल हो गई, है ना। वैसे ये जो किस्सा है ना, ये बताता है कि राजकुमार कोहली साहब अपनी कहानियों को लेकर किस तरह जुनूनी थे, बल्कि वो अपनी स्टार कास्ट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच विचार किया करते थे, और शायद यही वजह थी कि उनके पास में जितनी भी फिल्में होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी स्टारर फिल्में होती थी। तो उनके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनकी एक और खूबसूरत सी फिल्म जीने नहीं दूंगा से लता और शब्बीर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा।

राजकुमार कोहली साहब फिल्मों को लेकर कितना जुनूनी थे, ये उनके शुरुआती स्ट्रगल से भी पता चलता है। दरअसल लाहौर से लेकर जलंधर तक वो किस तरीके से पहुँचे हैं, मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो उनका जो परिवार है वो पंजाब में रहता था, लेकिन जब विभाजन हुआ उस वक्त में आर्थिक रूप से वो थोड़ा सा टूट गए और उसके बाद वो पहुँचे जालंधर, और वहाँ पर राजकुमार कोहली का रुझान थिएटर और पंजाब की सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ था। पंजाब आने के बाद उन्होंने आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर छोटे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, सिनेमा वितरण का काम करना शुरू किया, और यहीं पर वो धीरे धीरे धीरे धीरे सीखते रहे कि क्या ज़रूरत होती है फिल्मों को करने के लिए। मुंबई आने से पहले उन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में की जी, और यहीं पर उन्होंने ये समझा कि भाई जो हमारे दर्शक होते हैं थिएटर में वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी क्या पसंद होती है, किस तरह की कहानियाँ उन्हें पसंद आती है, और किस तरह की कहानियाँ हों जिनसे बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमा सकते हैं। ये थोड़ा अनुभव और थोड़े पैसे कमाने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुँचे मुंबई। मुंबई आकर सीधे निर्देशन तो मिलना नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था, और उन्होंने धीरे धीरे पहले पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया, प्रोडक्शन में उन्होंने हाथ आजमाया, और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की पंजाबी सिनेमा से। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी फिल्मों में उन्होंने पहले अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने साल सन 1963 में पिंड दी कुड़ी जैसी पंजाबी फिल्में बनाई, और इस फिल्म से उन्होंने फिल्म मेकिंग की जो चीज़ें हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने सीखी। और 1972 में आई उनकी एक हिट फिल्म, पंजाबी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, और इसी फिल्म ने उन्हें वहाँ पर कामयाब बनाया, और उसी के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी गोरा और काला, जिसमें राजेंद्र कुमार जी का डबल रोल था और उनके साथ थी हेमा मालिनी और रेखा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो लीजिए सुनते हैं पहले हम यही गोरा काला फिल्म से खूबसूरत सा गीत मुकेश जी की आवाज़ में, आगे का सफ़र जारी रखेंगे अभी।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत फिल्म गोरा काला से राजकुमार कोहली साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में। दोस्तों, जब भी 70 और 80 के दशक में फिल्मों के पोस्टर लगते थे और जिन भी पोस्टरों में बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा बड़े सितारे नज़र आए ना, तो सबके मन में सबसे पहले यही नाम आता था कि भाई ये फिल्म राजकुमार कोहली की ही होगी। क्योंकि जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जो डायरेक्टर थे वो दो बड़े स्टार्स को साथ लाने में भी घबराया करते थे, वहीं राजकुमार कोहली साहब अपनी फिल्मों में पूरी की पूरी स्टार कास्ट उतार देते थे। सुनील दा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रिनो रॉय जैसे किरदारों को लेकर जहाँ उन्होंने बनाई फिल्म नागिन, वहीं वो उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में दी जो कि मल्टी स्टारर फिल्में रही हैं। और राजकुमार कोहली जी की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत होती थी उस फिल्म के दमदार डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर, बेहतरीन गाने और देखने वालों को अंत तक बांधे रखने का उनका वो कहानी का बंधन, कहानी का सस्पेंस। चाहे वो फिल्म हो बदले की आग, नौकर बीवी का, या मल्टी स्टारर फिल्म राज तिलक, इंसानियत के दुश्मन, या फिर

जानी दुश्मन भाई, जानी दुश्मन की बात हुई है तो उस फिल्म का गीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म जानी दुश्मन से।

दोस्तों, जो स्टूडियो की घड़ियां हैं वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही है, स्टूडियो की घड़ी, और मुझसे प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन भाई, हमारे दोस्तों के जो संदेश हम तक आए हैं वो लेना भी ज़रूरी है। और ये संदेश आया गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल दलजीत राजदीप गुरनूर गुरलाल अविराज का। अगला संदेश आया ताज मोहम्मद गुलाम साबिर मेहराज जहाँ आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से उन्होंने संदेश भेजा है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टीलर, पुनाराम और कृष्ण देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हें राजकुमार कोहली जी पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और गीत भी उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जुड़े हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, और बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित किशकेशु, रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से जुड़े हैं शिवा गोप्रेम, कपिल शिवांश और संगीता गोप के साथ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान छीपा, पूजा परिहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम तक दी है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम ये नहीं पढ़ पाएंगे, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगी। गुरमीत सिंह मीता जी जुड़े हमारे साथ साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता जुड़े हुए हैं, और प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से, और गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अगला संदेश संजय ढींगिया नमन, अपार ढींगिया का, बागपत उत्तर प्रदेश से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल्स, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदेश आया हमारे साथ अमर रमेश कुमार खत्री जी का, और उन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है कराची से, और इनके साथ हैं कृष्ण लाल खत्री, टेलर मास्टर जी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद आमीन, जफर सादिक शेख उनके साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन, शांतिनगर, सोनीपत से।

हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े, और ये कुछ संदेश और हैं। संदीप मकर, ज्योति मन्नत मकर हमारे साथ जुड़े हैं भारत मकर के साथ, कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से, और ये जो अगला संदेश है ये भी इन्होंने ही हम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत संदेशों के लिए जिनके ज़रिए आप हम सभी से जुड़ते हैं और अपनी जो बातें होती हैं, अपने जो जो भी आपके मन की बातें होती हैं वो आप उन्हें हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अभी आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार में, और आज हमने बात की राजकुमार कोहली जी के बारे में। अब जो घड़ियां हैं वो मुझसे कह रही हैं कि विदा लेने का वक्त हो चला है, तो अब मैं आपसे चाहूँगी अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि इसके बाद जो कार्यक्रम होगा मैटिनी मेलेडी, उसको लेकर आ रही हैं हमारी आरजे रैना तवर। बहुत खूबसूरत गीतों के साथ वो आ रही हैं। तो अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। लेकिन जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगी कि दोस्तों हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: जमाना तो है नौकर बीवी का।
1: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 3 बजने को हो रहे हैं और कार्यक्रम है मैटनी मेलोडी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी को प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मैटनी मेलोडी, जहां पुराने हिंदी सिनेमा के सुनहरे गीतों के साथ हम सजाते हैं यादों की एक खूबसूरत महफिल। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट रैना तावर। दोस्तों, सिनेमा घर सिर्फ सिनेमा जो होता है सिर्फ पर्दे पर नहीं, चलती तस्वीरों का नाम नहीं है। सिनेमा तो एहसास है जो किसी पुराने गाने के बजते ही हमें हमारी जिंदगी की किसी खूबसूरत मोड़ पर ले आती है। क्यों, सही कहा ना, कभी किसी की याद आती है तो कभी पहली मोहब्बत मुस्कुरा देती है, कभी बचपन की गलियां याद आती हैं और कभी पुराना गीत सुनकर लगता है कि अरे ये गाना तो हमारे दिल की बात कह रहा है। वो ऐसा जमाना, एक ऐसा

जी हाँ, लगता नहीं दिल अब यहाँ। हमारा दिल हर जगह लग जाता है क्योंकि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके ही इस रेडियो कार्यक्रम में जिसका नाम है मैटिनी मेलोडी। और अभी आपने सुना चोरी चोरी फिल्म का, 1956 में रिलीज हुई ये फिल्म है, लता जी और मन डे की आवाज़ का खूबसूरत खूबसूरत सा ये नगमा। और अगला हम आप सुनाने जा रहे हैं बहुत ही खास जो गीत है। लेकिन हम दोस्तों कहते हैं ना, 1956 का जो दशक था वो हिंदी सिनेमा के लिए बेहद खास रहा। इस दौर में कहानी, संगीत, अदाकारी तीनों ने मिलकर ना फिल्मों को यादगार बनाया। कोई भी कहते हैं ना, हर दौर के गाने बहुत खूब होते हैं, उनकी एक खासियत होती है, उनकी एक सादगी होती है, लेकिन इस दौर की जो बात है वो आज तक वापस नहीं आई। इस दौर में जो सादगी थी, शब्द कम थे, गहरी मोहब्बत, खूबसूरत धुन और ऐसी आवाज़ें जिन्हें सुनकर आज भी दिल मुस्कुरा उठता है। और एक कभी कभी चुलबुले से गीत भी इतने अच्छे लगते हैं कि दिल को खुश कर देते हैं, घर बैठे बैठे हम नाचने और फुदकने लगते हैं।

जी हाँ, हम तो दिल्ली के वासी हैं भाई, तो दिल्ली की बात ही करेंगे। हाँ, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक में ये भी वो एक ऐसा दौर था जब हिंदी फिल्मों में रोमांस ने एक नया रंग लिया। बड़े पर्दे पर खूबसूरत लोकेशन, रंगीन संगीत, गीत और शानदार संगीत, और ऐसे नायक और नायिका जिनके एक मुस्कान पर पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। जी हाँ, जैसे कि देवानंद का स्टाइल, शर्मिला टैगोर की मासूमियत, राजेश खन्ना का आकर्षण और शम्मी कपूर की मस्ती, इन सब ने हिंदी सिनेमा के रोमांटिक गीतों को एक नई पहचान दी। और अब वो गीत सुनवाने जा रही हूँ जो मोहब्बत की उन खूबसूरत यादों में से एक है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते।

जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना मैटिनी मेलोडी, सुनहरे दौर का सुनहरे गाने, आपकी दोस्त होस्ट रैना तंवर के साथ। तो दोस्तों, कभी कभी किसी की बातें करते वक्त ना वक्त का पता ही नहीं चलता। जैसे इस गीत में दिल चाहता था ना कि ये वक्त यहीं ठहर जाए। देखिए, ऐसा काम करें, हमेशा कहते ना कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि लोग कहें कि भाई अभी मत जाओ छोड़कर, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो ये गीत नहीं बल्कि उस पल की भावना है जब किसी अपने के साथ बिताया वक्त खत्म होने लगता है और हमें लगता है कि यार ये वक्त खत्म कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये यही ठहर जाए। तो दोस्तों, पुराने हिंदी फिल्में जो गीत थे ना, उनकी यही खूबी थी कि सिर्फ संगीत नहीं पूरी कहानी हो जाती थी। कभी मिलन की, कभी जुदाई की, कभी दोस्ती की, तो कभी जिंदगी के छोटे छोटे सपनों को पूरा करने की कहानी। कभी लगता है कि हम अपने भाव को कैसे व्यक्त करें, हम नहीं कह पाते, लेकिन गुनगुनाकर हम अपने उस भाव को व्यक्त कर पाते हैं। तो यही तो गीत और संगीत की खूबसूरती है। और एक ऐसा गीत जिसमें अब मैं लेकर आई हूं, जिसमें प्यार भी है, शौकीन भी है, 60 के दशक का वो खास रोमांटिक अंदाज भी है।

जी हाँ, गुलाबी आंखों का ये जादू आज भी बरकरार है। अब वक्त है 70 के दशक का। जी हाँ, 70 का दशक हिंदी सिनेमा में बदलाव का दौर था। एक तरफ रोमांटिक गीतों की मिठास, दूसरी तरफ नए अंदाज का संगीत, नई कहानियां, नए सितारे जिन्होंने अपने जो जलवे थे वो सबके दिलों में छाप छोड़ देते थे। राजेश खन्ना हुए, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी, रेखा और इन कलाकारों ने इस दौर को यादगार भी बना दिया। और संगीत की दुनिया में आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पीदा और कई ऐसे महान संगीतकारों ने गीतों को एक नया दौर, नया रंग भर दिया। और कहते हैं ना, अब हर किसी को अपनी एक चाह, अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। तो आपके पास भी मौके बहुत हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें जब अपने कैसा कार्यक्रम आपको लग रहा है वो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और दोस्तों, हम सुनाते हैं अब अगला ये नगमा, बहुत ही प्यारा सा, जिसमें कहते हैं ना, जिंदगी भी है, शिकायतें भी हैं और बहुत कुछ है जो हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते।

जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिन्हें सुनकर हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही कहानी ये बयां कर रहे हैं। और कई बार ये गीत ना हमें याद दिलाते हैं कि रिश्तों में हर बात कह पाना ज़रूरी नहीं होता, कभी-कभी खामोशी भी कुछ कह देती है। तो तेरे बिना जिंदगी, ये आंधी फिल्म से लता और किशोर की आवाज़ का बेहतरीन गीत था। ये गीत हमें याद हर रिश्ते को दिलाता है, पुराने गीत हों तो खास हमें हमारी दुनिया में लौटा देते हैं, कि हमारे बीते पल को जोड़ देते हैं कल से, आज से, है ना। चलिए अब थोड़ा सा मूड बदल देते हैं, क्यों ना ऐसा गीत सुने जो जिंदगी की मस्ती सब कुछ अलग सा कर दे, है ना। सुनते हैं ये अगला नगमा। अगला नगमा है क्या, कौन

जी हाँ, हम अब गीतों को लेकर, यादों को लेकर, कुछ दिलों को छू कर, अब पुराने गीतों की इस जादू को लेकर हम अब अलविदा लेते हैं इस कार्यक्रम से। रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, नए गीत, नए याद के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक सुनिए, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एक अच्छे नागरिक बनिएगा और कुछ करो ऐसा जो दिल को दे सुकून और दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट। सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। और मुझे रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: मनफी पहलू भी हैं जिन पर गौर व खौज अजहद ज़रूरी है। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुक्तदा अंसारी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो आइए सामईन, उनकी बसीरत अफरोज तकरीर समाप्त करते हैं और जानते हैं कि एआई की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है।
1: मोहतरम सामईन कराम और मेरे अजीज साथियों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे हाल बल्कि हमारे मुस्तकबिल की सिमत का तयन भी कर रहा है। ये मौजू है मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई अहमियत और उसके मुस्बत व मनफी असरात। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इंसानी तारीख का मुताला करें तो पाएंगे कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसी ईजाद सामने आई जिसने दुनिया के निज़ाम को बदल कर रख दिया। कभी पहिए की ईजाद, कभी भाप के इंजन, कभी बिजली और फिर कंप्यूटर। लेकिन मौजूदा दौर में जो इनकलाब बरपा हो रहा है वो इन सब से कहीं ज़्यादा वसीउ और गहरा है, और वो है मसनूई ज़हानत का इनकलाब। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम मुख्तसरन एआई कहते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक अहम शाख है। एआई ऐसी मशीनों और सिस्टम्स को तैयार करने का अमल है जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और फैसले कर सकते हैं, और यह सब मुमकिन है मशीनों को मसनूई ज़हानत फराहम करके। मसनूई ज़हानत से मुराद है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स या मशीन डेवलप करने से जो इंसानी ज़हानत के अफ़आल अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं, जैसे सीखना, समझना, फैसला करना, मसला हल करना। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो एआई सिर्फ मशीन की ज़हानत नहीं बल्कि इंसानी सोच की नकल है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी तख्लीक के ज़रिया अपनी ही अकल को बाहर मुंतकिल कर रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एआई की अहमियत क्यों बढ़ रही है। आज का दौर मालूमात का दौर है जहां हर लम्हा बेशुमार डेटा पैदा हो रहा है। इस वसी डेटा को समझना, उसका तजज़िया करना और उससे फ़ायदा उठाना इंसान के लिए अकेले मुमकिन नहीं। यहाँ एआई अपनी अहमियत साबित करती है। वक्त की बचत और कारकर्दगी में इजाफा है। एआई ऐसे कामों को चंद लम्हों में मुकम्मल कर देती है जिन्हें इंसान करने में घंटों या दिनों का वक्त लगाता है। मुख्तलिफ शोबों में एआई का इस्तेमाल है। सेहत के मैदान में एआई बीमारियों की तशखीस में मदद दे रही है। तालीम में तलबा को ज़ाती नौयत की रहनुमाई फराहम कर रही है और कारोबार में फैसले करने के अमल को बेहतर बना रही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सिक्योरिटी जैसे शोबों में भी एआई का किरदार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है और एआई इस तब्दीली का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। जो कौमें और अफराद एआई को अपनाते हैं वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल जाते हैं, जबकि जो इससे दूर रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एआई पेचीदा मसाइल जैसे मौसमियाती तब्दीली, बीमारियों का फैलाव और वसाइल की कमी जैसे मसाइल के हल में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ये हमें बेहतर मंसूबा बंदी और मौसर इकदाम करने में मदद देती है। अब हम एआई के मुस्बत पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले मुस्बत असर जिंदगी में आसानी और सहूलत है। एआई ने रोज़मर्रा के कामों को नहायत सादा और तेज़ बना दिया है। आज हम स्मार्टफोन्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और खुदकार निज़ामों यानी ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिया अपने बहुत से काम चंद लम्हों में मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे कि आवाज़ के ज़रिया पैगाम भेजना, रास्ता तलाश करना या किसी सवाल का फौरी जवाब हासिल करना। ये सब एआई की बदौलत मुमकिन हुआ है। दूसरा अहम फ़ायदा सेहत के शोबे में इनकलाब और तरक्की है। एआई ने मेडिकल साइंस को एक नई जहत दी है। जदीद मशीनें और एल्गोरिथम्स बीमारियों की तशखीस में डॉक्टरों की मदद कर रही हैं। मिसाल के तौर पर कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों की इब्तदाई तशखीस एआई के ज़रिए ज़्यादा दुरुस्तगी से मुमकिन हो गई है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी और ज़ाती नोयत के इलाज ने मरीजों के इलाज को ज़्यादा मुअस्सर और महफूज बना दिया है। तीसरा मुस्बत असर तालीम के मैदान में बेहतरी है। एआई ने सीखने के तरीक़ों को जदीद और दिलचस्प बना दिया है। तलबा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट ट्यूटर्स के ज़रिया अपनी रफ्तार के मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं। AI طلبہ کی کمزوری

0: तस्वीर और खबरें बनाना बहुत आसान हो गया है। इससे न सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा सकता है बल्कि मुआशरे में बेचैनी, नफरत और इंतशार भी पैदा किया जा सकता है। एआई खुद फैसला करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके फैसले हमेशा इखलाकी या मुनसिफाना नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर एक एआई सिस्टम किसी भर्ती के अमल में इस्तेमाल हो रहा है तो बाज़ औक़ात नस्ली, सनफी या समाजी तासुब का शिकार हो सकता है, क्योंकि वह उसी डेटा से सीखता है जो उसे फराहम किया जाता है। अगर वो डेटा मुतासुब हो तो एआई के फैसले भी मुतासुब होंगे। जैसे जैसे एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंसानों के दरमियान बराह रास्त राबता कम होता जा रहा है। लोग हकीकी ताल्लुकात की बजाय डिजिटल राबतों पर ज़्यादा इन्हिसार करने लगे हैं, जिससे समाजी तन्हाई यानी सोशल आइसोलेशन में इजाफा हो रहा है। अगरचे एआई तालीमी मैदान में मददगार साबित हो रहा है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल तलबा को सुस्त और गैर संजीदा बना सकता है। तलबा खुद तहकीक करने की बजाय तैयार शुदा जवाबात पर इन्हिसार करते हैं, जिससे उनकी सीखने की सलाहियत मुतासिर होती है और वो हकीकी इल्म से महरूम रह जाते हैं। मोहतरम सामेईन, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई एक दोधारी तलवार के मानिंद है। अगर इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और एहतियात के साथ किया जाए तो यह इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसे बग़ैर ज़ाब्ते और निगरानी के इस्तेमाल किया जाए तो इसके मनफी असरात नहायत ही संगीन हो सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि एआई के इस्तेमाल के लिए वाज़ह क़वानीन और इखलाकी वसूल तैयार किए जाएं। आने वाले वक्त में खुदकार गाड़ियाँ यानी ऑटोमेटेड व्हीकल्स आम होंगी, रोबोट इंसानी काम करेंगे, तालीम मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? अगर हम मस्नूई ज़हानत को नंबर वन एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, नंबर दो इखलाकी हदूद में रखें, नंबर तीन इंसानी महारतों को नज़रअंदाज ना करें और नंबर चार इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करें, तो यह एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकती है। वरना यही टेक्नोलॉजी मसाइल का सबब भी बन सकती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी खुद ना अच्छी होती है न बुरी, बल्कि इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। एआई इंसान का मददगार है, इसका मुतबादिल नहीं। लिहाजा आइए हम सब मिलकर एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद रखें जहां एआई इंसान की खिदमत करे, ना कि उस पर हावी हो जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गुलाम मुक्तदा अंसारी साहब से ये मालूमाती तकरीर। इस दिलचस्प और कारामत तकरीर के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल। तो लीजिए समाप्त कीजिए।

उन्होंने चांद की मिट्टी में पानी की मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त किए हैं। चेक टेक्नोलॉजी भी नासा के आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद पर ताबकारी की निगरानी कर रही है। नई दरियाफ्तों के मुताबिक चांद की मिट्टी से 50 किलोग्राम से ज़्यादा पानी फी टन हासिल किया जा सकता है, जो वहाँ मुकीम इंसानों के लिए पीने और ईंधन के लिए काफ़ी होगा। ये भी बताते चले कि हासिल करदा पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तकसीम किया जा सकता है, जो सांस लेने और रॉकेट ईंधन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये तहकीक इस बात की तस्दीक करती है कि चांद पर पानी मौजूद है, जो इंसानों के लिए तवील अरसे तक वहाँ रहने और चांद को ज़मीन से बाहर बस्ती बसाने के लिए एक स्टिंग स्टोन बना सकता है। इसके अलावा भी साइंसी दुनिया में बहुत से इजादात हो रहे हैं। सामीन कराम, वक्त हमारे पास कम है, इसके लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में हम और भी आपको साइंसी मालूमात फराहम करेंगे। आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफी ने। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 में ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: KDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्वार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के

0: हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहले चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in New Delhi today, he emphasized that self-reliance in defense sector can be achieved through seamless collaboration among the defense forces, research and development institutions, and the industry. He called for greater dialogue, co-development and co-production to accelerate technology adoption and strengthen India's defense manufacturing ecosystem. Mr. Singh said that DRDO has demonstrated its capabilities in every field, from missiles to radars, combat aircrafts to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence.
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं,
3: The reforms witnessed in the defense sector over the past few years are unprecedented and several game-changing decisions have been taken. These include the positive indigenization list, the Make in India initiative, IDEX, Aditi, and the decision to allocate 25% of the defense research and development budget to the private sector.
2: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए।
1: Chief Ministers of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi today signed the Kisau Multi-Purpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil, Union Home Secretary, Union Secretary for Water Resources and the Chief Secretaries of the concerned states were also present on the occasion. The Supreme Court today asked the Centre to consider extending the tenure of retiring presiding officers and members of quasi-judicial bodies for a month or so till fresh appointments are made. The move comes after the top court observed that tribunals should not become defunct due to vacancies.

0: agencies. However, a bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohanna was urged by the Centre through Attorney General R. Venkataramani that the process for fresh appointments has been set in motion and no such pleas for ad hoc extensions should be considered. Relief and rescue operations are underway in flood-hit areas of Bihar. Floods have affected around 49 lakh people in 15 districts and 88 blocks. Chief Minister Samrat Chaudhary today transferred financial assistance to affected families. 7,000 rupees each have been transferred through DBT to 8,27,472 affected families. The Chief Minister said he has spoken to Union Home Minister Amit Shah about the visit of a central team to assess the flood situation. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Delhi, Kutch, South Interior, Karnataka, Puducherry, Kerala, Sub-Himalayan and West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya today. The weather agency has predicted thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi has greeted citizens on the occasion of Nuakhai. In a social media post, Mr. Modi said that the festival celebrates farmers, the harvest and the spirit of togetherness. The Prime Minister said that the festival will strengthen bonds of harmony and bring happiness and prosperity in the society. India's public service broadcaster Doordarshan is celebrating its 67th Foundation Day today. The public service broadcaster marked its inception in 1959 as an experimental television service under All India Radio. Over the decades, it has grown into a vital platform for information dissemination, cultural preservation and national integration, reaching nearly 100% of the population through satellite and direct-to-home services. A U.S. federal judge has temporarily blocked a new Trump administration rule, imposing stricter limits on the duration of stay for foreign students and journalists in the United States. The ruling is expected to provide relief to international students. Benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex plunged 778 points, or 1%, to close at 74,004. The Nifty shed 280 points, or 1.2%, to settle at 23,119. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. 4:10 हुए हैं और वक्त हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी का. ये पहली सूचना जो हमें मिली है न्यू कॉलोनी गुड़गांव पुलिस स्टेशन से, उससे मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है कालूराम पुत्र ठंडूराम, निवासी गाँव बिलाड़ी. इनकी उम्र 81 वर्ष है. कद 5 फुट 6 इंच, पतला शरीर लेकिन मजबूत, रंग सांवला, लंबा चेहरा. इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन न्यू कॉलोनी गुड़गांव से. इनके विषय में सही सूचना देने पर 5,000 रुपये की इनाम राशि भी घोषित की गई है. कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है उजाला. ये 16 वर्ष की हैं, कद 5 फीट. इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद से. इनके विषय में सही सूचना देने पर 5,000 रुपये की इनाम राशि रखी गई है. न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन गुड़गांव से मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है शिवम पुत्र वीरेंद्र. इनकी उम्र 24 वर्ष है. कद 4 फीट, हष्टपुष्ट, फुर्तीला, मजबूत शरीर, रंग सांवला, लंबा चेहरा. इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन न्यू कॉलोनी गुड़गांव से. और इनके विषय में सही सूचना देने पर 5,000 रुपये की इनाम राशि भी घोषित की गई है. सेक्टर 65 गुड़गांव से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है सुष्मिता, पत्नी संदीप. 31 वर्ष इनकी उम्र है. रंग गोरा, हष्टपुष्ट शरीर, कद 5 फीट 4 इंच. ये अपनी मर्जी से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इनके विषय में अगर आपको कोई सूचना मिलती है तो संपर्क कर सकते हैं एएसआई संजय कुमार से. थाना

सेक्टर 65 गुरुग्राम। पुलिस स्टेशन सेक्टर 65 गुरुग्राम से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है संजना, पुत्री संदीप, निवासी कादरपुर। ये अपनी माता के साथ घर से बिना बताए कहीं चली गई। इनकी उम्र 11 वर्ष, हष्टपुष्ट शरीर, कद 4 फीट। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना मिलती है तो संपर्क कर सकते हैं SI संजय कुमार से। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रविकांत। इनकी उम्र 21 वर्ष है, गहरा मजबूत शरीर, कद 5 फीट 2 इंच। घर से स्कूल पेपर देने के लिए गए थे। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं मंसूरपुर पुलिस स्टेशन से। सदर जनपद मुजफ्फरनगर से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है साहिमा, पुत्री मुर्तजा। इनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच। घर से बिना बताइए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं क्षेत्राधिकारी सदर जनपद मुजफ्फरनगर डॉक्टर रविशंकर से। थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है महेंद्र कुमार। इनकी उम्र तकरीबन 31 वर्ष, कद काठी छोटी, कद 5 फीट 5 इंच। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर उपनिरीक्षक रोहताश सिंह से। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 4:15 हुए हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम युव वाणी का।

0: कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं, कुछ कहानियां पर्दों पर दिखाई जाती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पहले हमारी किताबों में जन्म लेती हैं और फिर हमारी स्क्रीन्स पर आकर हमसे कहती हैं, देखो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद तुम्हारी भी है।
1: वाह भैया, क्या शुरुआत है। और सच कहूँ तो आजकल अगर कोई कहे मुझे किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो शायद हमें उससे कहना चाहिए, कोई बात नहीं, OTT खोलो, कहानी फिर भी तुम्हें मिल जाएगी।
0: क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है आर्ट एंड लिटरेचर, लेकिन थोड़ा आज के यंगस्टर्स के अंदाज में। नमस्कार साथियों, वक्त हो चला है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी का। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट हिया।
1: और मैं हूं आपका होस्ट अमोघ। आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है।
0: आज हम बात करेंगे उस कनेक्शन की जो शायद हमारी किताबों और मोबाइल स्क्रीन्स के बीच का सबसे खूबसूरत कनेक्शन है,
1: यानी
0: बुक से स्क्रीन तक।
1: क्योंकि आज

0: की जनरेशन शायद हर बार 500 पेज की नॉवल नहीं पढ़ती।
1: लेकिन उसी नॉवल पर बनी 8 एपिसोड की वेब सीरीज पूरी रात बिंज वॉच करती है।
0: और यहीं से आता है हमारा आज का सवाल, क्या आज की जनरेशन लिटरेचर से दूर हो रही है या लिटरेचर ने बस अपना मीडियम बदल लिया है?
1: और इसी सवाल का जवाब शायद हमें आज की पूरी डिस्कशन में मिलेगा, क्योंकि कहानी अगर अच्छी हो तो वो किसी एक मीडियम की मोहताज नहीं होती। तो इसी थॉट के साथ एक ऐसा गीत जो खुद किसी कविता से कम नहीं लगता, सुनने जा रहे हैं एक तारा मूवी वेकअप सिड से।

0: सुना वो गीत और सांस से जोड़ लेते हैं।
1: या अगर हम कंटेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो मुझे एक नाम जरूर याद आता है, दिव्या प्रकाश दुबे।
0: एब्सोल्युटली। और उनकी किताबों की सबसे खास बात पता है क्या है? उनकी लैंग्वेज बहुत रिलेटेबल है। वो ऐसी हिंदी लिखते हैं जो हमें किसी कठिन लिटरेचर क्लास जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रेंड सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रहा हो।
1: बिल्कुल सही कहा या। डिग्री एक तरफ, करियर दूसरी तरफ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और दिल में कोई अलग ही सपना।
0: और यही वो पॉइंट है जहाँ लिटरेचर हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी कैरेक्टर को पढ़ते हैं और उसमें अपना कंफ्यूजन देख लेते हैं, तब वो कैरेक्टर सिर्फ फिक्शनल नहीं रहता, वो हमारे लिए फेमिलियर बन जाता है।
1: एग्जैक्टली। और शायद लिटरेचर की ब्यूटी यही है कि वो हमें आंसर्स देने से पहले क्वेश्चंस पूछता है। हम सोचने लगते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किससे डरता हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है और क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ।
0: मुझे इसी फीलिंग से कुछ लाइंस याद आ रही हैं। किताब के पन्ने पलटे तो कहानी कोई और थी, लेकिन आखिरी पन्ने तक आते आते वो कहानी मेरी हो गई।
1: वाह। और शायद यही एक अच्छे लेखक की जीत है, जब कैरेक्टर फिक्शनल हो लेकिन इमोशंस रियल लगें।
0: अब आते हैं उस जगह जहां आज की जनरेशन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, स्क्रीन।
1: क्योंकि अगर कहानी अच्छी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि 800 पेजेस की कि वो 800 पेजेस की बुक में है या 8 पेजेस की 8 एपिसोड्स की सीरीज में।
0: जरूरी नहीं, क्योंकि बुक और फिल्म दो अलग मीडियम्स हैं। किताब में राइटर अपने इमेजिनेशन को स्पेस देता है, आप कैरेक्टर को मन में देखते हैं, लेकिन फिल्म में डायरेक्टर उस कैरेक्टर को एक चेहरा देता है। किताब में आप शहर को इमेजिन करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको वो शहर दिखाई देता है।
1: और इसी डिफरेंस की वजह से एडेप्टेशन सिर्फ कॉपी करना नहीं है, वो एक इंटरप्रिटेशन है।
0: एग्जैक्टली। अब जो बात है वो मेमोरीज और स्टोरी टेलिंग की है, तो ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें शहर भी है और एक कहानी का एहसास भी। तो किसी रेल सी फिल्म मसान से।

0: कभी कभी कविता सिर्फ शब्दों का सिलसिला नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर चल रही किसी अनकही बातचीत की आवाज़ बन जाती है। दोस्तों, मन से माइक्रोफोन तक के इस सेगमेंट में हम सुनेंगे सत्येंद्र शुक्ल जी को, जिनसे बातचीत की है हमारी साथी शैलजा और श्रेया ने। यह बातचीत रही कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल पर।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में मन से माइक्रोफोन तक सेगमेंट में मैं शैलजा, मेरे साथ श्रेया, आपका स्वागत करते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल, और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ल जी, जिन्हें हमने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर भी काफी सुना है। सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल, इस विषय को आप कैसे देखते हैं?
2: दरअसल जिस तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं या पहले भी होती आई हैं, उसमें जरूरी हो जाता है कि युवाओं की भूमिका को उसमें देखा जाए। कई लोगों का अपना अपना दावा है, जो छंदबद्ध वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसी ही कविता होनी चाहिए, जो मुक्त वाले हैं वो आजकल नया उन्होंने अपना संप्रदाय टाइप का चलाया हुआ है कि कविता ऐसी ही होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो मन तक पहुंचे। जैसे मैं आपको गुनाहों के देवता से एक छोटा सा वो बताऊं, सेगमेंट बताऊं कि उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि जो चित्र सुधा ने बनाया है वो चित्र 84 लाख योनियों में से किसी योनि का नहीं है, किसी जीव का नहीं है, लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि बिल्ली है तो मान लेते हैं कि बिल्ली है। तो होता क्या है कि अगर कोई चीज कविता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मतलब समझ में आ रही है, युवाओं को समझ में आ रही है, उसे प्रेरित कर रही है, भावनात्मक स्तर पर उसमें कुछ सुधार ला पा रही है, तो वो अच्छी कविता है। निश्चित तौर पर वो चलनी चाहिए। ना इधर वालों को ज्यादा अपने को रिजिड होना चाहिए, ना इधर वालों को होना चाहिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कविता के नाम पे कुछ भी कर दे आदमी।
3: सर, जैसे आपने PhD और MPhil सब अपनी कविताओं पर की है, तो ऐसी वो कौन सी पहली कविता थी जिसे सुनने या पढ़ने के बाद आपका कविताओं के प्रति आकर्षण हुआ?
2: पहली कविता मेरी माँ सुनाती थी, एक कविता सुनाती क्या थी, लोरी कह लेंगे आप उसे। माँ भैया के तेन के आठ नवा मन सोने न के, माँ भैया का कर थे घ्यू केर दोहनी उड़ेल दे थे। कि कोई बच्चा है उसको माँ दुलार रही है और सुलाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कह रही है कि मेरे भैया क्या करता है, तो कहता है कि घी का कोई धोनी है, बड़ा सा पात्र है, उसको उलाट देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भैया मतलब राजा बेटा है। और मेरी माँ सुबह उठती थी, तो मुझे कविता का संस्कार कैसे आया मैं अपना बता रहा हूँ। तो वो सुबह जब उठती

0: थे तो नमामि शमीसान जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा उसका पाठ करती थी, तो वहां से सुन के मुझे पहली बार कविता के लिए प्रेरणा मिली। इसके लिए मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब। और दूसरी बात, हमारे यहाँ आल्हा का पाठ होता है, आल्हा गायन वाले लोग आते हैं, तो उनसे कुछ प्रेरणा मिली कि भाई कविता ऐसी होती है। अच्छा, एक दिन ये भी हुआ कि मैं ये बताना भी चाहता हूँ आपके जो श्रोता है उनको कि होता क्या है कि कविता कितनी महान होती है। जैसा कि आपने ओपनिंग में कहा कि भाई कविता से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वीर लड़ाका रानियां नहीं हुई। रानी चेन्नम्मा हुई, रानी दुर्गावती हुई, अहिल्याबाई हुई, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ऐसी रानियां आई जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, प्रयत्न किया और बहुत मार्गदर्शन किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन सब लोगों के बारे में जब हम किसी से पूछते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम पता चले या कम, लेकिन जब हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो हमें तुरंत से वो कविता याद आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कविताओं का ये योगदान होता है कि अगर कोई एक कविता ढंग की निकल पड़ी, आप देखिए कि वो युगों युगों तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां से थोड़ी प्रेरणा मिली और फिर मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला ऐसा शोधार्थी हूँ हिंदी विभाग का जिसने आल्हा पर पीएचडी की है, आल्हा के गायन पर, आल्हा की वाचिक परंपरा पर। तो मुझे मतलब गया था तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि भाई आप इसमें क्या करेंगे, ये तो क्या ही है, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसके बारे में चीजें नहीं है। मैं गाँव गाँव गया, मैं एक कजली महोत्सव होता है वहां गया तो वो मुझे वहां जाकर के पता चला। मैं घूम घूम के एक एक व्यक्ति से आल्हा सुना। सीलू सिंह राजपूत एक युवा उस समय आपकी उम्र की गायिका हुआ करती थी जो जिन्होंने शुरू ही किया था, उनका इंटरव्यू मैंने लिया, संजो बघेल का इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का, और मैंने कोशिश की तो वो मैं कर पाया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कविता को बहुत ऐसे ऐसे जानते हो कि भाई डॉक्यूमेंटेशन पहले से हो, चीजें बनी बनाई हो तो ही हम कर पाएंगे। हम अपने आप भी जाकर के ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर हमारी रुचि है तो चीजें मिल जाती।
1: सर, जैसा कि अभी आपने आल्हा गायन की बात की, तो आकाशवाणी का जो लोकगीत वाला कार्यक्रम है उसमें आल्हा का प्रसारण अक्सर होता है। सर, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कविता की आपने बात की, किसी भी कविता का युवाओं के मध्य प्रासंगिक होना ज्यादा आवश्यक है कि लोकप्रिय होना?
0: देखिए, लोकप्रिय तो कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जिनका युवाओं से कोई लेना देना भी नहीं होता है। कई ऐसी चीजें हैं हमने बीच बीच में देखी जिनका कोई खास ऐसा योगदान नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात यह भी है कि लोकप्रियता को आप नकार नहीं सकते। जैसे आज जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें आप लोकप्रियता को नकार नहीं सकते कभी भी। लेकिन हाँ, प्रासंगिक भी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि जैसे आप वायवीय बातें करें, कि ऐसी बातें करें जिनका वास्तविक धरातल से कोई लेना देना ही ना हो, है ना। ऐसी बातें भी अगर आप कविता के माध्यम से करते हो तो वो गलत है। लेकिन ये भी एक बात है कि कोई व्यक्ति यदि लोकप्रिय है, या उसकी कहन शैली लोकप्रिय है, या उसकी कविताएं छोटी छोटी ही सही लेकिन बेहतर हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक सर्वेश तिवारी श्रीमुख नाम के एक राइटर हैं, तो उनकी एक छोटी सी कविता है जिसे उन्होंने बच्चों के लिए लिखी, कि मतलब बच्चों को संदेश देने के लिए, वो भी एक शिक्षक हैं। तो उन्होंने लिखा कि जीवन में रामत्व तो उतारो, धर्म यही है, हर बाली को छुप कर मारो, धर्म यही है, और नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुर्योधन की जंघा फाड़ो, धर्म यही है। अर्थात जैसे बच्चा कहीं पे भी द्वि मन से ना रहे, उसको ऐसा ना लगे कि ये तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा हो जाए, बहुत डरा हुआ भयभीत व्यक्ति भी समाज के लिए खतरा है। तो युवा को चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब वो कविता को उस तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से उसके बुजुर्गों ने पढ़ा है, और फिर उसको नया नवीन पैदा करेगा कुछ उसमें। जैसे अगर आप हम बात करें कि भाई आचार्य शुक्ल ने जब कविता की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, और इसी रस दशा को साधने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। धूमिल ने कहा कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अगर और पीछे चले जाएं हम तो उन्होंने कहा, काव्य शास्त्री विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, हर वह वाक्य काव्य है जो रसपूर्ण है। तो रस तो किसी चीज में हो सकता है ना, लेकिन हमें क्या रहता है कि हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं, जिस तरह से हम कह रहे हैं, उस तरीके से चीजों को ठीक किया जाए, उसी तरीके से कविता को समझा जाए। यानी हमारी वाली कुंजी लेके नोट लगा लगा के पढ़ोगे तो कविता ठीक, अगर आप अपने हिसाब से कहोगे तो बेकार। तो कविता एक खुराक है, और वो खुराक अगर सही तरीके से नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ग्लानी आपके अंदर आएगी, कुंठा आपके अंदर आएगी, एक ऐसे क्षणभंगुरता आपके अंदर आ जाएगी, और आप जिजीविषा के साथ, विजगीषा के साथ जीवन जीना बंद कर देंगे।
1: जी सर, जैसे आपने युवाओं की समझ की बात की कविता को लेकर, तो सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, तो कविता उस परिप्रेक्ष्य में एक युवा को कैसे उस परिस्थिति से, उस कुंठा से मुक्त कर सकती है?
0: विश्वनाथ त्रिपाठी सर का इंटरव्यू लेने गया था मैं, आपसे थोड़ा बड़ा था, तो उन्होंने मुझसे जब इंटरव्यू बंद हो गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये बताओ सत्येंद्र, लोग गरीबी गरीबी चिल्ला रहे हैं, पिछले कितने दिन पहले तुमने किसी की बीमारी फटी हुई देखी थी? एक हम लोगों का टाइम था जब लोगों के पास चप्पल जूता नहीं होता था। आपको ये क्यों लगता है कि अभी वाले युवा के पास ज्यादा कुंठा है?

0: ज्यादा परेशानी है, ज्यादा दिक्कतें हैं, और आपको ये क्यों लगता है कि हमारे दरमियान, हमारे टाइम पे ये नहीं थी? तो इस पे विचार करिएगा आप भी, और जो श्रोता है वो भी विचार करें कि आपको यही क्यों लगता है कि हमारे टाइम पे ही बहुत दिक्कतें। उन दिक्कतों से निकलने के लिए कविता एक सहारा है, आप समझे। मैं अपने स्टूडेंट की कविता आपको सुनाता हूँ। मेरा स्टूडेंट है अपूर्व गौरव विक्रम शाह, उसकी कविता है। उन्होंने लिखा कि बिन परवाह, ये सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए है ये, कि बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, कि बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। आपके पास चीजें होनी चाहिए, आपको ऐसी चीजें पढ़ना चाहिए। तो कोई, जैसे किसी को ये लगता है कि भाई हम कुछ नहीं कर, जैसे आप आंदोलन में आपने देखा, या जब बहुत सारी चीजें आंदोलन इत्यादि को गति देने के लिए, या इस तरीके की चीजों को गति देने के लिए भी कविता काम आती है, जीवन जीने के लिए भी कविता काम आती है। आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं
1: जी
0: तो आपको कहीं ना कहीं कोई कहानी, कोई कविता याद आती है कि ऐसा पिछले के साथ भी हुआ था। रामायण में लिखा महर्षि वाल्मीकि जी ने, आपकी असंभवम हेम मृगस्य जन्मा, कि ऐसा मुश्किल है, असंभव है कि सोने का मृग हो, लेकिन तथापि रामो लुलुभो मृगाया, कि राम जैसा व्यक्ति भी उसके पीछे लोलुप हो गया, भाग गया, ऐसा लिखा है उन्होंने। मतलब ये उनकी भाषा है, क्यों कह रहे हैं कि तथापि रामो लुलुभो मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो पिपुंसा मलिना भवंती, कि ऐसा मैंने देखा है कि प्रायः जब किसी की विपत्ति आने वाली होती है तो उसकी बुद्धि हर जाती है। फिर उसी को बहुत सालों के बाद दिनकर जी ने लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कविता ऐसे जुड़ती चली जाती है। किसी युवा को अगर ये वहम है कि उसने बहुत नई बात कह दी है, उसके ऊपर कोई बहुत नई समस्या पड़ गई है, तो ये झूठ है, ये भ्रामक है। जैसे मैं नई में बताऊं आपको, एक बुजुर्ग हैं, 50 साल के शायर हैं, उनका एक शेर है, लिखा उन्होंने कि सूरत बुलंद हो गई है फोटोशॉप से, अब सीरत के वास्ते कोई ऐप तलाशिए। उन्हीं का एक शेर है कि उन्होंने लिखा कि रात वो दुश्मनों में बैठा था, जाने क्या क्या सिखा दिया होगा। कहता रात वो दुश्मनों में बैठा था, जाने क्या क्या सिखा दिया होगा, डीपी व्हाट्सएप पे अब नहीं दिखती, डीपी व्हाट्सएप पे अब नहीं दिखती, उसने नंबर उड़ा दिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि युवा ही युवा मन की बात कर सकता है। एक कवित्री हैं, उनकी कविता एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, आप उसे रिलेट कर पाएंगे, कि उन्होंने लिखा कि वो फूल जिससे टकरा कर मर गई तितली, कि वो फूल जिससे टकरा कर मर गई तितली, वो फूल दरअसल दीवार पर बना हुआ था। कितनी गंभीर बात है। मेरा निवेदन इतना ही है कि कविता ऐसी हो जो आपको दिशा देने वाली हो, गति देने वाली हो, अच्छी हो, बेहतर हो।
1: सर, इस वक्त हमें लाखों करोड़ों श्रोता सुन रहे हैं, तो उन श्रोताओं के मन में ये इच्छा जागी होगी इस बातचीत को सुनने के बाद कि वो कविता के अथाह समुद्र में डुबकी मारें, तो वो शुरू कहाँ से करें?
0: जैसे दो बातें हैं, जैसे कुछ लोग मतलब ऐसा चाहते हैं कि लिख ही लें, तो लिखने तो जॉन इलिया ने एक जगह कहा था, जॉन लिया सर ने, कि उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए था, बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए था, मगर अफसोस है वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप पढ़ें, पहली बात, और फिर जब लगे कि कुछ विचार ऐसे हैं, जो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कविता जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, जैसे कि मतलब धूमिल ने जी ने कहा कि भाई कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कविता दोषी के कटघरे में खड़े हुए निर्दोष व्यक्ति का हलफनामा है, यानी कविता पवित्र सी चीज है। ज्ञान दादा ज्ञान प्रकाश आकुल एक कवि हैं, उनकी एक कविता है कि उन्होंने लिखा कि सत्य सनातन समानता का ऐसा नाम नहीं हो पाया, किंतु राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी मर्यादा से, किसने जबरदस्ती नहीं, कहता किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब सबरी की पर्ण कुटी में अवधि में बोले रघुराई, कि हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। वही ज्ञान प्रकाश दादा फिर लिखते हैं कि जादू टोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। आप समझिए कि जैसे कविता के कई बिंदु हैं, कई प्रस्थान बिंदु हैं, है ना। जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, जो संस्कृत के आखिरी जो है आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, कि हर वह शब्द काव्य है जो रमणीयता को प्रतिपादित करता है, कुंठा को नहीं, निर्लज्जता को नहीं, फुहड़ता को नहीं, ठीक, भदेशता को नहीं, है ना, कि कौतूहल डालने के चक्कर में आप यौनिकता को जबरदस्ती स्थान देना, जबरदस्ती कुंठा को, ग्लानि को, इन सब चीजों को स्थान देना नहीं। मेरा सबसे मतलब आग्रह रहेगा कि पहले कुछ पढ़ लें, है ना, और पढ़ के कुछ अच्छा सा पढ़ें, फिर उसमें से लगे कि कुछ इससे बेहतर लिख सकते हैं, इससे कुछ, वही जो किसी शायर ने कहा ना कि मतलब या तो आप ऐसी बात करिए जो खामोशी से अच्छी हो, नहीं तो खामोश भी रह सकते हैं, दूसरों की कविताएं पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने लिखा है, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, फिर अपने जिस दिन कभी मन करे कि इससे बेहतर कुछ मेरे अंदर आया है विचार, तो जरूर लिखें, खूब लिखें।
2: सर, इस खास बातचीत कविता के बहाने युवा मन की पड़ताल में आपसे वाकई

0: के बारे में हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिसनर्स तक कविता के इस खूबसूरत अंदाज को पहुंचाने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो चलिए, ये इंटरव्यू सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना, दरखास्त फ्रॉम शिवाय मूवी।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, वीकली सेगमेंट। आर्ट एंड लिटरेचर का कनेक्शन सिर्फ बुक्स और सिनेमा तक सीमित नहीं है।
1: एब्सोल्युटली अमोग, लिटरेचर से थिएटर बनता है, थिएटर से सिनेमा इंस्पायर होता है, पोइट्री म्यूजिक में बदल जाती है, फोकलोर एनिमेशन और विजुअल आर्ट कन्वर्ट हो जाता है, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स और फिल्म्स और डिजिटल आर्ट भी स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है।
0: एक कहानी कितने रूप ले सकती है? बुक में पढ़िए, प्ले में देखिए, फिल्म में महसूस कीजिए, सॉन्ग में सुनिए, पेंटिंग में देखिए, या पॉडकास्ट में आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए।
1: स्टोरी वही है लेकिन एक्सपीरियंस अलग है।
0: और यही आर्ट की सबसे बड़ी

0: ताकत है। एक ही भावना अलग अलग लोगों तक अलग अलग तरीके से पहुंच सकती है। किसी के लिए एक कविता सबसे पावरफुल होगी, किसी के लिए वही भावना एक सॉन्ग में मिलेगी, किसी के लिए एक पेंटिंग में और किसी के लिए एक फिल्म में।
1: इसलिए आर्ट की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आर्ट आखिरकार एक्सप्रेशन है और लिटरेचर उस एक्सप्रेशन को शब्दों की दुनिया देता है।
0: और जब दोनों साथ आते हैं तो स्टोरी टेलिंग और भी पावरफुल हो जाती है।
1: और अब इसी खूबसूरत कनेक्शन पर सुनते हैं हमारा अगला गीत, और अब एक ऐसा गीत जिसमें पोइट्री और म्यूजिक दोनों का खूबसूरत मेल है, मोह मोह के धागे फ्रॉम फिल्म दम लगा के हाइशा।

0: और अब वक्त हो चला है हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट का, क्विक बस, भारत में कला और संस्कृति का उत्सव। पहली खबर कला और संस्कृति से जुड़ी है। दिल्ली में चल रहा ब्रिक्स बाजार भारत समेत ब्रिक्स देशों की ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और आर्टिस्टिक हेरिटेज को एक मंच पर ला रहा है। यहाँ अलग अलग देशों के कलाकार अपनी पारंपरिक कला और हैंडमेड क्राफ्ट्स प्रदर्शित कर रहे हैं।
1: यानी कला हमारी विरासत नहीं बल्कि अलग अलग देशों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत भाषा भी है।
0: भारत में इनोवेशन की नई तस्वीर। अब बात इनोवेशन की। दिल्ली में आयोजित भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन में भारतीय रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स की कई नई टेक्नोलॉजी शोकेस की जा रही हैं, जिनमें एआई बेस्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, मरीन रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जैसी इनोवेशंस शामिल हैं।
1: यानी भारत की क्रिएटिविटी सिर्फ कला और साहित्य तक सीमित नहीं, हमारे यंग इनोवेटर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी नई कहानियां लिख रहे हैं।
0: भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी। और तीसरी खबर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़ी है। युगे युगीन भारत म्यूजियम के विकास के तहत हाल ही में शिल्पकार समागम और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें आर्टिशंस, डिजाइनर्स, म्यूजियम प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इससे भारत की कला, क्राफ्ट और म्यूजियम इकोसिस्टम को नए अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया गया।
1: तो आज की क्विक बस का मैसेज बिल्कुल सिंपल है। भारत में एजुकेशन हो, इनोवेशन हो या आर्ट एंड लिटरेचर, हर क्षेत्र में नई पॉसिबिलिटीज और नई कहानियाँ बन रही हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जिसका नाम है व्हाट इज टुडे इन हिस्ट्री। आज सबसे पहले बात उस तारीख की जिस दिन हम आज की ये यात्रा कर रहे हैं, 15 सितंबर। अगर भारतीय साहित्य की बात करें तो 15 सितंबर 1876 को महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। देवदास, श्रीकांत जैसी उनकी रचनाओं ने भारतीय साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई।
0: उसी दिन 1905 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म हुआ था। वे विशेष रूप से अपने नाटकों और साहित्यिक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं।
1: और 15 सितंबर 1927 को हिंदी के कवि और लेखक सरेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ। वे नई कविता और प्रोगधर्मी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण आवाजों में गिने जाते हैं।
0: और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हमारा अगला गाना, हम बढ़ेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: दोस्तों, उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
1: अपना सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें yuvvani@gmail.com पर भेजना ना भूलें।
0: कल फिर मिलेंगे इसी समय युववाणी के एक नए कार्यक्रम के साथ।
1: तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
0: मैं हूं अमोक।
1: मैं हूं हिया।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति सी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चलदल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से

गूंज रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उल्लेखनीय है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक

0: यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ये समझौता हुआ। इससे पहले इस वर्ष जून में गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The External Affairs Ministry has said that several issues came during the discussion between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit in the national capital. During the weekly media briefing in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during their talks, the Prime Minister underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
2: A bilateral meeting took place between Prime Minister and President Xi on the sidelines of the 18th summit. Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
1: In reply to a question on the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said that targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India.
2: This attack happened off the coast of Oman. It was a Panama flagged ship on which we had 14 Indian nationals or seafarers, of which 13 have been rescued, and we deeply thank the Omani authorities for rescuing our nationals. One Indian national is missing. Search and rescue operations continue with the help of the Omani authorities, and our embassy is in close touch. Targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to us. We also urge that free and safe navigation and flow of commerce through international waterways in the region be restored at the earliest.
1: When asked about announcing a reward of 70 lakh Pakistani rupee by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, Mr. Jaiswal said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new, as India has seen similar gimmicks in the past as well. Mr. Jaiswal said that Pakistan must take concrete action rather than making announcements that are ultimately of no consequence. Defence Minister Rajnath Singh today said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defence sector but moves towards self-reliance. Mr. Singh emphasised that self-reliance in defence sector can be achieved through seamless collaboration among the defence forces, research and development institutions and the industry. The Defence Minister was addressing the DRDO Industry Synergy Meet, Vimarsh 2026, in New Delhi today. Chief ministers of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, and Delhi today signed

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी में बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं का और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: लोक संगीत यानी कि हमारी मिट्टी की आवाज़, हमारे गांव गांव की धुन और हमारी लोक परंपराओं की पहचान। लोग केवल गीत नहीं होते बल्कि इनसे जुड़ी होती हैं हमारी यादें, हमारे त्यौहार, हमारी परंपराएं और हमारे जीवन की छोटी बड़ी कहानियाँ।
2: बिल्कुल सही कहा शीतल बहन आपने, क्योंकि कहीं खेतों में काम करते हुए गीत गाए जाते हैं तो कहीं शादी ब्याह त्यौहार और दूसरे जो मांगलिक कार्य होते हैं उसमें लोक गीतों के बिना ऐसा लगता है कि जो हमारा कार्यक्रम है अधूरा है।
0: बिल्कुल, और लोक संगीत सबसे खास बात यह है लोक संगीत की कि इसे किसी भी मंच या किसी भी एक वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आगे पहुंचाता है और बदलते समय के साथ भी अपनी पहचान बनाए हुए। ये बात अलग है आरती बहन की, थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं जब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात हो रही है, आगे बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन जो इसकी खुद की अपनी पहचान है, खुद की अपनी जो ये बनाए हुए है, वो सब आगे हमारी विरासत हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को देता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और तो चलिए लोक रंजनी कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से लोकगीत के साथ। वीणा ढिल्लोर और उनकी सखियों की आवाज़ में ये एक लोकगीत आपको सुनवाते हैं,
0: आइए सुनते हैं।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वीणा ढिल्लोर और सखियों से ये लोकगीत। और देखिए, लोकगीतों में भाषा भले ही अलग हो लेकिन भावनाएं बहुत आसानी से दिल तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि लोक संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोक संगीत के अपने अपने रंग हैं। वहीं लोकगीतों में प्रकृति दिखाई देती है, कहीं प्रेम और विरह की भावनाएं तो कहीं त्योहारों और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं रेणु बर्मन की आवाज़ में अगला लोकगीत।

0: सुधा, अभी आपने सुना रेनू बर्वन से ये एक लोकगीत। और चलिए अब आपको करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं राजेश कुमार अट्टा से अगला लोकगीत। जी
1: और सोच फिकर में और बैठे

0: साथ श्रोताओं, आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विजेता चतुर्वेदी।
2: स्वागत है सभी श्रोताओं का और नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरा।
1: और विजेता, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एशियन गेम्स में जो भारतीय कंटेंजेंट गए हैं और अलग अलग खेलों के बहुत सारे अलग अलग विधाओं में भारतीय कंटेंजेंट भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए गए हैं और आज हम बात करेंगे उन खेलों की जिसमें बहुत सारे पदक जीतने की उम्मीद है और वो खेल हैं बॉक्सिंग, कराटे, कुरुश और मिक्स्ड मार्शल आर्ट। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट विजेता मैं हम बता दें आपको कि पहली बार ये खेल इंट्रोड्यूस हुआ है एशियन गेम्स में और बहुत सारे ऐसे देश हैं, खास तौर से एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट बहुत लोकप्रिय खेल है और बहुत लंबे समय से वहां पर वो खेला जा रहा है। और इस बार क्या
2: डेब्यू करने वाला है
1: जी,
2: और उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ तो हमारी झोली में, भारत की झोली में आकर जरूर गिरेगा। तो चलिए इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है, उसको सुन लेते हैं।

आईची नगोआ, जहां होने वाले एशियन गेम्स की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और जहां कुछ ही दिनों में एशिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग बैटल्स में से बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। यहां स्टेडियम्स तैयार हैं, एथलीट्स भी तैयार हैं और भारत की नजर है उन मुकाबलों पर जहां एक पंच, एक किक, एक थ्रो या कुछ सेकंड्स की ही सही स्ट्रेटजी पूरे देश को मेडल की खुशी दे सकती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पहुंचेंगे उन चार कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बीच, बॉक्सिंग, क्रैश, कराटे और मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA। चारों खेलों की कहानी थोड़ी अलग है। एक तरफ बॉक्सिंग में भारत की शानदार एशियन गेम्स हिस्ट्री है, तो क्रैश में भारत पहले ही एशियन गेम्स मेडल जीत

चुका है और अब कमबैक करने की तैयारी है। कराची में भारत की स्क्वाड छोटी है, लेकिन एक नाम ने हाल ही में पूरे एशिया में अपनी ताकत दिखाई है और फिर है MMA, एक ऐसा स्पोर्ट जो पहली बार एशियन गेम्स में मेडल स्पोर्ट के रूप में अपनी शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि भारत की टीम में कौन कौन है, सवाल है कौन तैयार है मेडल के लिए। किस एथलीट का रिसेंट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा उम्मीद जगा रहा है, इसके सामने एशिया के सबसे टफ ओपोनेंट होंगे और क्या इंडिया इन चारों कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पोडियम तक अपनी पहुंच बना पाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात उस खेल की करते हैं जहां सिर्फ एक पंच मुकाबले का रुख बदल सकता है। जी हां, बॉक्सिंग भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। आईजी नगोवा 2026 में एशियन गेम्स के 20वें संस्करण में बॉक्सिंग के मुकाबले निशियो जिम्नेजियम में होंगे। भारत इस बार 11 बॉक्सर्स के साथ उतर रहा है। मेंस टीम की अगर बात करें तो 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 60 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 प्लस किलोग्राम में नरेंद्र बेरवाल भारत की अगुवाई करेंगे। वुमेन्स टीम की अगर बात करें तो 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 60 किलोग्राम में प्रिया घनघास और 65 किलोग्राम में प्रवीण हुड्डा, साथ ही 75 किलोग्राम में अपना दमखम दिखाएंगी लवलीना बोरागेन। अब अगर पिछले एशियन गेम्स यानी कि हांगझाऊ 2023 की बात करें तो बॉक्सिंग में भारत ने 5 मेडल जीते थे। लवलीना बोरागेन का सिल्वर और निखत जरीन, प्रीति पवार, प्रवीण हुड्डा तथा नरेंद्र बेरवाल के ब्रोंज मेडल्स हमारे भारत के नाम पर हैं। यानी कि पिछले गेम्स का अनुभव इस टीम के पास है और इस बार एक खास बात ये है कि इंडिया के पास सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर ही नहीं बल्कि कई ऐसे एथलीट्स हैं जो हाल ही के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे प्रीति पवार का ही उदाहरण सबसे बड़ा है। हांगझाऊ में ब्रॉन्ज जीतने वाली प्रीति अब 54 किलोग्राम कैटेगरी में उतरेंगी। उनके सामने इस बार चाइनीज तैपे की हुआंग जियो वेन और नॉर्थ कोरिया की पैंग चोल मी और कजाकिस्तान की नजीम कजाइबे जैसे बेहद मजबूत ओपोनेंट हैं। प्रीति ने इन खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी पर भी काम किया है, खासकर काउंटर्स, बॉडी स्विच पंचेस और अपर कट्स पर। दूसरी तरफ लवलीना बोरागेन का एक्सपीरियंस भारत के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है और नजर रहेगी पुरुष वर्ग में नरेंद्र बेरवाल पर। वो पिछले एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले अकेले इंडियन मेल बॉक्सर थे और इस बार भी हैवीवेट कैटेगरी में भारत की बड़ी उम्मीद बने हुए हैं। बॉक्सिंग भारत के लिए एक मजबूत मेडल अपॉर्चुनिटी है। महिलाओं से खास तौर पर ज्यादा उम्मीद है, लेकिन पुरुषों में भी जादूमणि, सचिन, अंकुश और नरेंद्र जैसे बॉक्सर सरप्राइज दे सकते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं अब अगले गेम की यानी कि कुराश की। थ्रो की इस कला में भारत की वापसी कितनी मजबूत होगी? अगर आपने कुराश पहले नहीं देखा है तो इसे केवल रेसलिंग समझने की गलती मत कीजिएगा। कुराश सेंट्रल एशिया की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जिसमें मुख्य लक्ष्य ओपोनेंट को स्टैंडिंग थ्रो के जरिए जमीन पर गिराना होता है। इसमें ग्राउंड फाइटिंग, चोक होल्ड और ज्वाइंट लॉक्स अलाउड नहीं है। यानी बैलेंस, ग्रिप, टाइमिंग और एक्सप्लोसिव थ्रोइंग टेक्निक सबसे महत्वपूर्ण है। आईची नगोवा में 27 से 29 सितंबर तक इसके मुकाबले होंगे। भारत की करंट स्क्वाड की बात करें तो इसमें 6 एथलीट्स हैं। पुरुष वर्ग में विपिन कुमार 66 किलोग्राम कैटेगरी में, विशाल 90 प्लस में और यश कुमार 90 प्लस में। वहीं महिला स्क्वाड की अगर बात करें तो भारती 57 किलोग्राम कैटेगरी में, संगीता भलारा 57 किलोग्राम कैटेगरी में और पिंकी चौहान 78 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कुराश की सबसे बड़ी बात है कि भारत की इस खेल में एशियन गेम्स हिस्ट्री मौजूद है। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भारत ने कुराश में एक सिल्वर और एक ब्रोंज यानी कुल 2 मेडल जीते थे। पिंकी बलारा ने वुमेन्स 52 किलोग्राम में सिल्वर जीता था और माला प्रभा जाधव ने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था, लेकिन हांगझाऊ में इंडिया मेडल नहीं जीत सका। इसलिए 2026 का लक्ष्य साफ है, 2018 वाली मेडल विनिंग परफॉर्मेंस की वापसी। प्रिपरेशन के मामले में SAI ने काफी पहले कुराश, कराटे, जियो जित्सु जैसे मार्शल आर्ट्स के लिए अलग प्रिपरेशन और सिलेक्शन कमेटीज बनाई थी। कुराश के लिए नेशनल कोचिंग कैंप भी आयोजित किया गया था।

0: लेकिन यहाँ कंपटीशन बेहद टफ रहेगा क्योंकि कुरैश में सेंट्रल एशियन कंट्रीज खासकर उज्बेकिस्तान और आसपास के देशों की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है। इसलिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा स्पीड, ग्रिप कंट्रोल और सही टाइमिंग। अगर इंडियन एथलीट्स ओपनिंग राउंड में कॉन्फिडेंस पकड़ लेते हैं तो 6 मेंबर स्क्वाड में से किसी एक के पोडियम तक पहुंचने की संभावना काफी बढ़ सकती है। आईजी नगोवा में कराटे के मुकाबले 20 से 23 सितंबर के बीच शेड्यूल्ड हैं। यहां काटा और कुमाइट जैसे इवेंट्स होंगे, लेकिन भारत की टीम इस बार बहुत छोटी है। भारत के 2 एथलीट्स चेतन भट्ट मेंस क्यूमाइट 84 किलोग्राम और अलीशा चौधरी वुमेन्स क्यूमाइट 55 किलोग्राम। अब यहाँ कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अलीशा चौधरी ने जून 2026 में बाली इंडोनेशिया में 22वें AKF सीनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप में वुमेन्स के 55 किलोग्राम की कैटेगरी में क्यूमाइट का गोल्ड मेडल जीता था और ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि ये एशियन सीनियर कराटे चैंपियनशिप में वुमेन्स क्यूमाइट गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी एशियन गेम्स में कुछ महीने पहले ही अलीशा ने एशिया के हाईएस्ट लेवल पर अपनी क्षमता साबित की। इससे उनका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बहुत ऊंचा होगा। चेतन भट्ट भी मेंस के 84 किलोग्राम क्यूमाइट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। कराटे में इंडिया की एशियन गेम्स मेडल हिस्ट्री बॉक्सिंग जितनी मजबूत तो नहीं है, इसलिए इस बार सबसे बड़ा फोकस होगा कि छोटी स्क्वाड में से कम एक एथलीट पोडियम तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस स्पोर्ट की जिसकी कहानी सबसे ज्यादा अलग है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि MMA पहली बार एशियन गेम्स में मेडल स्पोर्ट के रूप में डेब्यू कर रहा है। आईजी नगोवा में MMA के मुकाबले 20 से 22 सितंबर तक होंगे। आईजी नगोवा में ट्रेडिशनल और मॉडर्न MMA फॉर्मेट शामिल है। भारत की इनॉग्रल MMA स्क्वाड में 2 एथलीट हैं, वरुण सान्याल मेंस ट्रेडिशनल MMA 77 किलोग्राम और सुचिका तारियाल हुडा वुमेन्स ट्रेडिशनल MMA 60 किलोग्राम। और इस विषय पर हमने बात की MMA के जाने माने कोच विशाल सहगल से।
1: पहली बात तो हिस्ट्री हैज बीन मेड, दूसरा अभी जो है 6 कैटेगरीज हैं जो मेडल स्पोर्ट मेडल में अलाउड होंगी, उसमें से हमारे पास एक मेल एथलीट है और एक फीमेल एथलीट है। दो फॉर्मेशंस हैं, एक होता है ट्रेडिशनल MMA और एक होता है मॉडर्न MMA। जो ट्रेडिशनल MMA है वो आप घी पहन के पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे जो एथलीट्स हैं वरुण सान्याल और सुचिका तरियाल, ये दोनों ट्रेडिशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वरुण 77 kg में है और सुचिका 60 kg में। तो कंपटीशन इज वेरी टफ सर, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स एमेच्योर में पार्टिसिपेट करते हैं। जो दोनों हमारे एथलीट्स हैं वो एमेच्योर्स हैं, बट दे कम विद अ गुड एक्सपीरियंस। जो वरुण है वो 2 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था चाइना में एशियन गेम्स में रिसेंटली टू क्वालिफाई। और जो सुचिका है उनका कुराश का और जूडो का बैकग्राउंड है, शी आल्सो क्वालिफाइड सिमिलरली। जो इंडिया का जो फेडरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इस कंटिंजेंट का, उसका नाम है मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर निखिल कुंदर, वो इस कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे 3 सीनियर ऑफिशियल भी जा रहे हैं जो वहां पे ऑफिशिएटिंग करेंगे, रेफरिंग एंड जजिंग। उनका नाम है जितेंद्र खारे, प्रचिति नागपुरकर और परीक्षा जावेरी। तो ये हम सिर्फ ऑब्वियसली एथलीट्स नहीं जा रहे, बट बहुत खुशी की बात है कि सीनियर लेवल पे हाई लेवल ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं हमारे। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जो एशियन गेम्स का फॉर्मेट है और जो रेगुलर एमेच्योर और रेगुलर प्रो का फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो जो रेगुलर MMA प्रो होता है या एमेच्योर होता है वो एक केज के अंदर या एक रिंग के अंदर लड़ा जाता है। अंडर 18 में वो मैट्स पे लड़ते हैं। जो एशियन फॉर्मेट है वो मैट्स के ऊपर लड़ा जाएगा। जैसे अगर आप

0: रेसलिंग देखें या वुशु देखें, बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर इट इज फॉट. तो पॉइंट सिस्टम फॉर एशियंस, इट डिपेंड्स कि आप कितने हार्ड स्ट्राइक करें, आप किसी को टेक डाउन लेते हैं, किसी को नीचे गिराते हैं और कंट्रोल करते हैं फॉर लेट्स से 3 सेकंड्स, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी पोजीशन को कैसे प्रोग्रेस करते हैं. आप किसी को टेक्निकली मैट्स के जो एरिया होता है उससे बाहर गिराते हैं. तो ऑल दीज अक्यूमुलेशंस होती हैं जिसके हिसाब से आप अपना पॉइंट्स बनाते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली यू विन द मैच. सर मेरे हिसाब से तो एब्सोल्युटली है, वरुण जो है उनका ग्रैपलिंग का बेस है, सबमिशन ग्रैपलिंग जिसको कहते हैं, ब्रेजिलियन जुजुत्सु भी कहते हैं, एंड दो टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं बैक टू बैक, प्लस चाइना में ब्रॉन्ज जीत के आए हैं. जो सुचिका है 60 kg में पार्टिसिपेट कर रही है ट्रेडिशनल में, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कुराश में और जूडो में बैकग्राउंड है और मेडल्स भी हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो उम्मीद तो पूरी है सर, गॉड विलिंग नो इंजरी नो अदर इश्यूज, यू नो विद ऑल द ब्लेसिंग, मेरे हिसाब से तो वी कैन सर्टेनली मेडल. इंडिया में एमएमए बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है, हर फॉर्मेट में बढ़ रहा है. इंडिया के एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं. अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ही इंटरनेशनल एथलीट्स को इंडियन एथलीट्स ने हराया है. तो एमएमए को आई होप सब सपोर्ट करें. और आपने उस टाइम लिया और आपने ये इंफॉर्मेशन बाहर सबको दी, उसके लिए थैंक यू सो मच सर. जय हिंद.
1: वरुण सानियल की 2025 में उन्होंने एमएमए एसएफआई नेशनल्स जीते और जनवरी 2026 में चाइना में हुए एशियन एमएमए चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. यही ब्रॉन्ज उनके एशियन लेवल रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण रहा. दूसरी तरफ हैं सुचिका तरियाल हुडा. जनवरी 2026 के एशियन एमएमए चैंपियनशिप में उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था. यानी इंडिया की एमएमए टीम के पास एक तरफ डेडिकेटेड एमएमए फाइटर वरुण है तो दूसरी तरफ जूडो कुराश बैकग्राउंड से आने वाली सुचिका है. ये कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है. यहाँ मेडल प्रेडिक्शन करना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये एशियन गेम्स का पहला एमएमए एडिशन है. लेकिन एक बात तय है, वरुण और सुचिका चाहे मेडल जीते या नहीं, वो इंडियन एमएमए हिस्ट्री का पहला चैप्टर जरूर लिखेंगे. तो अब आईची नगोवा में असली परीक्षा होगी. कौन प्रेशर में शांत रहता है, कौन आखिरी सेकंड्स तक स्ट्रेटजी नहीं छोड़ता और कौन मेडल राउंड में अपना बेस्ट प्रदर्शन निकाल पाता है. 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में इन चारों स्पोर्ट्स पर नजर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया का बड़ा सरप्राइज मेडल इन्हीं कॉम्बैट स्पोर्ट्स से आ जाए.
2: बड़ी अच्छी बात बोली कि ना जाने कौन से खेल में भारत को पदक मिल जाए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी बहुत सक्षम है और सक्षम है अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी. पहला मुकाबला दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया और उस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 156 रन बनाए उस 8 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर्स में, और उसके बाद 157 रन पर भारतीय टीम ने 157 रन बना के मुकाबला जीत लिया केवल 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद. 3 विकेट हालांकि भारतीय टीम के जरूर गिरे. आज दूसरा मुकाबला है दिल्ली में अफगानिस्तान और भारत के बीच. आज दूसरा मुकाबला है, किस तरह की ग्राउंड कंडीशंस हैं, किस तरह से सपोर्ट, दर्शकों का सपोर्ट, किस तरह से खेल प्रेमियों का सपोर्ट न केवल भारत के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी उतना ही है. ऐसा लगता है कि शायद दो लोकल टीमें, दो स्थानीय टीमें, दो घरेलू टीमें एक साथ खेल रही हूं. तो किस तरह से ये मुकाबला हो सकता है और किस तरह की ग्राउंड कंडीशंस हैं और किस तरह से यहां पर चीजें घट सकती हैं, इस पर हमने बात की जाने माने क्रिकेट के जानकार प्रवीण सोनी से. उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं.
3: ग्राउंड कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत की हमारे क्रिकेटर्स ने और बहुत अच्छे ग्राउंड कंडीशंस हैं. और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि विकेट बहुत अच्छा खेल रहा था मगर अफगानिस्तान की बैटिंग थी वो लड़खड़ा गई थी, क्योंकि गेंदबाजी जो हुई वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई. हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है, भारतीय गेंदबाजों ने धैर्य नहीं छोड़ा और अच्छी गेंदबाजी की और उनको विकेट मिलने शुरू हो गए. और खासकर जो अफगानिस्तान के बल्लेबाज थे वो थोड़ा सा जैसे कह सकता हूँ कि ना उस मोल्ड में नहीं आए, सेटल नहीं हुए, अपने आप को सेटल नहीं कर पाए और स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए और एक दुर्भाग्यपूर्ण एक रन आउट हुए थे उनके खिलाड़ी.

0: काफी अच्छा मैच हो सकता था, मगर थोड़ा सा स्कोर जो था मेरे हिसाब से कम था। और भारतीय बल्लेबाजी, आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाजी है, तो भारतीय बल्लेबाजी आगे अफगानिस्तान का टिकना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये सीरीज में लग रहा है कि भारत 3-0 से जीत जाएगा।
1: जिस तरह से आपने बताया सर कि ग्राउंड कंडीशंस अच्छी हैं और बल्लेबाजी के लिए, या ये कहें कि ट्रू विकेट है, अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो विकेट मिलेगी और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो रन बनेंगे, तो आज कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि की प्लेयर हो सकते हैं?
0: देखिए, हमारे भारतीय टीम की तरफ से मैं देखूंगा कि भारतीय टीम को, देखिए अभी अभी आगे खबर मिली है कि वरुण चक्रवर्ती थोड़े से साइड स्पिनर को है वो इंजर्ड है, तो दूसरे स्पिनर्स को खेलने का मौका मिलेगा। हम देख सकते हैं कि रवि बिश्नोई या वशिष्ठ सुंदर खेलने को आज मौका मिल सकता है। और भारतीय तेज गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाज कर रहे हैं, खासकर जसप्रीत बुमराह जो कि थोड़े समय के बाद खेल रहे हैं, और अर्शदीप तो पूरी फॉर्म में है क्योंकि अभी हाल में ही वो पंजाब की लीग खेल के आ रहे हैं और उन्होंने दिखाया भी। और दोनों ही बल्लेबाज जो पंजाब में खेल रहे थे, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह, पूरी फॉर्म में है और उनका ये उनके लिए जो पंजाब की लीग थी उनके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ रहे हैं उसी मोड में आ रहे हैं जिस मोड में आप पहले क्रिकेट खेल रहे थे।
1: दिल्ली में मुकाबला है और जिस तरह से रुझान है खेल प्रेमियों का, क्रिकेट प्रेमियों का, कि अफगानिस्तान के साथ जब भारतीय टीम खेल रही है तो पूरा सपोर्ट यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए भी है और भारत के लिए भी है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि दो होम टीम एक साथ खेल रही है?
0: देखिए, जैसे अफगानिस्तान से होस्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली में काफी बड़ा क्राउड है अफगानिस्तान के, जो फेवर सपोर्ट करता है, और खासकर दिल्ली का जो क्राउड है वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता है। और अच्छी क्रिकेट जो खेलेगा, तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थी, अच्छी इनिंग खेली थी उनके कप्तान ने, तो बहुत अच्छी उनको भी सराहा गया था। और ऐसा नहीं कि भारतीय जो है दिल्ली में भारतीय सिर्फ टीम को सपोर्ट किया जा रहा है, दोनों टीमों के सपोर्ट किया जा रहा है, अच्छा खेल को सपोर्ट किया जा रहा है, मगर भारतीय टीम का जो एज है, खासकर जो भारतीय बल्लेबाजी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है।
1: इसके अलावा सर, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो क्या ऐसा फैक्टर है कि अफगानिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है किसी भी मुकाबले में, किसी भी वेन्यू पर, किसी भी टीम के सामने? वो कौन सी ऐसी चीज है जो उनको अनप्रेडिक्टेबल बना देता है?
0: उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात, अगर उनके बल्लेबाज थोड़ा सा गेंदबाजी को सपोर्ट करेंगे ना, तो फिर ये टीम बहुत ही बढ़िया टीम बन सकती है। और बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज है, मगर कहीं क्रूशियल स्टेजेस पे आकर, क्रूशियल मैचेस में थोड़ा ना थोड़ा गलती कर देते हैं, और अपने जैसे कह रहे हैं उनके जो जैसा उनका स्वभाव है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सभी बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और पूरे विदेशों में भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाजी अगर उनकी गेंदबाजी को सपोर्ट करेगी ना, तो ये टीम बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है।
1: बिल्कुल घातक सिद्ध हो सकती है यदि खिलाड़ी अपना 100% दें, अच्छा प्रदर्शन करें और सही समय पर बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बना दें और सही समय पर विकेट ले लें, तो खिलाड़ी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और वहीं हमारे चेस के खिलाड़ी भी कुछ भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, शतरंज की दुनिया में एक बार फिर से सजने जा रही है वो बिसात, जहां 64 खाने होंगे, 32 मोहरे होंगी, लेकिन दांव पूरा होगा। पूरी दुनिया का गौरव 46वां फीडे चेस ओलंपियाड उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आज से शुरू हो रहा है और ये 27 सितंबर तक चलने वाला है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई टीम्स यहां अपनी रणनीति, धैर्य और मानसिक मजबूती का इम्तिहान लेंगे। लेकिन भारतीय फैंस के लिए टूर्नामेंट और भी खास है, क्योंकि भारत इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में उतर रहा है। 2024 में बुडापेस्ट में भारत ने ओपन सेक्शन में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। अब लक्ष्य है उस प्रदर्शन को दोहराना और एक बार फिर दुनिया के सामने भारतीय शतरंज की ताकत को साबित करना। और भारत की टीम पर अगर नजर डाले तो ये अनुभव और युवा जोश का एक बहुत ही शानदार सा मिश्रण दिखाई देता है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो अर्जुन इरिगासी, आर प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन, वर्ल्ड चैंपियन गुकेश और विदित गुजराती, यानी एक ही टीम में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों का ऐसा समूह जो किसी भी मजबूत टीम के सामने चुनौती पेश कर सकता है। अर्जुन लंबे समय से दुनिया के एलीट चेस प्लेयर में शामिल है। इसके बाद नाम आर प्रज्ञानंदा का आता है, जो कि कम उम्र में ही विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। फिर निहाल सरीन, एक तेज कैलकुलेशन और टेक्टिकल पोजीशंस में उनकी क्षमता उन्हें किसी भी मुकाबले में गेम चेंजर बनाती है। और भारत के लिए सबसे बड़ा नाम है डी गुकेश, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन। गुकेश की कहानी भारतीय शतरंज के तेजी से बदलते दौर की पहचान है। विश्व चैंपियन बनने के बाद अब उनसे उम्मीद होगी कि वो अपनी इस सफलता को टीम के प्रदर्शन में भी बदलें। पांचवी खिलाड़ी आते हैं विदित गुजराती। विदित के पास बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का लंबा अनुभव और टीम की टीम को मुश्किल राउंड में उनकी स्थिरता काफी काम आ सकती है। लेकिन चेस ओलंपियाड में सिर्फ नाम होना काफी नहीं होता श्रोताओं, यहाँ हर राउंड महत्वपूर्ण है। एक जीत टीम को ऊपर भी ले जा सकती है और एक हार पूरी स्थिति को बदल सकती है, और कई बार एक महत्वपूर्ण ड्रॉ भी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। बात करें महिला वर्ग की तो भारत की महिला शतरंज की सबसे अनुभवी और बड़ी खिलाड़ियों में शामिल है कोनेरू हम्पी। बुडापेस्ट मैं इन्होंने मेडल जीता था। दिव्या देशमुख टीम में दूसरे स्थान पर हैं। वैशाली रमेश बाबू टीम की तीसरी खिलाड़ी हैं। और अन्य खिलाड़ियों में अगर बात करें तो वंतिका अग्रवाल और युवा खिलाड़ी सविता श्री बी भी शामिल हैं। उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय महिला टीम के सामने भी कई मजबूत चेस नेशंस होंगे और यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। इसलिए इस बार भारत के पास मौका है कि वो ओपन और विमेंस दोनों सेक्शन में शानदार प्रदर्शन करें। फिलहाल इतना तय है कि समरकंद में मोहरे चलेंगे, लेकिन नजरें पूरी दुनिया की होंगी। यह है 46वां फीडे चेस ओलंपियाड, 64 खाने, 32 मोहरे और एक लक्ष्य, अपने देश के लिए जीत।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अपने देश के लिए जीत, और कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ी यही चाहते हैं कि वो जीत दर्ज करें। और जिस तरह से रेलवेज ने जीत दर्ज की है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने छठे हॉकी इंडिया सीनियर मैन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है, तो वो सभी खिलाड़ी यही चाहते हैं कि वो जीत दर्ज करें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। और 4-1 से उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को फाइनल में हरा दिया। और रेलवे ने फिर बता दिया कि क्यों रेलवे की टीम इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अच्छी टीम है। और रेलवे की टीम की अगर हम बात करें तो न केवल हॉकी में बल्कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स हो, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहां पर रेलवे के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। और लगातार जिस तरह से रेलवे में एक सिस्टम भी है विजेता, और वो ये है कि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको रेलवे में जॉब भी मिलती है। तो यदि आप रेलवे में खेलना चाहते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं तो लगातार रेलवे में समय समय पर वैकेंसीज भी निकलती हैं, तो रेलवे अच्छे खिलाड़ी भी देता है देश को और साथ में रोजगार भी उत्पन्न करता है।
2: और चलिए अब रुख कर लेते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 का। एशियन ट्रैम्प चैंपियन साबिरा हारिस की अगुवाई में 20 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल इटली के पोपाटो में इस शुरू हुए मुकाबले में शामिल हो गए हैं। पोपाटो में होने वाली ये प्रतियोगिता 19 सितंबर तक चलेगी और ये अंडर-21 निशानेबाजों के लिए साल का दूसरा जूनियर ISSF वर्ल्ड कप है और इसे केवल शॉटगन स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। और यहाँ बात करें अगर भारतीय दल की तो पुरुष ट्रैप में 6 निशानेबाज, पुरुष स्कीट में 4 निशानेबाज, महिला ट्रैप में 5 निशानेबाज और महिला स्कीट में 5 निशानेबाज हिस्सा लेंगे। इनमें से 4 निशानेबाज जूनियर मिक्स टीम ट्रैप स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं। तो बात करते हैं पुरुष ट्रैप की तो सैयद अहान अली, अर्जुन विनय प्रताप सिंह, चंद्रावत, जुहैर खान, उद्धव सिंह राठौर, युगन शक्तिवेल और मुथु कुमार। महिला ट्रैप की बात करें तो साबिरा हारिस, कृषिका जोशी, आद्या कात्याल, तनिष्का सेंथिल कुमार और भव्या त्रिपाठी हैं। पुरुष स्कीट में जोरावर सिंह बेदी, ईशान सिंह लिब्रा, गुरफतेह सिंह संधू, हरविरज सिंह और महिला स्कीट में ऋषम गुरोन, वेंकट लक्ष्मी लक्कू, परमीत कौर और संयोगिता शखावत, कामना उदावत। मिक्स ट्रैप में साबिरा हारिस, भव्य त्रिपाठी, जुहैर खान और युगन शक्तिवेल मुथु कुमार शामिल हैं। पुरुष स्कीट का फाइनल शाम 7 बजे और महिला स्कीट का फाइनल भारतीय समय अनुसार शाम 8 बजे होना है।
1: और वही अब बात कर लेते हैं सुब्रतो कप की। सुब्रतो कप का इस समय जो अंडर-17 बॉयज जो सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुब्रतो कप का, वो आज से आरंभ हो चुका है। और इस मुकाबले में जो फुटबॉल के मुकाबले हैं सुब्रतो कप के, इसमें जो लीग मैचेस होंगे वो 30 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद 30 मिनट के होंगे। और नॉकआउट मैचेस में 30 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट, यानी कि 30-30 मिनट के दो हाफ होंगे और 10 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक और 7 मिनट का फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी कि 7-1-7 का एक्स्ट्रा टाइम होगा। और उसके बाद फिर पेनल्टीज में यदि मुकाबला जाता है तो वहां पर डिसाइड होगा कि किस तरह से ये मुकाबला, कौन जीता कौन हारा। और अब जिस तरह से अंडर 17 के बॉयज जूनियर बॉयज के ये मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं आज से और

0: हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि कौन सी टीम इसमें जीती है। और विजेता, ये मैं आपको बता दूं कि सुब्रतो कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ पर अंडर 14, अंडर 15, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज, यानी कि वो खिलाड़ी जो बिल्कुल अभी ग्रास रूट पर हैं और बहुत छोटी एज में हैं, उनको यहाँ पर तराशा जाता है। और ना केवल भारत बल्कि बहुत सारी ऐसे देश हैं जहां पर अंडर 17 या अंडर 15 बॉयज में खेलने के बाद, सुब्रतो कप खेलने के बाद, वो खिलाड़ी अपने देश की टीमों में भी खेले हैं। यानी कि ये वो जगह है जहां से खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं।
1: बिल्कुल। और इस पर हमारी जो विस्तृत रिपोर्ट होगी आज के मैचेस पर, वो आपको हमारे कल वाले खेल खिलाड़ी के अंक में जरूर सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको और खबर भी दे दे कि भारतीय स्क्वैश के युवा स्टार अनाहत सिंह लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर रही हैं, और अभी ये खबर मिली है कि उन्होंने विश्व रैंकिंग में 17वां स्थान हासिल कर लिया है। इससे पहले वो 20वें स्थान पर थी और एक साथ उन्होंने 3 पायदान चढ़कर 17वां स्थान विश्व रैंकिंग में प्राप्त कर लिया है। और साथ ही साथ एक और खबर है, 2019 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाली है, और ये पहली बार होगा कि कोई अफ्रीकन कंट्री इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है।
0: और ये बता दें, क्योंकि एथलेटिक्स की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो बहुत ही उसका जो मान होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है खेलों
1: जी
0: के क्षेत्र में।
1: जी तो इसी के साथ आज का
0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अजय तोमर और मेरी सहयोगी विजेता चतुर्वेदी और हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान आपसे विदा लेते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया, और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
3: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
2: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने

कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: हम हाजिर हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेके, जहाँ बात होती है गांव की, ग्रामीण जीवन की, शिक्षा की, समाज की और देश दुनिया से जुड़े उन विषयों की जिनका हमें रोजमर्रा के जीवन से सीधा संबंध होता है।
1: बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खास दिवस से। तो देखिए, आपको बता दें कि आज जो है दूरदर्शन दिवस है, और दूरदर्शन एक ऐसा नाम जिससे भारत की कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हैं। गांव हो या शहर, लंबे समय तक दूरदर्शन देश के घर घर तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम रहा है।
0: दूरदर्शन की शुरुआत भारत में टेलीविजन प्रसारण के शुरुआत दौर में हुई और समय के साथ ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण साधक रहा। तो चलिए बातें और भी अपने श्रोताओं से करेंगे, लेकिन सुनेंगे एक बातचीत, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: और देखिए, बातचीत का जो विषय है ये है वृद्धावस्था में सेहत का ध्यान, खान पान और दिनचर्या।
0: जी बिल्कुल, और इसमें विशेषज्ञ हैं मौनीदीप तालुकदार, ये आहार विशेषज्ञ हैं, आइए सुनते हैं इनको।
2: दोस्तों, उम्र का बढ़ना जीवन की एक स्वाभाविक और सुंदर प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी शरीर की आवश्यकताएं और जीवन शैली भी बढ़ने लगती है। इसलिए आज हम जानेंगे कि सही पोषण, संतुलित खान पान और स्वस्थ दिनचर्या को अपनाकर हमारे बुजुर्ग 60 वर्ष की उम्र के बाद भी स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान कैसे बने रह सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि बुजुर्ग अन्य लोगों से कैसे अलग है और वृद्धावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। बुढ़ापा शरीर की लगभग सभी प्रणालियों को प्रभावित करता है और यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भी जुड़ा होता है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है, सुनने में भी कठिनाई हो सकती है, स्वाद और गंध महसूस करने की क्षमता में गिरावट के परिणाम स्वरूप भूख कम लगने लगती है और भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिसको सार्कोपीनिया कहा जाता है। हड्डियां कमजोर और खोखली होने लगती है, जिससे गिरने पर फ्रैक्चर या चोट का जोखिम बढ़ जाता है। दांतों से जुड़ी समस्याओं के कारण भोजन चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन के सेवन में कमी आ सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है, जिसके कारण संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधि कम हो जाने से अपच, गैस

और एसिड रिफ्लक्स जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी आ सकती है। इसके कारण भोजन से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अकेलापन, भोजन तैयार करने में असमर्थता, आर्थिक निर्भरता बुजुर्गों के पोषण स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर के काम करने की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, साथ ही शारीरिक गतिविधि में भी कमी हो सकती है। इसलिए इस उम्र में शरीर को पहले की तुलना में कम कैलोरीज की जरूरत होती है। हालांकि प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत बनी रहती है और कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पहले से भी अधिक हो सकती है। यानी कम खाना है, लेकिन ऐसा खाना है जो पोषण से भरपूर हो। यही कारण है कि वृद्धावस्था में ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन हो। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत करता है। यदि पर्याप्त प्रोटीन ना मिले तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का स्रोत अवश्य शामिल करें, जैसे दालें, सोयाबीन, फलियां, दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज, और यदि व्यक्ति मांसाहारी है तो अंडा, मछली, मुर्गी या नर्म रूप से तैयार किया गया कीमा भी आहार में शामिल किया जा सकता है। बुजुर्गों में अक्सर विभिन्न पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है, इसलिए उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करना आवश्यक है। फल और सब्जियां शरीर को विटामिन, खनिज और फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, कब्ज से बचाव करने और हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक हैं। प्रतिदिन विभिन्न रंगों के फल और सब्जियां खाने का प्रयास करें। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसलिए आहार में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक है। इसके लिए दूध, दही, पनीर, रागी, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे विकल्प हैं। प्रतिदिन लगभग 300 से 400 ml दूध एवं दूध से बने उत्पाद जैसे दही और पनीर तथा पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां शामिल करें। इसके साथ ही लगभग 30 ग्राम तक सूखे मेवे और बीज भी आहार का हिस्सा हो सकते हैं। अर्थात भोजन की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे बुजुर्गों की थाली में क्या क्या होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। इसमें साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, उबले हुए चने, मूंग या लोबिया, हरे पत्तेदार सब्जियां और साथ में 100 से 150 ml दूध तथा 10 से 15 ग्राम मेवे और बीज लिए जा सकते हैं। यह शरीर को दिन की शुरुआत के लिए अच्छी ऊर्जा देता है। दोपहर के खाने में कम से कम एक तिहाई हिस्सा चोकर युक्त या साबुत अनाज का होना चाहिए, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा या मल्टीग्रेन आटे की 2 या 3 रोटियां। इसके साथ 30 से 40 ग्राम दाल, भरपूर मात्रा में हरी और अन्य सब्जियां, दही या पनीर और खाने के अंत में कोई भी एक मौसमी फल शामिल करें। शाम के समय बिना चीनी या बहुत कम चीनी वाली 1 कप दूध की चाय या कॉफी ली जा सकती है। नींबू पानी, नारियल पानी के साथ 10 से 15 ग्राम सूखे मेवे और बीज भी लिए जा सकते हैं। रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। इसमें अनाज, हल्की दाल, सब्जियां, थोड़ी सी दही और ताजे फल का रस शामिल किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए भोजन अच्छी तरह पका हुआ और नरम होना चाहिए ताकि उसे चबाने में और पचाने में आसानी हो। भोजन न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, बल्कि उचित तापमान पर परोसा जाना चाहिए। भोजन में नमक की मात्रा कम रखें और मसालों का प्रयोग सीमित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन शांत, सुखद और खुशहाल माहौल में परोसा जाए। परिवार का साथ और सकारात्मक वातावरण भोजन में रुचि बढ़ाने में और भूख को बेहतर करने में सहायक हो सकता है। एक और जरूरी चीज है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है पानी। वृद्धावस्था में अक्सर प्यास का एहसास कम हो जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी, कब्ज, कमजोरी, चक्कर, मूत्र संक्रमण जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीते रहें। लगभग 2 लीटर पानी यानी 8 से 10 ग्लास पानी या तरल पदार्थ जरूर लेने चाहिए। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
आजकल बाजार में ऐसे

ये अनेक खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा के साथ साथ विभिन्न कृत्रिम पदार्थ भी पाए जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो इनका सेवन कम करें और इनके स्थान पर घर का ताजा, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। साथ ही पूरे दिन में चीनी का सेवन लगभग 20 से 25 ग्राम से अधिक न हो। लेकिन वृद्धावस्था में स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन और स्वस्थ खानपान की आदतों का पर्याप्त होना काफी नहीं है। इसके साथ नियमित और क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही आवश्यक है। नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। यह शरीर का वजन नियंत्रण रखने में, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में और शारीरिक सक्रियता बनाए रखने में मदद करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से रक्तचाप को नियंत्रित रखने में और मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी सहायता मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे गठिया, मोटापा, स्ट्रोक, हृदय रोग तथा कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स के जोखिम को कम करने में भी नियमित शारीरिक गतिविधि सहायक हो सकती है। तनाव और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में भी शारीरिक गतिविधि मदद कर सकती है। इसके अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर का संतुलन बेहतर रहता है, गिरने का जोखिम कम हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए अपनी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन लगभग 30 से 45 मिनट की हल्की मध्यम स्तर की शारीरिक गतिविधि करने का प्रयास करें। इसके लिए तेज चाल से चलना, हल्का योग और प्राणायाम, हल्के व्यायाम, स्ट्रेचिंग, संतुलन बनाए रखने वाला व्यायाम अपने दिनचर्या में शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क से शरीर में विटामिन डी के निर्माण में सहायता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो व्यायाम शुरू करने या उसकी तीव्रता बढ़ाने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। वृद्धावस्था में स्वस्थ और सक्रिय जीवन बनाए रखने में परिवार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वृद्ध व्यक्तियों को परिवार के सहयोग, देखभाल और भावात्मक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य उन्हें समय पर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं, उन्हें परिवार के साथ बैठकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करें, नियमित सैर और हल्की शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करें, उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाने में सहयोग करें और उनके साथ समय बिताएं और उन्हें अकेलापन न महसूस होने दें। याद रखिए, स्वस्थ वृद्धावस्था पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि वृद्धावस्था में स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो सकती है। सुबह समय पर उठें, उठने के बाद कुछ समय अपने शरीर को सक्रिय बनाने के लिए दें। दिन की शुरुआत जल्दबाजी की बजाय शांत और सकारात्मक सोच से करें। सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताएं। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार हल्की सैर करें। सैर के बाद हल्का योग, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। लगभग 30 से 45 मिनट की हल्की या मध्यम शारीरिक गतिविधि का दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। व्यायाम के बाद हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता दिन को एक अच्छी शुरुआत देता है। नाश्ते में साबुत अनाज या मिलेट्स से बनी रोटी के साथ सब्जियां या सब्जी वाला दलिया, ओट्स अथवा रागी की इडली ली जा सकती है। इसके साथ उबले चने, मूंग या लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियां, 100 से 150 ml दूध तथा 10 से 15 ग्राम मेवे और बीज शामिल किए जा सकते हैं। नाश्ते के बाद कुछ समय अपनी रुचि की गतिविधियों के लिए निकालें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, संगीत सुनें और अपने पसंद की कोई रचनात्मक कार्य करें, ध्यान या प्राणायाम करें। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए मानसिक रूप से सक्रिय और प्रसन्न रहना भी महत्वपूर्ण है। दोपहर का भोजन संतुलित और आसानी से पचने वाला हो। थाली में रखें साबुत या चोकर युक्त अनाज, 30 से 40 ग्राम दाल, हरी एवं अन्य सब्जियां, दही या पनीर और एक मौसमी फल। दोपहर के भोजन के बाद शरीर को आराम देने के लिए कुछ समय विश्राम किया जा सकता है। यदि नींद लें तो बहुत लंबी दोपहर की नींद की बजाय हल्का और सीमित विश्राम रखें ताकि रात की नींद प्रभावित ना हो।
शाम के समय एक कप चाय या कॉफी के साथ हल्का

0: एवं पौष्टिक नाश्ता लिया जा सकता है। इसके बाद शाम की सैर के लिए जाएं और इस समय को केवल व्यायाम तक सीमित ना रखते हुए वॉक एंड कनेक्ट का समय बनाएं। दोस्तों या हम उम्र के साथियों के साथ टहले, पड़ोस के अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मिले, बातचीत करें, हंसें और अपने अनुभव साझा करें। रात का भोजन हल्का, आसानी से पचने वाला, कम नमक और सीमित मसालों वाला, अच्छी तरह पका और नरम होना चाहिए। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। रात के भोजन के बाद कुछ समय परिवार के साथ बिताएं, बच्चों से बातचीत करें, पोते पोतियों को कहानियां सुनाएं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करें, परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक और बातचीत करें। प्रिय श्रोताओं, उम्र बढ़ना जीवन की रफ्तार को रोकना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक स्वाभाविक और सम्मानजनक चरण है। बस आवश्यकता है कि अपनी दिनचर्या को उम्र के अनुसार ढालने की। सुबह शरीर को सक्रिय रखें, दिन भर मन को व्यस्त और प्रसन्न रखें, भोजन को पौष्टिक एवं संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नमक, चीनी और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करें, धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन से बचें, शाम को अपनों के साथ समय बिताएं और रात को पर्याप्त नींद लें। यही है स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल वृद्धावस्था की सरल दिनचर्या।
1: तो अभी हमने ये चर्चा सुनी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी जिसमें बात हुई वृद्धावस्था में सेहत का ध्यान कैसे रखें। तो बातचीत जो चर्चा थी इसका विषय था वृद्धावस्था में सेहत का ध्यान, खान पान और दिनचर्या, और विशेषज्ञ थी मोनी दीपा जो कि तालुकदार हैं, आहार विशेषज्ञ नई दिल्ली से।
2: बिल्कुल, और जिस तरह स्वस्थ जीवन के लिए सही और खान पान और अच्छी दिनचर्या ज़रूरी है, उसी तरह एक बेहतर समाज और मजबूत भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
1: और शिक्षा की बात करें तो अब हम चर्चा करेंगे समग्र शिक्षा योजना के बारे में। ये योजना जो है स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
2: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने श्रोताओं से सुनते हैं अगला लोकगीत श्रीश्राम की आवाज में।

0: श्रोता सुन रहे थे श्रीश्राम की आवाज़ में ये लोकगीत। और आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें लोकतंत्र के मूल्यों, जनभागीदारी, समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। लोकतंत्र केवल चुनाव के समय मतदान करने तक सीमित नहीं है। अपने अधिकारों को समझना, दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना, सही जानकारी हासिल करना और समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।
1: बिल्कुल, और ग्रामीण भारत में भी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सुरेश चंद गोला की आवाज़ में एक रागनी।
0: जी।

तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सुरेश चंद्र गोला से ये रागनी। और आपको बता दें, कल आप विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की में आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम, जिसका विषय रहेगा फूलों की व्यावसायिक खेती से अधिक लाभ। ये कार्यक्रम सुबह प्रातः 10:10 पर आप सुन पाएंगे और ये 11 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं फूलों से संबंधित व्यावसायिक खेती को लेकर, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर रहेंगे 23 42 10 81 और हमारा दूसरा नंबर 23 42 10 83। तो इन दोनों फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके फूलों की व्यावसायिक खेती से अधिक लाभ कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। सभी को राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। केंद्र सरकार लगभग 90% और 10% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

0: दिल्ली में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। निरा, देश के संपूर्ण विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे किसान भाई बहनों की आमदनी दोगुनी हो।
4: बिल्कुल।
3: और इसके लिए यह भी जरूरी है कि किसानों की खेती अच्छी हो और साथ ही उनका उत्पादन भी बढ़े।
4: खेती और पशुपालन हमारे ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है और खेती केवल अन्न उगाने का माध्यम नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों परिवारों के जीवन की रेखा है। बदलते समय के साथ खेती और पशुपालन में भी नई तकनीकों, वैज्ञानिक सोच और बेहतर बाजार व्यवस्था को अपनाना बेहद जरूरी होता जा रहा है।
3: और देखिए नीरा, कि हमारे किसान भाई बहन किस तरह से आगे बढ़े, उनका विकास हो, उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए उनके साथ जुड़े हर पक्ष को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और किसानों के लिए जो पशु हैं वो भी एक अमूल्य धन है, तो किस तरह से पशुपालन करके वो उचित लाभ ले सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि उनके पशु स्वस्थ हों और पशुओं के स्वस्थ होने के लिए उनका आहार कैसे हो, ये भी जानना बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी, क्योंकि आज हम बात करेंगे पशुओं के पौष्टिक आहार के महत्व की और साथ ही साथ आज हम जानेंगे ई नाम योजना के बारे में भी।
3: कृषि उत्पादन के विस्तार और विविधीकरण के साथ एक अधिक एकीकृत बाजार संरचना की जरूरत को देखते हुए, साथ ही बाजार पहुंच को बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच के रूप में अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम की शुरुआत की थी और मौजूदा मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत करके ई नाम देश भर के किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के लिए निर्बाध ऑनलाइन व्यापार, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और व्यापक बाजार पहुंच को सक्षम बनाता है।
4: बिल्कुल। ई नाम एक ऑनलाइन कृषि बाजार मंच है जिसका उद्देश्य देश की अलग अलग कृषि मंडियों को एक डिजिटल मंच से जोड़ना है। इसके माध्यम से किसान अपनी कृषि उपज के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ पारदर्शी तरीके से अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान की मेहनत खेत से शुरू होकर बाजार तक पहुंचती है। खेत से शुरू होकर बाजार तक का ये सफर वो बहुत ही मेहनत से तय करता है। उसकी मेहनत का सही मूल्य मिलना बेहद जरूरी है। आज

0: किसान जागरूक किसान है और नई नई तकनीकों के माध्यम से कृषि की ऊंचाइयों को छू रहा है।
1: और ई नाम डिजिटल इकोसिस्टम में एक बहुस्तरीय संरचना शामिल है, जिसमें वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, समर्पित हेल्पलाइन, मानव सहायता ढांचा और एआई सक्षम गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली शामिल है। ईनाम किसानों को खरीदारों के व्यापक और अधिक विविध समूह तक पहुंच मुहैया कराता है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति के अवसर मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ ये खत्म करता है बिचौलियों की भूमिका को भी। बेहतर बाजार पहुंच होती है, साथ ही साथ सीधा डिजिटल भुगतान भी।
1: और देखिए नीरा, ईनाम से जो हमारे किसान भाई बहन है बहुत फायदा उठा रहे हैं, और जो नहीं उठा रहे वो अब उठाएंगे। लेकिन आज हमारा एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारे पशु हैं वो कैसे स्वस्थ रहें। और कहते हैं ना कि आहार से ही स्वास्थ्य का रास्ता होकर जाता है। तो नीरा, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, पशुओं में पौष्टिक आहार का महत्व। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर कुंवर घनश्याम, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में।
2: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जैसा कि हमारे किसान भाइयों के लिए और पशुपालकों के लिए ये मौसम भी विशेष होता है, जहाँ खेत खलिहान खिलखिलाते हैं, एक बारिश की हमें आवश्यकता होती है, कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन वहीं अनेक बीमारियां रोगाणु ऐसे मौसम में होते हैं, वहीं हमें अपनी पशुओं की सुरक्षा के हेतु उनके पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान देना होता है। जब ये विषय आता है पौष्टिक आहार का, तो सबसे पहले मन में एक विचार आता है कि आखिर ये पौष्टिक आहार क्या है।
3: सबसे पहले यदि हम बात की जाए पशुपालन की, तो लगभग 70% खर्च जो होता है पशुपालन में वो केवल आहार पे ही होता है। तो आहार का हमें मुख्य ध्यान रखना है, जिससे कि हम अपने दूध का उत्पादन बढ़ा सकें। यदि आहार पे ध्यान नहीं रखेंगे तो दूध का उत्पादन हमारा उतना नहीं होगा और हमें महंगा पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम अपने पशुओं को संतुलित आहार दें। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह है जो अमुक पशु की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए उनको सही मात्रा में और सही अनुपात में पोषक तत्व मिलते हों, इसको संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार बनाने के लिए जो पशुओं को दिया जाता है, उसमें जो आहार के मुख्य हमारे घटक हैं वो ये हैं कि सूखा चारा, हरा चारा, उसके बाद में रातिब जिसे दाना कहते हैं या कंसंट्रेट बोलते हैं, और खनिज लवण, इन सब की आवश्यकता होती है।
2: यानी कि जो पशु को आवश्यक तत्व हैं वो मिलें, यही पौष्टिक आहार है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन पशुओं में जो इसका महत्व है, उसका क्या प्रभाव इसका पशुओं पर पड़ता है और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है?
3: इसका जो महत्व है, सबसे पहली तो बात ये आती है, जो आहार अच्छा होगा हमारा तो पशुओं का शारीरिक विकास अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे जो बात आती है कि उससे हम अधिक दूध का उत्पादन ले सकते हैं। तीसरे नंबर की जो बात होती है कि ये प्रजनन क्षमता में विकास करता है। हमारी गाय भैंस सही समय पे गाभिन होती है, सही समय पे बच्चा देती है। ठीक, इसके अलावा पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो इसलिए हमें अपने पशुओं को अच्छा ही आहार खिलाना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो पौष्टिक आहार या संतुलित आहार की आप बात कर रहे हैं, इसके जो प्रमुख घटक आपने कहा कि सूखा चारा है या हमें हरा चारा देना है, वही उसमें रातों की जो मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी, दाना कितना डालना है, तो जो प्रमुख घटक आपने कहा कि ये हमें तैयार करने होते हैं, तो जो पशुपालक भाई हैं वो किस प्रकार से इस संतुलित आहार को स्वयं तैयार कर सकते हैं ताकि पशुओं का स्वास्थ्य भी बना रहे और हमारा दूध उत्पादन भी अच्छा बना रहे?
3: जी, ये जो संतुलित आहार है जो हम पशुओं को खिलाते हैं, ये अलग अलग तरह से कि हरे चारे से मिनरल्स और विटामिन्स हमारे पशुओं को मिलते हैं। सूखा चारा यदि मिलाना ही होता है उसमें, तो उससे फाइबर की मात्रा मिलती है हमारे पशुओं को, और यदि जो खली खिलाते हैं ये प्रोटीन की मात्रा उससे मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, तो मिनरल मिक्सचर खनिज लवण खिलाया जाता है। तो इन सब की आवश्यकता होती है और ये पशुओं को दूध के उत्पादन के आधार पर हमको देना होता है। ये दूध के उत्पादन के आधार पर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम अपने पशुओं को ड्राई मैटर बेसिस पे, यानी कि सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर 2.5 से 3% प्रति 100 किलोग्राम भार पर हमको अपने पशुओं को देना चाहिए। या जो हमारे दुधारू पशु हैं, ये इनकी बात की जाए तो उनको कितना आहार दिया जाए
2: जी।
3: तो उनको यदि आहार देने की बात है तो लगभग 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम रातिब की मात्रा हमें देनी चाहिए। और इनमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई होनी चाहिए, जो रातिब हम यदि बाजार से खरीदते हैं तो ये अलग अलग चीजें हमें ले लेनी चाहिए। जैसे नंबर एक पे हो गया अनाज, कोई भी एक अनाज लेना चाहिए
2: जी।
3: दूसरे नंबर पे आती है खली, जिससे हमारी प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है। खली में कोई भी एक खली ले सकते हैं, यहाँ पर सरसों की खली

0: अच्छी रहती है। जहां पे बिनोला ज्यादा उत्पन्न होता है वहां पे बिनोला लेना चाहिए, जहां पे मूंगफली की ज्यादा पैदा होती है तो वहां पे मूंगफली की खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है चोकर। तो गेहूं का चोकर को भी हम, इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है तो पशुओं को ये सब मिनरल्स मिलने के लिए। नंबर चार पे आता है हमारे दालों की चूरी, जिसे आमतौर पे यहाँ खंडा भी बोल देते हैं लोकल भाषा में। नंबर पांच मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण, खनिज मिश्रण देना हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यदि वो नहीं होंगे तो तरह तरह की बीमारियां हमारे पशुओं में पैदा हो जाती है और प्रजनन क्षमता पे भी प्रतिकूल असर पड़ता है। और हमारे पशुओं को नमक भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम नमक नहीं खिलाएंगे तो कैल्शियम की कमी शरीर के अंदर भी आ जाती है, तो नमक भी देना है। तो 15 से 20 ग्राम तो साधारण रूप से नमक हमें प्रत्येक दिन देना ही चाहिए। और यदि हम 1 क्विंटल राते मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1% नमक की मात्रा हमें मिलानी है और 2% हमें रातिब की मात्रा रखनी है। 25 से 30% अनाज रखना है और 25 से 30% खली रखनी है। 25 से 30% के बीच में चोकर की मात्रा रखनी है और लगभग 15 से 20% दालों की चूरी, जिससे प्रोटीन की मात्रा हमारे पशुओं को मिलती रहे। जैसे रेत और सीमेंट को हम मिलाते हैं अच्छी तरह से तैयार करके हमें ये रख लेना चाहिए और दूध उत्पादन के आधार पर हमको ये देना है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी जानकारी श्रोताओं तक निश्चित रूप से पहुंचेगी और कोशिश रहेगी कि इसी का प्रयोग करके हम भारत को दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बनाए रखें। बात आती है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं, पशुपालक हैं, उन्हें तो अंदाजा हो जाता है, लेकिन जो आजकल देख रहे हैं कि युवा धीरे धीरे आ रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तो पहले देखते थे कि अगर कोई गाय है या भैंस है वो अपनी खोर चाट रही है तो कहते थे कि इसे नमक डाल दो तो नमक की इसे आवश्यकता है। तो क्या कुछ ऐसी भी पहचान है कि हमें लगे कि पशुओं को इस समय कुछ ना कुछ हमें पौष्टिक आहार देना है या इनके शरीर में किसी चीज की कमी है?
0: जो थोड़ा जिक्र किया था आपने, जो प्रथम नंबर की बात थी कि हम दूध में आगे बढ़े, मैं वैज्ञानिकों को और खास तौर से जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जो किसान लोग हैं जो पशु रख रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि हम दूध उत्पादन में नंबर 1 है संसार में। अभी जो दूध का उत्पादन हो रहा है 248 मिलियन टन के लगभग दूध का उत्पादन हो रहा है और जो हमारे पशुओं की संख्या है वो लगभग 535 मिलियन है और इन सब में हमारी 193 मिलियन गायों की संख्या है और यदि भैंस की बात करेंगे हम 112 मिलियन भैंसों की संख्या है और ये पूरे संसार में किसी भी देश में हमारे यहाँ भैंस सबसे ज्यादा है
1: जी।
0: और इनका जो ग्रोथ रेट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान किया है कि हम विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक
1: जी।
0: तो पशुपालकों का काफी योगदान रहा है और इसमें 5.7% की वार्षिक वृद्धि की दर से दूध का उत्पादन बढ़ रहा है और ये सब किसान भाइयों की ही मेहनत है, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सबसे ज्यादा गौ माताओं की संख्या, सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या हमारे पास है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी बन जाती है कि इनका जो संतुलित आहार है वो लगातार बना रहे। तो संतुलित आहार के लिए बात चल रही थी कि जो दुधारू पशु हैं और एक हमारे ऐसे पशु हैं जो गैर दुधारू हैं, चाहे उसमें छोटे बछड़े हैं, बछियां हैं, कटड़े हैं, कटियां हैं, तो इनके संतुलित आहार में क्या मुख्य अंतर होना चाहिए, किस प्रकार से हम इसे चुने?
0: जैसे गाय या भैंस का जो बच्चा पैदा होता है तो जो कटिया पैदा होती है, मान लीजिए वो आने वाले समय की हमारी भैंस है,
1: बिल्कुल
0: हमें वहां से ही शुरू करना है कि उसको पौष्टिक आहार दिखाने को दें। तो सबसे पहली बात आती है कि बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे पहले उसको खीस पिलाया जाता है। जो पहले 3 दिन का दूध होता है उसको हम खीस बोलते हैं। खीस में एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो खीस के अंदर होती है। तो जीवन भर बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए खीस पिलाया जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वो समय कब है, पहले 2 घंटे में उस बच्चे को खीस की मात्रा जरूर पिलाई जानी चाहिए और दूसरी बात यह है कि खीस की कितनी मात्रा पिलाई जानी चाहिए, जितना शरीर का वजन है उसका 10वां भाग। मान लीजिए 25 किलो यदि शरीर भार है किसी नवजात बछड़े में या बछिया में तो उसको 2.5 लीटर की मात्रा हम खीस की देंगे और ये जो 2.5 लीटर की मात्रा है ये मात्रा 24 घंटे के अंदर रहेगी। 24 घंटे में हम 2 बार करके उसको पिलाएंगे। यदि बहुत ज्यादा हमने पिला दिया तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक है और कई लोग ये बोल देते हैं कि हम तो साहब 2 थन का दूध पिलाते हैं, 1 थन का दूध पिलाते हैं, तो वो नहीं, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दूध पिलाएंगे तो वो हमारा ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि किसी कारणवश गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है और उसको हम खीस नहीं दे

0: आते हैं, तो खीस के जो सब्स्टिट्यूट है उसमें हम किसी दूसरी भैंस या गाय का दूध लेंगे जो संपूर्ण दूध है। संपूर्ण दूध का मतलब है जिसकी हमने कोई मलाई या कोई उसमें से फैट ना निकाला हुआ हो। लगभग 560 मिलीलीटर दूध, 280 मिलीलीटर पानी, 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल और 2 मुर्गी का अंडा, इन सबको एक जगह मिला लेंगे और जो अरंडी का तेल है उसकी मात्रा रहेगी जो बच्चे के वजन के अनुसार। यदि वजन 20 से 25 किलोग्राम है तो 1 चम्मच मिलाएंगे, 25 से 30 किलोग्राम के बीच में है, ज्यादा है तो 2 चम्मच मिलाएंगे। तो ये भी 24 घंटे में 2 बार देंगे और 3-4 दिन तक देंगे तो उसका पहला मल निकालने में ये सहायक होती है और इसकी जो ताकत आती है उससे, और ये बछड़ा शुरुआत से ही हमारा स्वस्थ होता है। तो ये तो हमारे बच्चों के से शुरुआत हो गई है कि अच्छा हम उन्हें खीस पिलाएंगे, अच्छी देखरेख रखेंगे। दूसरे नंबर पे आती है कटिया बछिया जो अभी तक गाभिन नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक बच्चा नहीं दिया है, तो उसकी देखरेख भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि सूखा चारा ही देते रहते हैं, उनको भी हमें दाना मिश्रण देना जरूरी है। तो 1 से 1.5 किलोग्राम कम से कम उनको रातिब मिश्रण देना चाहिए। दूसरी जो बात आती है जो दुधारू पशु की है, उनको हमें बहुत ही देखरेख रखनी है क्योंकि जो गाय से हमारा दूध निकलता है जीर्ण के माध्यम से, तो 1 लीटर दूध यदि शरीर से बाहर आता है तो 3 ग्राम कैल्शियम शरीर से हमारा निकल जाता है
1: जी।
0: तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो खनिज लवण 2 तरह के हैं, मार्केट में सब मिलता है खनिज लवण, या फिर बरेली से जो विकसित किया गया है IVRI से
1: जी,
0: ये एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर भी हम ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात रही कि किस प्रकार से हम संतुलित आहार दुधारू पशु हैं या बछड़े बछियां हैं इनमें अलग अलग दे सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन बात आती है कि जो आने वाला समय है
0: जी,
1: जिसमें हम अब कोशिश करेंगे कि पशुओं को हरा चारा लगातार मिलता रहे, तो आने वाले समय के लिए किस प्रकार हमें अपने पशुओं के पौष्टिक आहार का ध्यान रखना होगा?
0: बिल्कुल सही बात कही, अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें हरे चारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। यदि हरा चारा नहीं होगा तो पशुओं को मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते हैं जो विटामिन्स मिलने चाहिए, क्योंकि चारे की मात्रा दी जाती है उसका 2/3 हिस्सा होता है हमारा हरा चारा और 1/3 होता है हमारा सूखा चारा। तो हरा चारा को हमें पशुओं को देना ही देना है। हरा चारा यदि हम देंगे तो दूध की जो उत्पादन लागत है वो हमारी कम होती है। तो हरा चारे में जैसे अब इस समय पे ज्वार खत्म होने को है लगभग धीरे धीरे, तो मैं पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि 2 चीजें हैं इस समय जो बुआई कर सकते हैं हरे चारे के रूप में, एक बरसीम है और दूसरा जई है। बरसीम का चारा बहुत ही अच्छा होता है, दलहनी चारा कहलाता है, और बरसीम में जो प्रोटीन की मात्रा है लगभग 14% होती है, तो ये बहुत ही अच्छा चारा है। तो बरसीम की बुआई कर लेना चाहिए अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, और यदि हम इसकी बुआई अभी करेंगे तो ये 5 कटाई हमको दे देती है अच्छी तरीके से, ज्यादा हरा चारा हमको मिलता है। और यदि हम देर करेंगे तो सर्दियों में इतना चारे की वृद्धि नहीं होती है। इसी तरह से जई को भी अभी हमें लगाना है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी हम ये जई लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब जई नई वेराइटी आ गई है, नई किस्में आ गई है जो 2 से 3 कटाई देती है हरे चारे के रूप में, जैसे कैंट वेराइटी है बहुत ही अच्छी है, तो ये भी हमारे पशुओं के लिए इसमें 6 से 7% तक प्रोटीन की मात्रा है वो जई के चारे में होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही चारे की और रातों की भी बात हुई, लेकिन वही जब बात आती है पानी की, क्योंकि स्वच्छ पानी निश्चित रूप से जीवन का आधार है, तो स्वस्थ पशुओं के लिए पौष्टिक आहार में स्वच्छ जल का क्या महत्व?
0: स्वच्छ जल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि ये सारी चीज करेंगे और पानी हमने नहीं पिलाया तो भी हमारे पशुओं पर विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि जो दुधारू पशु हैं हमारे, जो दूध में लगभग 85 से 87% तक पानी होता है, तो पानी का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। जो दूध निकालते हैं प्रति लीटर, तो 5 लीटर पानी की आवश्यकता लगभग पड़ती है, तो हमें उसी हिसाब से अच्छा पानी पिलाया जाना चाहिए। दूसरा, पानी का सबसे बड़ा यह है कि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है
1: जी।
0: इसके अलावा पानी का जो फायदा है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी जो चारा खिलाते हैं उसको पचाने का काम करता है। एक पानी का जो सबसे महत्व काम है, जो पोषक तत्व है शरीर के विभिन्न भागों में उनको पहुंचाने का काम भी पानी का ही करता है। शरीर के अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिक तत्व हैं वो बन जाते हैं, उनको पेशाब के रास्ते, ये उन सब को भी बाहर निकालता है। तो पानी पिलाना बहुत ज्यादा जरूर है। तो लगभग 40 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन प्रति पशु पड़ती है। और यदि दूध की मात्रा ज्यादा है, दूध अच्छा दे रहा है कोई भी पशु, तो ये मात्रा पानी की और भी बढ़ जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही पानी के महत्व की, लेकिन अभी जैसे मौसम बदलेगा
0: जी,
1: धीरे धीरे कोशिश होगी कि हम सर्दी की ओर अग्रसर होंगे, तो ऐसे में शरीर का तापमान भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो ऐसे में विशेष क्या हम अपने पशुओं को पौष्टिक आहार दे सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर ना पड़े।
0: सबसे पहले जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो ध्यान ये रखना है, कई बार दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रात में कम होता है, तो ध्यान रखें कि आप पहले से ही दिन में या रात में पशुओं को थोड़ा सा अंदर छावे में, कहीं भी शेड कोई है तो उसमें बांधने का प्रबंध करेंगे। दूसरा, उनके खाने का थोड़ा सा बढ़ाना पड़े जिससे कि ऊर्जा मिलती रहे। तो पशुओं को खाने के लिए यदि ऊर्जा मिलनी है तो एक चीज अलग से भी आ गई है, यूरिया मोलेसिस मिनरल, जो तरल खाद्य पदार्थ है, यानी कि यूरिया सिरा तरल खाद्य पदार्थ, ये भी हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। उसमें भी मिनरल्स वगैरह हम मिला के तैयार कर लेते हैं और 400 से 500 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से हम इसे अपने पशुओं को दे सकते हैं, इससे भी ऊर्जा बनी रहती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का महत्व विषय पर हमारे श्रोताओं को दी, पशुपालकों को दी, आपका बहुत बहुत आभार।
2: तो अभी हमने जानकारी ली पशुओं में पौष्टिक आहार के महत्व पर, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कुंवर घनश्याम जो कि पशु वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में। और नीरा देखिए, बहुत सारी जानकारी तो हो गई है, आप थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए, तो सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: खेतों की पगडंडियों पर चलते हुए और मेहनत करते हुए किसानों तक पहुंचा ये प्यारा सा लोकगीत।
1: और नीरा, अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
0: जी हाँ,
1: भारत मौसम विज्ञान के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
0: और इसी के साथ अब बात करते हैं मौसम पर आधारित कृषि सलाह की। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी किसानों को ये सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों व सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंध रखें।
1: साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि इस समय अगेती मटर की बुवाई के लिए बीज की व्यवस्था करें और खेतों को तैयार करें। साथ ही इस समय कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा।
0: इसी के साथ कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके।
1: तो ये तो थी कृषि संबंधी सलाह। और अब आजादपुर मंडी में आज फल और सब्जियों के क्या भाव रहे वो भी जान लेते हैं। आलू का भाव रहा 15 से 18 रुपए किलो, प्याज बिक रहा है 35 से 40 रुपए किलो, वहीं टमाटर का भाव चल रहा है 25 से 30 रुपए किलो और बीन्स बिक रही हैं 30 से 35 रुपए किलो, खीरे का भाव है 25 से 30 रुपए किलो।
0: वहीं अगर हम फलों की बात करते हैं तो सेब का भाव रहा 100 से 110 रुपए प्रति किलो और केले का भाव रहा 20 से 25 रुपए प्रति किलो, अमरूद 60 से 70 रुपए प्रति किलो और वहीं पपीते का भाव रहा 25 से 30 रुपए प्रति किलो।
1: तो ये तो थे आजादपुर मंडी से आज के फल और सब्जियों के भाव।
0: और इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं feedback@gmail.com पर।
1: आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।
0: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हमारे गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी खूबसूरत सी गजल, और इस गजल का आगाज करते हैं जगजीत साहब की खूबसूरत सी आवाज के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत ये खूबसूरत सी गजल जगजीत साहब की आवाज में। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली नगर निगम ने 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली में जारी है। और अब समाचार विस्तार से। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इस समझौते पर नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना को लेकर हुए महत्वपूर्ण समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को वर्षों से लंबित विषय का समाधान बताते हुए केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्यों के सहयोग की सराहना की गई। एक रिपोर्ट।
2: जून माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 राज्यों के बीच परियोजना को लेकर सहमति बनी थी, जिसे अब समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किशाऊ परियोजना के समझौते से दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा, जिससे राजधानी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकेगा। साथ ही यमुना नदी में पर्यावरण के लिए जरूरी जल प्रवाह को बेहतर करने में भी मदद मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पानी की कमी दिल्ली की बड़ी चुनौतियों में से एक है और इस परियोजना के आगे बढ़ने से राजधानी की जल सुरक्षा मजबूत बनेगी और कम पानी वाले समय में राजधानी को अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का महत्व केवल राजधानी को मिलने वाले अतिरिक्त पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यमुना नदी में पर्यावरण के लिए जरूरी जल प्रवाह को बेहतर करने में भी मदद पहुंचाना है, जो यमुना के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने किशाऊ परियोजना को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए 5 राज्यों को भी धन्यवाद दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए स्थानों की पहचान के साथ साथ तय समय सीमा में योजना लागू करने के लिए एक विशेष नीति भी तैयार की जा रही है।
3: दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि 10,000 बच्चों के लिए सरकार हॉस्टल बनाएगी, जहां उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एकोमोडेशन की चिंता की जाएगी। ये हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी बनाए जाएंगे और बॉयज के लिए भी। यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी आकर के अपना हॉस्टल फैसिलिटी ले सकेगा और इसके लिए हमने अलग अलग विभाग जो हॉस्टल बना सकते हैं उनके साथ में मीटिंग्स करी है, लोकेशंस को ट्रेस आउट किया है और पॉलिसी भी ड्राफ्ट करना।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को रहने के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल मिले, ताकि वे उचित वातावरण में रहकर पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें।
3: हम ऐसे हॉस्टल्स बनाएंगे कि जहां देश भर से अलग अलग राज्यों से आने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को निश्चिंत होकर के यहां पर छोड़ सके और बच्चा भी इस चिंता में ना रहे क्या खाना है कहां रहना है, बल्कि वो अपने सपनों पे कॉन्सेंट्रेट कर सके।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। ये वृद्धि राजधानी के सभी कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी और अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की थीं। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छात्रों के लिए सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास व्यवस्था के साथ साथ पूरी दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: दिल्ली नगर निगम ने वर्षों से सेवारत 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। ये निर्णय लंबे समय से सेवारत सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर महापौर प्रवेश सिंह बाही ने कहा कि राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दिल्ली को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं। श्री वाही ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल आश्वासन देने का काम किया, मगर निगम में भाजपा सरकार कर्मचारियों से किए गए सभी वायदों को पूरा कर रही है। दिल्ली नगर निगम भवन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जन सुरक्षा की रक्षा के लिए निगम के सभी 12 जोनों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत एमसीडी के सभी 12 जोनों में 40 विध्वंस कार्रवाई की गई। इसके अलावा 16 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 विध्वंस आदेश पारित किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज जेजे क्लस्टर पुनर्वास पहलों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली झुग्गी और जेजे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के तहत बेहतर आवास और रहने की स्थिति पर चर्चा की गई। श्री संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवासियों के संपर्क में रहें, उनकी समस्याओं को सुनें और उनका तेजी से समाधान भी सुनिश्चित करें। दिल्ली की उपमहापौर डॉ मोनिका पंत ने आज दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के वार्ड संख्या 144 स्थित नेहरू नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, पार्कों, गलियों और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। ये निरीक्षण राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए उपमहापौर द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत किया गया। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के लिए रवाना होने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि खिलाड़ियों का कौशल, उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प नए भारत की ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है। श्री सूद ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाएं और युवा भारतीयों को भी प्रेरित करें।
5: मैं कौशल भवन में आप सभी के चेहरों पर वो एनर्जी देख रहा हूँ, वो चमक देख रहा हूँ, आंखों में डिटर्मिनेशन देख रहा हूँ, जो मुझे पूरा विश्वास दिलाता है कि आप लोग शंघाई में सिर्फ एक ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं, आप 140 करोड़ भारतवासियों के टेक्निकल एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, प्रिसीजन और हमारे बदलते आत्मविश्वास का परचम फहराने जा रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में स्किलिंग की डेफिनेशन और उसके अप्रोच को रिविजिट करना बहुत जरूरी है।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन संसदीय कामकाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC बृहस्पतिवार को चरक पालिका अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। NDMC ने कहा कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों को आगे आने और किसी की जान बचाने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक रिपोर्ट।
6: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर से ज्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता था। ये कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर वाइड जाँच के बाद की गई है। जाँच के दौरान CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। मंत्रालय ने कहा कि रैपिडो के खिलाफ ये कार्रवाई CCPA के राइड हेलिंग और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर एडवांस टिप और डार्क पैटर्न प्रैक्टिस की बड़ी जांच का हिस्सा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
7: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की है। वाणिज्यिक पहल के अंतर्गत प्रदान की गई ये सुविधा यात्रियों को सामान के अस्थायी भंडारण के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त विकल्प प्रदान करती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 6 ओवर में एक विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसान

0: और बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। आशा कार्यकर्ताओं के निर्धारित मासिक प्रोत्साहन को दोगुना कर 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने 296 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली में जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है, ये लीजिए पूरे 8:15। आइए अब सुनते हैं गीत मालिका कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं अमित कुमार और लता दी की आवाज में गाई इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
1: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर

0: कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
2: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
3: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 अरब डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
6: वी नीड टू डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
7: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
6: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
1: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल

0: स्वागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
3: भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती

किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तख्लीकात का भारत की सभी जबानों और कई गैर मुल्की जबानों में तर्जुमा हुआ है। सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी CCPA ने रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह कुन इश्तहारात के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये कंपनी सवारी के लिए प्लेटफॉर्म रैपिडो पर खिदमात फराहम करती है। सारिफिन के उमूर से मुतालिक वजारत ने कहा है कि जिस तरह सवारी करने वालों को उनकी सवारी की तस्दीक से पहले ही ज्यादा पैसे अदा करने के लिए कहा गया, इस सिलसिले में कारोबार के गलत तौर तरीकों, नाजायज कॉन्ट्रैक्ट और धोखा देने के मामले में जुर्माना नाफिज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद मुल्क में सरगर्म टैक्सी और बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म का एक शोभाजाती जायजा लिया गया। अपने जायजे के दौरान CCPA ने पता लगाया कि रैपिडो का तरीक़ाकार शर्मिंदगी का एहसास दिलाने वाला है, जो डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और उसे मुंजबित करने से मुतालिक रहनुमा खतूत 2023 के तहत एक डार्क पैटर्न है, क्योंकि इसके तहत अगर सारिफ ज्यादा पैसा अदा करने से इत्तफाक नहीं करता तो उसे सवारी ना मिलने का डर होता है। सऊदी अरब में सिविल डिफेंस ने आज मक्का, जद्दा और ताइफ में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सऊदी अरब की बहरे अहमर की तेल की असल बंदरगाह यम्बोह समेत 6 शहरों में अलर्ट जारी किया गया और फिर हटा लिया गया। हौसियों के इम्कानी हमलों के पेश नज़र कम वक्त के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए। अहलकारों की जानिब से यह कहे जाने के बाद कि खतरा टल गया है, अलर्ट कुछ मिनटों के बाद ही हटा लिए गए। पीर के रोज खमीस मुशैत, अबहा और ताइफ में हौसी हमलों में 13 शहरी जख्मी हो गए थे और घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान आज एक हौसी अहलकार ने दावा किया कि सऊदी जंगी तैयारों ने यमन के ताइस सूबे पर हमला किया, जिसमें 3 अफराद की मौत हो गई। यमन में एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू होने से शहरियों के साथ साथ बहर अहमर के रास्ते जहाजरानी को भी खतरा लाहिक हो गया है, जो आबनाए हुरमुज में रुकावटों के बाद एक अहम गुजरगाह है। डिफेंस अकाउंट्स के महकमे ने पेंशन के निजाम से मुतालिक सिस्टम रक्षा स्पर्श पर फजाइया और बहरिया के पेंशन मामलों को 100% हल कर लिया है। वजारत दिफा ने आज बताया कि खसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर महकमे ने भारतीय फजाइया और भारतीय बहरिया से ताल्लुक रखने वाले 1,45,182 मामलों को कामयाबी से निपटाया। इन मामलों में 1,12,000 मामलों का ताल्लुक भारतीय फजाइया और तकरीबन 32,000 का ताल्लुक भारतीय बहरिया से था। वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के लिए 70 हुनरमंद नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारत के अब तक के सबसे बड़े दस्ते को झंडी दिखाई गई। हुनरमंदी के फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में अलविदाई तकरीब के दौरान इन खिलाड़ियों की मेजबानी की। भारतीय दस्ता इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में मुनक़द होने वाले 48वें वर्ल्ड स्किल्स मुकाबलों के 63 हुनरमंदी जुमरों में मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। वजारत ने बताया कि भारत पहली मर्तबा 11 नए हुनरमंदी जुमरों में मुकाबला आरआई करेगा। मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा T20 बैन अलावामी मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने भारत की जीत के लिए 160 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने कहा है कि भारत चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहम तश्वीश के सिलसिले में बाहमी एहतराम, दिलचस्पी और हसासियत रहनुमा उसूल होने चाहिए। भारत ने कहा है कि खलीजी खित्ते में तिजारती बहरी जहाजों और मल्लाहों को निशाना बनाया जाना नाकाबिल कबूल है। उसने बहरे अहमर में बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश जाहिर की। वजारत खजाना ने वजाहत की है कि किसी शख्स से कारोबारी के लिए 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI लेन देन पर 0.04% चार्ज लगेगा, जो कारोबारी अदा करेंगे। किसी शख्स से किसी शख्स को किए जाने वाले लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा। सऊदी अरब ने हौसी हमले के खतरे के दरमियान मक्का में वार्निंग जारी की है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में मेजबान अफगानिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैन अलावामी मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
1: नमस्कार, कार्यक्रम मंथन में आप सबका अभिनंदन। श्रोताओं, आज का विषय है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर जगवीर सिंह। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको।
1: करते हुए कि स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान जो है ये क्या है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें।
2: जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो इकोलॉजिकल चुनौतियां देखें तो उसमें सागर से संबंधित, ओशन संबंधित काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं हम लोग। और यदि हम जलवायु परिवर्तन का भी देखें तो उसका भी प्रभाव एक पड़ रहा है, वो तो है ही है। साथ में हम लोगों की कुछ जो मानव जनित जो गतिविधियां हैं, विशेष करके प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का, उससे इकोलॉजिकल एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग समुद्र की ओर, जिनको हम समुद्र देवता भी बोलते रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस में हम सहभागी हो सकें और अपने खुद के हित के लिए बहुत आवश्यक है।
1: महोदय, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ने 2022 में 75 दिनों और 75 लोकेशन से 17 सितंबर में इसकी शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज इसके विस्तार को अगर हम देखें और जन भागीदारी को अगर हम देखें तो आपके लिहाज से आप इसे कैसा आंकते हैं?
2: बिल्कुल आपने सही कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बाकी मंत्रालयों के साथ में मिलकर के 2022 में इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और आपको जानकर हर्ष होगा कि उस समय, जैसा कि 75 वर्ष आजादी के हम लोग मना रहे थे, तो माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका जो एक रहा मार्गदर्शन, जो एक सोच रही कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लोग इसको एक दिन की बजाय इसको 75 डेज का हम लोग करें एक्टिविटी। और उसके चलते हुए हम लोगों ने 75 डे लॉन्ग एक एक्टिविटी की थी, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत हुई। और जो 17 सितंबर को उस समय इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे था, जो कि बताना चाहूंगा आपको कि हर वर्ष तीसरे शनिवार को पड़ता है सितंबर में, ये तो 2022 में जो तीसरा शनिवार था वो 17 सितंबर का था। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने 75 डेज लॉन्ग एक्टिविटी की थी, जिसमें हमारे साथ में बाकी मंत्रालय भी शामिल थे, विशेष करके इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ में एनएसएस, यूथ अफेयर, ये सभी लोग हमारे साथ में थे और शिपिंग एंड पोर्ट भी हमारे साथ शामिल था। तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी साबित हुई। और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जब ये शुरुआत की थी तो उस समय था कि हम लोग जैसे कि 75 डेज, 75 ईयर ऑफ आजादी और साथ में 75 लोकेशंस एट द कोस्ट, ये हम लोग एक पक्का के साथ चले थे। और हम लोगों ने अनुरोध किया था बाकी सभी जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, छात्र वर्ग है और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को भी हमने, इरेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, मैं बात कर रहा हूँ सभी के साथ हम लोगों ने एक अपील की थी और परिणाम जो हुए बहुत ही उत्साहजनक थे वो।
1: आपने जिन 75 लोकेशंस की बात की है, अलग अलग लोकेशंस, मैं ये मान करके चलती हूँ क्योंकि जगह अलग अलग है तो अलग अलग तरह की वहाँ पर अनुभूतियाँ रही होंगी, तो कैसा रहा हर जगह पर काम करना, किस तरीके से वहाँ पर काम किया गया?
2: मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, हम लोग जिस काम को लेकर चले थे, वो 75 जगह के लिए 75 कोस्टल लोकेशंस, और एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम लोग चले थे। और हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था सभी से के सहयोग करें इस काम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और हमारे जो श्रोता हैं आकाशवाणी के, उनको बहुत खुशी होगी जानकर के। और जो हमारे साथ शामिल रहे हैं इस कार्य में, मैं उनको बहुत बधाई देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे साथ में युवा छात्र, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और संगठन, जो स्वयंसेवी संगठन, साथ में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग जब जुड़े मंत्रालयों के अलावा, तो 836 स्थानों पर ये एक्टिविटी हुई, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बजाय 75 प्लेसेस के 836 लोकेशंस में हुआ। और उसमें भी आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों की जो कल्पना थी कि हर एक लोकेशन पर 75 हमारे खुद के एम्प्लॉई सरकारी लोग और साथ में बाकी छात्र लोग शामिल होंगे।
1: युवा भागीदारी आप इतनी महत्वपूर्ण क्यों देखते हैं इस परिपेक्ष में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से ही हम एक बात देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत योगदान रहा ही है हमेशा कि एनएसएस विशेष करके और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बाकी जो ब्रांचेज हैं, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ में आए थे। और अभी तो हमारे साथ में स्काउट्स गाइड भी इसमें जुड़ गए हैं और एनसीसी भी साथ में था। तो उसके चलते हुए एक और साथ में जो और यूनिवर्सिटी कॉलेज जुड़े और जाकर स्वयंसेवी संगठन जुड़े, उसके चलते हुए ये संभव हो पाया कि इतनी सारी जगह पर 836 लोकेशंस में, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा 1.25 लाख से ज्यादा लोग बाग उसमें सहभागी हुए। और यदि आप देखें कि बाकी जो था, जैसे कि उस

0: इस समय था कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर काफी जोर दिया था कि उसको हमको एरेडिकेट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी मात्रा में वहां से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया गया 2022 में।
1: जी, हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत ही एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये खतरा है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए, तो ऐसे में समुद्र में जो पहुंचने वाला प्लास्टिक है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया। और इसी पर मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फूड चेन में अल्टीमेटली ह्यूमन तक आता है, क्योंकि वो जो माइक्रो प्लास्टिक पानी में जो जीव जंतु हैं उन्होंने उसे कंज्यूम किया और फिर वही सी फूड जो है हम तक आ रहा है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें उस लिहाज से ये अभियान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है।
0: ये एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि माइक्रो प्लास्टिक जो भी अभी अध्ययन हुए हैं कुछ, उसमें वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचा हुआ पाया गया है।
1: जी,
0: तो वो वाकई एक बुरी खबर है,
1: बहुत ही बड़ा खतरा
0: है और बुरी खबर है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से, सभी हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2022 में भारत पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड, तो वो एक सरकारी तरीके से जो एक नियम बना वो एक बड़ा नियम है। नियम केवल काम नहीं करेगा, अकेला नियम, हम लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो उसके चलते हुए जैसे ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक अभियान जब चलाया गया 2022 में, जैसे मैं बताया कि एक विशेष परिकल्पना के साथ में चलाया गया, उद्देश्य के साथ चलाया गया, ये उसके तुरंत बाद ही था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहेवियरल चेंज भी हो लोगों में, बजाय सिंगल यूज प्लास्टिक के हम लोग कपड़े के थैले का उपयोग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसके तुरंत ही हमारा जो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हम लोग हर वर्ष पृथ्वी दिवस का आयोजन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस वर्ष भी लगभग जगह जगह पर ये किया गया 200 विद्यालयों में, और वहां पर हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया कि हम लोग पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का ध्यान दें और हम लोग थैले का उपयोग करें, कपड़े के थैले का, बजाय प्लास्टिक जैसी चीजों के। तो ये एक बिहेवियरल चेंज की अवस्था है। दूसरा जो सरकार ने कहा है, जो सरकार का जोर है कि रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज, तो एक परिवर्तन जो सुखद देखा जा रहा है कि ना केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर काफी ध्यान देना शुरू किया उन्होंने, और लोगों में भी विशेषकर विद्यार्थियों में चेंज आया है कि वो प्लास्टिक के बजाय वो लोग बाकी चाहे वो कपड़े के बैग हो या फिर जूट के थैले उसका उपयोग काफी मात्रा में बढ़ाया धीरे धीरे,
1: क्योंकि आपने व्यवहारिक स्तर पर बदलाव की बात की है जो कि समाज में बहुत ही निजी तौर पर शुरू हो सकता है कि हमारा व्यवहार किस तरीके से पर्यावरण के प्रति रहे। ऐसे में और इस बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण एक मोटा माटी स्तर पर, क्योंकि यहां पर तो हम समुद्र की सफाई की बात करते हैं, समुद्र की सुरक्षा की बात करते हैं, भारत अपने आप में, भारत का जो तटीय खिंचाव है वो
0: 11,098 किलोमीटर
1: है, हम सब जानते हैं। तो उसे साफ करना, गंदा करना, फिर साफ करना, मतलब लगता है ये कितना लॉन्ग टास्क हो जाता है। तो पहले ही हम अपने आप को इस तरीके से बना करके रखें कि हम नहीं गंदगी फैलाएं। तो आपने जिस बिहेवियरल चेंज की बात की या निजी स्तर पर एक अप्रोच की बात की जो बदले, इसके लिए क्या कोई कैंपेन या किसी तरीके की जागरूकता इस संदर्भ में फैलाने की कोशिश की गई हो इस 4 साल के अंतराल में?
0: हाँ, ये अभी एक परिवर्तन बहुत बड़ा देखने को आ रहा है। आपने देखा होगा, स्वयं भी आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये स्वच्छता ही सेवा, तो जब से ये कैंपेन विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जब किया ये, तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में कि लोग बाग सफाई के प्रति, वैसे तो हम लोग पहले भी जागरूक थे और भी ज्यादा जागरूक हुए हैं, सजग हो गए हैं, और विशेषकर कुछ चीजों के लिए जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग करना, कुछ इधर उधर फेंकना, उस पर बहुत कमी आई है। अब बहुत सुधार है वो, और ये बात बहुत सुखद है कि हमारे यहाँ पर एक विशेष करके जो हम लोगों की एक पर पार्टी रही है, जो एक हम लोगों की प्राचीन काल की जो पद्धति रही है कि हम लोग हमेशा जो प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए उसको पूजनीय मानते रहे हैं, और चाहे वो जल हो, तो हमने जल को पानी नहीं, हमने जल देवता ही कहा, वायु देवता, अग्नि देवता, समुद्र देवता, तो हम लोगों का एक जो सम्मान रहा है प्रकृति के प्रति वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और साथ में जो हमारे जो संविधान में जो अगर आप देखेंगे विशेष करके जो अनुबंध हैं कुछ वो भी प्रकृति के संरक्षण और उचित उपयोग पर जोर देते हैं।
1: एक सप्ताह भर इस अभियान को मनाया जाएगा जो कि आज से शुरुआत है। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं इस अभियान के अंतर्गत होंगी जो उत्साह वर्धन का काम करेंगी युवाओं में और जो वहां के रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए?
0: इसमें देखिए पूरा एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखा गया। इसको माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था डिजिटली। उसके बाद में 12 से 19 सितंबर तक का ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, क्योंकि 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है इस समय। एज आई टोल्ड यू, एक हफ्ते की जो गतिविधियां वो इस तरह की रही हैं हम लोगों की कि जिसमें कि सब लोग ठीक से जुड़ सकें। जैसे कि 12 तारीख को शुरुआत हुई तो इनॉग्रल डे था वो, जहाँ पर

0: ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखें, वेस्ट बंगाल के दीघा में, वहां पर एक्टिविटी हमारे यहाँ के संयुक्त सचिव वहां पर थे और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट थे वहां पर, बाकी साइंटिस्ट और वहां के स्टूडेंट्स दीघा बीच में 12 तारीख को। उसी समय अगर हम देखें वेस्ट कोस्ट पर, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 1000 स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी, कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल इकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें इतना ये इम्पोर्टेंट विषय है कि वहां पर माननीय राज्य गृह मंत्री भी आए थे, माननीय नित्यानंद राय जी, उसमें माननीय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया था, और साथ में जो वैलिडिटी सेशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार उसमें थे। उसी समय आपको बताना चाहूंगा कि हर एक कोस्टल स्टेट से उसमें सहभागिता थी, उसमें सभी लोग वहां मौजूद थे, और वहां पर एक प्लेज भी ली गई, एक शपथ ली गई, जो कि समुद्र के प्रति जागरूकता और रखरखाव और ध्यान के लिए थी। 12 के बाद में 13 तारीख को संडे ऑन साइकिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम स्वच्छता स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के लिए उन्होंने लगभग 3000 से अधिक स्थानों पर किया। और इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को भी मैराथन हुआ, 15 को भी एक्टिविटीज हैं, और अगर देखें 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हमारे जो विभाग हैं, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग और बाकी विभाग, वो लोग पूरे देश में जगह जगह पर ओजोन दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 तारीख को एक प्लेज का, सभी जगह प्लेज और ह्यूमन चेन, जो कि समुद्र के प्रति अपनी जागरूकता और समुद्र का रखरखाव के लिए है।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई समुद्र को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है ब्लू इकोनॉमी, जो बहुत सारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक साफ समुद्र मछुआरों, कोस्टल बिजनेस और लाखों तटीय परिवारों की जो रोजी रोटी है उसको बहुत ही महीन स्तर पर प्रभावित करता है। ऐसे में अगर हम इस अभियान की परिकल्पना को देखें और पिछले 4 साल में किए गए जो हमारे कर्म हैं इसके प्रति, और जो हमारा डेडिकेशन, जो समर्पण रहा है, इस लिहाज से इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है।
0: इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बार बार उल्लेख किया है, ब्लू इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो समुद्र है वो हम लोगों को काफी उनकी जानकारी है नहीं, और जितना हमको मिल रहा है उतना ही हमको जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि मोर देन 50% ऑक्सीजन हम लोगों को समुद्र से मिलती है, और सरकार का जो एक विजन है, जो सोच है, जिस तरह की अब लोग हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो एक परिकल्पना है 2035 तक हम लोग 7-8% जीडीपी का हिस्सा ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से होगा। और यहाँ तक आप देखें कि वर्तमान में जो भी हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं सरकार के, भारत सरकार के, लगभग 40 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं उससे संबंधित, और प्रोपोर्शनेटली उम्मीद के वास्ते आप अंदाज लगा सकती हैं कि 2035 में निश्चित तौर पर एक उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगवीर सिंह जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए।
0: धन्यवाद प्राची जी, आपका भी और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9289094044। मंथन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेड सेवरल इश्यूज वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे भीमप्पा भजंतरी और एहसान का राग बागेश्वरी में युगल गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री भीमप्पा भजंतरी और एहसान के युगल गायन आपने सुना राग बागेश्री में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर

0: 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the 3 mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit.

0: जहाँ ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में फिल्म इजाज़त से। और बात करें अगर गीतों की वंदना, खासकर जब हम बात करते हैं सैड सॉन्ग्स की, तो जो फिल्में हम देख रहे हैं या उन फिल्मों में जब कोई ऐसी एक स्थिति आ जाती है जहाँ पर संवेदनाएं कुछ ज़्यादा ही भाव विभोर हो जाती हैं, कोई वो संवेदना कोई भी हो सकती है, या तो बहुत खुशी हो सकती है या कोई दुख हो सकता है, जब उस पर शब्द लिखे जाते हैं, जब वो जो शब्द उस सिचुएशन पे बड़े सटीक बैठ जाते हैं, तो लगता है ना मानो जैसे ये गीत जो है ये इस सिचुएशन पे सटीक बन रहा है। तो हमारे साथ जब स्थिति कुछ ऐसी आएगी तो हम भी सटीक उस गीत की तरफ जाएंगे।
1: इसीलिए भी तो कहा जाता है ना सविता, कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का या हमारा ही एक आईना
0: आईना
1: होती
0: होते
1: है।
0: हैं जी।
1: और वही एहसास कभी ना कभी हमारे साथ, जब जैसे कि सविता तुमने बोला कि बहुत जब मिलते जुलते हैं ना, तो लगता है कि ये गाना जैसे सिर्फ मेरे और मेरे लिए ही लिखा गया है।
0: और वाकई ये गीत हमारे लिए ही तो लिखे गए हैं, क्योंकि भावनाएं आपके और हमारे भीतर ही तो होती हैं,
1: बिल्कुल
0: तभी तो इन संवेदनाओं के साथ हम कहीं ना कहीं खुद को जोड़ पाते हैं।

0: जिस पथ पे चला उस पथ पे, जिस स्थान की बात की जाती है, किस जगह की बात की जाती है, जब भावनाओं में बढ़कर हम किसी जगह की तरफ जा रहे थे, किसी रास्ते को हम चुन लेते हैं और उस रास्ते में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि मन विचलित भी हो जाता है। मन ये भी कहता है कि यहीं रुक जाओ, थम जाओ, शायद आगे रास्ता हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन वहीं वंदना ये भी कहता है मन कि जब एक बार निश्चय कर लिया है कि चाहे जितनी भी समस्याएं आएंगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन इस पथ पर अपने साथी का साथ देना है, तो फिर जो पथ की कठिनाइयां होती है वो मायने नहीं रखता, बल्कि वो साथ मायने रखता है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा है।
1: बिल्कुल सविता, तुमने सही कहा। और ऐसे सफर में, जैसे कि गीत के हिसाब से वाला, अगर हम सफर मिल जाए
0: जी
1: तो यकीन मानिए जिंदगी का आधा जो कहते हैं ना संघर्ष, तो वैसे ही आप जीत जाएंगे। तो अगर लाइफ में, मेरा तो ये मानना है कि चाहे वो आपके सफर में हम सफर हो या फिर कोई ऐसा साथी या कोई दोस्त जो आपको ऐसी कठिन स्थितियों में आपका साथ दे, आपको हिम्मत दे, उसे बहुत संभाल कर और सहेज कर रखिए।
0: और सहेजने और संभालने के लिए ये नहीं है कि आप हमेशा उसके सुखद पलों में उसके साथ रहें या उसे जीवन का सुखद एहसास दें, बल्कि उसे वो एहसास दें कि जब कठिनाइयां हैं, जब स्थितियां परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, जब वो हमसे विपरीत जा रही हैं, तब भी उसमें हम अडिग होकर आपके समकक्ष खड़े हैं। जब भी आपको सहारे की ज़रूरत होगी, हम सबसे पहले आपका हाथ थामेंगे। ये जो बात है ना, और ये जो एहसास है वंदना, ये किसी भी रिश्ते को और मजबूत बना देता है और ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का, उसको सामना करने का एक हौसला भी देता है।
1: और यही हमारा भी साथ बंधा हुआ है ऐसे ही खूबसूरत सा हमारे लिसनर्स के साथ, है ना। तो
0: जी
1: अब बिना किसी देरी के हम चाहेंगे कि चलो उनके कुछ प्यारे से मैसेजेस को भी शामिल कर लें।
0: चलिए, तो पहला संदेशा आज हम ले रहे हैं, ये गांव फरा से हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पिंदर कुमार जी, और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिए। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से है सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमित कुमार। इसके अलावा हमारे पास संदेशा आया है, ये है भिलाड़ से, गुजरात से संदेशा हमें मिला है, कल्पना मदान झा और मानव और मयंक, ये कह रहे हैं कि गीत जो है इन्होंने कुछ फरमाइश की, लेकिन आज गीत की फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हम गीत सुना रहे हैं वो आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। वंदना आपके नगर से आ गया है ये संदेशा, वंदना नगर इंदौर
1: बिल्कुल
0: मध्य प्रदेश से, नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, संजना और परी खर्चे का, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू और देविका चौधरी का भी संदेशा हमें मिला है। तो संदेशा हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल, चंपा साहू का। संदेशे के साथ एक बार जुड़ गए हमारे साथ रेडियो की आवाज़ रिपोर्टिंग मधुबनी बिहार से, ये हैं AK झा जी, शेख अल्लाह बख्श और लक्ष्मण जागपत जी, ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम आपका पसंद आ रहा है। और संदेश के साथ ये जुड़े हैं बबलेश पवार जी हमारे साथ, डेनी पवार और मनीष पवार, जो हमें गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से संदेशा भेज रहे हैं। और

0: इन्होंने लिखा है कि सविता जी और वंदना जी, आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा संदेशा है, मिश्री सी मीठी आवाज। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया बबलेश जी। और हम भी बड़े दिन से सोच रहे थे कि आप कहाँ गायब हैं, और बहुत दिनों के बाद आपने आज हाजिरी लगाई तो दिल खुश हो गया।
0: तो चलिए अब अगले संदेशे की तरफ पढ़ते हैं। अगला संदेशा है नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाणकर, निर्मला और विशाल का। मलकापुर महाराष्ट्र से है नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुनहे। और संदेशे के साथ है चंडीगढ़ सिटी से संतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि कह रहे हैं कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम भी करते हैं, और इंद्रप्रस्थ के लिए बेशुमार मोहब्बत और दुआएं। बस इन मोहब्बत और इन दुआओं की आवश्यकता हमें बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका इस प्यारे से संदेशे के लिए। संदेशे के साथ नांदेड़ ये है महाराष्ट्र से लिखने वाले शंकर लाल जसवाल, गणेश प्रसाद और ये है शुभ प्रसाद जी। साथ हैं हमारे अर्णव जसवाल, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जसवाल। संदेशा हमें मिला है अरविंद कुमार का, लिखकर भेज रहे हैं कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और इन्होंने जो लिखकर भेजे हैं नाम वो हैं अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या कुमारी, निवेश, नियति कुमारी, और ये बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से मिला है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। कालका से हमें संदेशा मिला है शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। ये संदेशा हम तक पहुंचा है, हमारे दैनिक श्रोता हैं ये और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और साईराज सपकाल। संदेश के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोता हैं ये पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन और DK अलवी। संदेश के साथ हमारे साथ अब बने हुए हैं ये है फजलिका पंजाब खेड़ा परिवार, जो हमें लिखता है भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवांशी, वाणी, RV खेड़ा, जीवन, और इन सब के साथ कह रहे हैं कि पूरा का पूरा खेड़ा परिवार आपको सुन रहा है। ये हमें फजलिका पंजाब से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ अब एक बार फिर से खेड़ा से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, ये है मिंटू तोमस से, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अब हमारे पास ये संदेशा मिला है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश तांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का, और संदेशा संबल कांकेर से हमारे पास आया है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। कह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और ऐसे ही गीतों की प्रस्तुति करते रहिए, हमें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये हमें भेज रहे हैं बड़े ही प्यार से, कह रहे हैं कि आपको बड़े प्यार से संदेशा भेजा है, तो उतने ही प्यार से हमारे संदेश को कार्यक्रम में शामिल भी कर लीजिएगा। लिखने वाले हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा। संदेशा हम तक पहुंचा है ये दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का, जो कि हमें रघुवीर नगर दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं। और इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि गीतों की तरफ भी तो हमें बढ़ना है, वरना गीत अधूरे रह जाएंगे।

0: भाई वादे को तो कुछ नहीं हुआ है, वादा तो हम पूरा करेंगे, अपने वादे को निभाएंगे। जैसा हमने कहा था कि गीत हमारे होंगे और नाम आपके होंगे,
1: बिल्कुल।
0: तो नामों की बात आई है वंदना, तो आगे भी नाम ले लेते हैं, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, हमारे जो श्रोता है उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी कि बाकी लोगों के नाम आ गए लेकिन हमारा
1: हमारा नाम
0: संदेशा
1: नहीं
0: कहाँ रह
1: आया,
0: गया है। तो हम
1: बिल्कुल।
0: संदेशा किसी का मिस नहीं करेंगे। तो ये संदेशा हमें मिला है जो कह रहे हैं कि वंदना जी, सविता जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आज की, और किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। लिखकर भेजने वाले हैं गांव बिटोड़ा, ये क्या है, तहसील मगरू पीला, ये है पश्चिमी विदर्भ से। योगीराज मस्के श्रीहरि, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद, मस्के और साथी हमें कार्यक्रम में सुन रहे हैं। तो संदेश के साथ हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं गुरमीत सिंह मीता, जो कि साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदेशा हमें मिला है, लिखकर भेजने वाले हैं खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल डक डावर, और जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, और साथ में हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। संदेशे के साथ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुवी नगर से दिलावर खान, इनका संदेशा हम पहले भी कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से लिखकर भेज रहे हैं हमें मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। तो संदेशा हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी धांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का, जो लिखते हैं कि सविता जी, वंदना जी, हमारी जिंदगी का दर्द और गम से गहरा रिश्ता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसे शब्दों में बताकर शायद कोई अतिशयोक्ति हो जाएगी। दर्द और गम एक ही

0: सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम गम और दर्द के दौर से गुजरते हैं तो जिंदगी के फलसफे सही मायने में जीना सीख जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिंदगी को जीने का हुनर हम मुश्किल हालात में ही सीख पाते हैं। जब जिंदगी बड़े ही अच्छी तरह से चल रही होती है तब शायद बंदर हम जिंदगी के मायने या उसके सबक नहीं सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि हर एक कसौटी जो है जब आपको कसती है तो और भी चमकदार बना देती है।
0: इसी चमक में शामिल हो रहे हैं फिलहाल, ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से है, लिखकर भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदेव, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। संदेश के साथ अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये है पश्चिम विदर्भ से ही, इनका संदेशा भी हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। संदेश के साथ अब इंदौर से जुड़े हैं कुमारी वंदना, मराठा भाऊ, ये पूरा मराठा परिवार है, पूजा रेखा रघुवंशी, ललिता जगदीश चौहान, चंदा युवराज, वानखेड़े लक्ष्मी नारायण भाऊ खड़से, हमें किसी भी गीत में बस शामिल कर लीजिएगा। देखिएगा, हमने एक बार पहले भी दरख्वास्त की थी कि आप अपने नाम के बीच में ना ज़रूर एक जो है वो ब्रैकेट लगा सकते हैं या कोई जो है वो ऐसा कुछ भी वो बताएं हमें कि कहाँ पर आपका नाम और कहाँ पर आपका सरनेम जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो हो सकता है कभी किसी का नाम पूरा ना लिया गया हो। फिलहाल हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन का संदेशा मिला है शांति नगर सोनीपत से। संदेशे के साथ अब हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये हमारे साथ जुड़े हैं नूर महल महसूल सीतामढ़ी पर बिहार से हैं, मुसर्रत जहां नाज शिक्षिका, तलत जहां नहाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज और नुसरत जहां नाज, साशिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज, और पठान टोली कलेर से हैं निखत प्रवीण, सदफ आरजू और सादिया तस्नीम। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: जी हाँ, नीला आसमां सो रहा है, लेकिन अब वक्त आपसे विदा लेने का भी हो रहा है। तो वंदना इसी वादे के साथ कि आपसे फिर जल्द होगी मुलाकात, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे और वंदना को दीजिए इजाजत।
1: इजाजत, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, शिरकत की आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी हाँ, आपका दिल से धन्यवाद, और इसी बात के साथ कि आपसे फिर जल्द होगी मुलाकात, फिलहाल के लिए दीजिए हमें विराम, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं कार्यक्रम के एक बेहद ही खूबसूरत और अंतिम गीत के साथ। कल सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत बहुत ही खूबसूरत है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने

0: मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तौफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में अ सेंचुरी ऑफ सर्विस द RSS इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलीसाई सौंदर्यराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात के 12:10 और ये समय है आपके मनपसंद गीतों के कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आज का सुरों का सफरनामा है उस सफल जोड़ी के नाम जिसने अपने संगीत और बेहतरीन जुगलबंदी से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बल्कि सफलता का एक इतिहास ही रच दिया, और वो है मशहूर संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन और समीर सेन। जी हाँ, आज का सुरों का सफरनामा है दिलीप सेन समीर सेन के नाम। हम इनके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इनके इस प्यारे से गीत के बाद।

ये गीत अभी श्रोताओं आपने सुना फिल्म तू चोर मैं सिपाही से। गायक थे कुमार सानू और गायिका थी अलका याग्निक। तो हम बात कर रहे थे मशहूर संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन और समीर सेन की। दिलीप सेन और समीर सेन की जो जोड़ी है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दोनों असल जिंदगी जिंदगी में चाचा भतीजा हैं। जी हाँ, ये दोनों असल में रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। दिलीप सेन संगीतकार जमाल सेन के बेटे हैं और समीर सेन दिलीप सेन के भाई शंभू सेन के बेटे हैं। इन दोनों की जोड़ी 90 के दशक से ही फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। फिल्म आईना से इन्हें पहचान मिली थी। इस फिल्म का संगीत बहुत पसंद किया गया था और दिलीप सेन समीर सेन एक सफल संगीतकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए थे। आइए सुनते हैं फिल्म आईना से इनके संगीत निर्देशन में बना हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अन्य संगीतकारों की तरह दिलीप सेन और समीर सेन का जो फिल्मी करियर था वो भी कोई आसान नहीं था। इन्हीं फिल्मों में पहला ब्रेक कॉमेडियन जगदीप के प्रोडक्शन तले बनी फिल्म सुरमा

सुरमा भोपाली से मिला था। ये फिल्म 1983 में बनना शुरू हुई थी और 1988 में जाकर ये फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन जो इसका गीत और संगीत था वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। सुरमा भोपाली का गीत संगीत हिट होने के बाद दिलीप सेन और समीर सेन को एक पहचान मिल गई थी। उसके बाद इन्हें फिल्म जीना मरना तेरे संग से पहचान मिली और उसके बाद से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 1992 में। तो आइए सुनते हैं फिल्म जीना मरना तेरे संग से ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म जीना मरना तेरा संग तेरे संग का गीत हिट होने के बाद ही दिलीप सेन और समीर सेन को आईना फिल्म का संगीत देने का मौका मिला था। उसके बाद इन्हें मौका मिला फिल्म ये दिल लगी में संगीत देने का। ये फिल्म 1994 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो काफ़ी हिट हुए साबित हुए थे और इस गीत का संगीत भी बहुत हिट हुआ था। अच्छे गीत संगीत के कारण ही ये फिल्म भी हिट साबित हुई थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म से दिलीप सेन और संगीत समीर सेन के निर्देशन में बना हुआ ये गीत।

श्रोताओं, दिलीप सेन और समीर सेन की पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो इनका परिवार सुजानगढ़ राजस्थान के संगीत घराने से संबंध रखता है। इनका परिवार पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता रहा है और यही वजह है कि संगीत इन्हें विरासत में मिला था और इसी कारण शायद ये फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में कामयाब हो पाए। आइए सुनते हैं फिल्म हकीकत से इनके संगीत निर्देशन में ये गीत।

श्रोताओं, दिलीप सेन और समीर सेन ने अपने फिल्मी करियर में अनेक सफल गायकों जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक और अभिजीत जैसे गायकों के साथ सफलतापूर्वक काम किया है। इसके अलावा इन्होंने शिव आराधना जैसी एल्बम के लिए भी संगीत दिया था, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। फिलहाल आइए सुनते हैं फिल्म अफलातून से ये गीत।

श्रोताओं, दिलीप सेन और समीर सेन ने आज तक 250 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है और इनका दिया हुआ संगीत ज्यादातर फिल्मों में हिट रहा है। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक फिल्म इतिहास से इनके संगीत निर्देशन में बना हुआ ये गीत।

श्रोताओं, दिलीप सेन और समीर सेन ने अनेकों फिल्मों में बरसों तक साथ रहकर संगीत दिया और इनका जो संगीत था वो बहुत हिट भी रहा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अलग होकर काम करना शुरू कर दिया। दिलीप सेन और समीर सेन के बैनर तने तले बने हुए प्रोडक्शन हाउस में आज भी काम करते हैं और समीर सेन ने अपने भाइयों के साथ अलग से म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जिसे आजकल सेन ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। चाहे कुछ भी हो जाओ हो श्रोताओं, इन्होंने एक से बढ़कर एक संगीत फिल्म इंडस्ट्री को दिया है और उसे उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा श्रोताओं, समीर सेन के बेटे सुहेल सेन भी आजकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन संगीत दे रहे हैं। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं। इसी के साथ श्रोताओं, समय हो रहा है कि अब सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आइए सुनते हैं फिल्म अनाड़ी नंबर 1 से ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। औषधि विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPR, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों के सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Sandhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry yesterday said that the payments to the merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant

ये गीत अभी श्रोताओं आपने सुना फिल्म अनोखी अदा से मुकेश साहब की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म जाल से गीता दत्त की आवाज़ में।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म सीआईडी से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ में।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों और लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। होती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत में हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि

0: रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry yesterday said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers. Indian parliamentary delegation is participating in the 69th Commonwealth Parliamentary Conference CPC being held in Cape Town, South Africa till the 19th of this month. The delegation is being held by Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh. The conference is also being attended by 32 presiding officers and 18 secretaries from state and union.

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गीत फिल्म

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म नमक हराम से किशोर कुमार की मधुर आवाज में। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7 और कार्यक्रम है गीत बहार। आइए सुनते हैं, आइए जारी रखते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार।

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित होगा। 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन।

0: competition for film production. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi to take a 2-0 lead in the 3-match series. Put into bat first, Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India easily overhauled the target in 14.5 overs. Nitish Kumar Reddy was declared player of the match. The third match of the series will be played at the same venue tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का ये लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सरिता। लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन गीत, बेहतरीन गजलें, बेहतरीन नज़्में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास की गाई से खूबसूरत सी नज्म के साथ।

जनाब अब्दुल हमीद अदब साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदब साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताज़ा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

0: आप आनंद ले रहे थे गीतों और गजलों के कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रातः 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। प्रातः 4:20 हो चुके हैं। ये सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे एस बालाचंदर का रागम नमन नारायणी पर वीणा वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 सितंबर 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट का वक्त है देशभक्ति गीत का। स्वरंजनी कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 5:30। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आप सुन सकते हैं 6:10 पर। छह बजकर 40 मिनट पर कार्यक्रम चिंतन में आज आप सुनेंगे भीष्म साहनी के विचार। श्री रामचरित मानस से पाठ का वक्त रहेगा 6:45। इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 50। प्रातः 7:30 का वक्त है संगीतिका कार्यक्रम का। आज की संगीतिका में आप सुनेंगे रूपाली चौधरी के भजन। सुबह 7:30 का वक्त है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:15 पर आप सुन सकते हैं साइंस मैगजीन। मिट्टी दी महक, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा 9:30 पर। दस बजकर 10 मिनट पर आज आप सुनेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की। 11:10 पर होगा कार्यक्रम सबरस। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः

0: 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेनदेन निशुल्क रहेगा। इस तरह लोगों से व्यापारियों को लगभग 96% लेनदेन प्रभावित नहीं होगा। 2000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली की में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये सम्मेलन 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में RSS नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिल सिलाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने प्रोत्साहन को ज्यादा लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जनभागीदारी अभियान का गीत जारी किया है। इस गीत को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीत में आवाज देता है। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई, यानी आसमान की ओर उठी हुई।

0: धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।
2: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
2: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
3: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है।
2: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
1: नीचे सुनते हैं आप देशभक्ति गीत।

देशभक्ति कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात 5:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री रूबी गोस्वामी का राग नट भैरव में गायन।